मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलो हर्ट्स एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है, सक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की पहली तिथि, तदनुसार दिनांक 22 मई सन 2026। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:52 होने ही वाले हैं। आरंभ होती है आज की ये सभा।

0: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से। आज खेत खलियान कार्यक्रम में वार्ता का विषय है अमरूद के बागों की देखभाल। वार्ताकार हैं श्रीनिवास सहाय।
1: भाइयों नमस्कार। भारतवर्ष के प्रमुख फलों में अमरूद एक ऐसा फल वृक्ष है जिसमें विपरीत दशाओं के प्रति काफी हद तक सहिष्णुता पाई जाती है। यह दूसरे फल वृक्षों की अपेक्षा अधिक गर्मी और सूखा सहन कर सकता है। अपनी लोकप्रियता और अनुकूलता के कारण इसकी बागवानी पूरे भारत में की जाती है। अमरूद के पौधों में सुंदर एवं मजबूत ढांचा देने के लिए 2 से 3 वर्ष तक कटाई छटाई की जाती है। ढांचा देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जमीन से 30 से 40 सेंटीमीटर तक मुख्य तने पर कोई शाखा न हो। इसी ऊंचाई पर मुख्य तने से 3-4 शाखाओं को चारों तरफ समान रूप से निकलने देना चाहिए। तदुपरांत पौधे के आकार को नियमित रखने एवं अच्छी पैदावार के लिए समय समय पर आवश्यक काट छाट करते रहना चाहिए। कटाई छटाई मार्च से जून तक किसी भी समय आप कर सकते हैं। अमरूद के छोटे पौधों को नियमित रूप से सिंचाई देते रहना चाहिए जिससे पेड़ की जड़ क्षेत्र नम बना रहे। सर्दियों में 20 से 25 दिन तथा गर्मियों में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर थाला विधाई विधि से सिंचाई करते रहने से पौधों का विकास अच्छा होता है। सिंचाई के बाद समय समय पर गुड़ाई एवं घास निकालते रहना चाहिए। फल लगने वाले पौधों में फूल के समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए, यानी कि जब फूल आ रहे हों उस समय सिंचाई नहीं करें। ऐसा करने से फूल गिर जाएगा एवं फल कम लगेंगे। खरपतवार निकालते समय गुड़ाई कम करना चाहिए क्योंकि अमरूद की जड़ें ऊपरी सतह पर ही होती हैं। प्रारंभ के 2-3 वर्षों में बाग के रिक्त जगहों पर कुछ सब्जी वाली फसलें जैसे मटर, गोभी, ग्वार, लोबिया आदि उगाई जा सकती है। जब फल मिलने आरंभ हो जाए तो अंतः सस्यन नहीं करना चाहिए। नए बागों में रबी में गोभी, मटर, फ्रेंच बीन और मेथी, खरीफ में लोबिया, ग्वार, उर्द और मूंग तथा जायद में कद्दू वर्गीय सब्जियां उगाई जा सकती हैं। जिन क्षेत्रों में बरसात अधिक होती हो और भूमि क्षरण यानी कि कटाव की समस्या हो वहां बरसात में भूर संरक्षी फसलें जैसे लोबिया, ग्वार, सनई, ढैंचा आदि को बाग के खाली जगहों में लगाना चाहिए। अंतः सस्यन करते समय बातों का ध्यान रखना चाहिए। अंतः फसलें कम बढ़ने वाली होनी चाहिए। फसल लगाते समय कम से कम 1 मीटर जमीन पेड़ के चारों तरफ छोड़ देनी चाहिए। इन फसलों की सिंचाई की आवश्यकता मुख्य फसल जैसी होनी चाहिए। ऐसे फसलों का चुनाव करना चाहिए जो भूमि से बहुत कम मात्रा में पोषक तत्व लेते हों। गन्ना, अरहर, मक्का, ज्वार आदि फसलें बाग में नहीं लगानी चाहिए। अच्छी पैदावार और स्वादिष्ट फलों के लिए पौधों को नियमित खाद और उर्वरक देना आवश्यक होता है। खाद एवं उर्वरक की मात्रा को 2 भागों में बांटकर पहला भाग जून जुलाई में और बाकी बचा पोषक तत्व अक्टूबर माह में देना चाहिए। जून जुलाई में गोबर खाद, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तथा यूरिया की आधी मात्रा तने से 1 मीटर दूरी पर पौधों के छत्रक के नीचे गोलाई में 15 सेंटीमीटर गहरी नाली में देकर मिट्टी से ढक देना चाहिए। यूरिया की बची आधी मात्रा को अक्टूबर में पेड़ों के नजदीक आप दें। यदि वर्षा न हो रही हो तो खाद के बाद पानी देना आवश्यक होता है जिससे नमी

0: बनी रहे। अमरूद के पेड़ों में 15 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 260 ग्राम यूरिया, 375 ग्राम सुपर फास्फेट एवं 100 ग्राम पोटेशियम सल्फेट प्रति पेड़ प्रति वर्ष देना चाहिए। इतनी ही मात्रा प्रत्येक वर्ष प्रति पेड़ 50 वर्षों तक बढ़ाते रहना चाहिए। 5 वर्षों के बाद प्रति वर्ष पांचवें वर्ष में जितना खाद एवं उर्वरक दिया गया हो उतना ही देना चाहिए। कुछ इलाके में अमरूद के पौधों में जस्ते की कमी पाई गई है। इसकी कमी से पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है और बढ़वार भी रुक जाती है, टहनियां सूखने लगती हैं, फूल भी कम लगते हैं और लगे हुए फल फटकर सूख जाते हैं। जस्ते की कमी के पूर्ति के लिए 500 ग्राम जिंक सल्फेट प्रति पेड़ प्रति वर्ष थाले में देकर पूरी की जा सकती है। जिंक सल्फेट को भूमि में मिलाने के पूर्व सड़ी हुई कंपोस्ट या गोबर की खाद में अच्छी तरह मिलाकर प्रयोग करना चाहिए। इससे जस्ते की उपलब्धता बढ़ जाती है। अमरूद के पेड़ से एक वर्ष में 3 फसलें ली जा सकती हैं, लेकिन व्यावसायिक तौर पर एक ही फसल लेने का सुझाव दिया जाता है। फसल तोड़ने के अनुसार उसे बरसात, जाड़ा और बसंत में विभाजित करें। इस तरह से अमरूद के बाग की देखभाल करें और लाभ उठाएं।
1: खेत खलियान में आपने सुना वार्ता अमरूद के बाग की देखभाल। वार्ताकार थे श्रीनिवास सहाय। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, प्रातः के 6 बजने वाले हैं। ये समय होता है दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार का। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ಈ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ
1: ನಮಸ್ಕಾರ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಮಾಚಾರ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೈ ವೈಷ್ಣವಿ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता करेंगे. राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे. हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया. राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं. उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं. राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है. उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए. इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है. इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे. यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई. प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई.
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की. भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है. हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं. हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है.
1: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है. ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया. मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है. मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है. सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं. SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है. इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे. न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है. अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है. पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई. वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है. उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही. श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे. 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है. मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन मनन।
4: गुजरात में साने गुरुजी का नाम प्रत्येक युवकों के जुबान पर रहता है। सन 1945 में नासिक जेल में श्री प्यारेलाल जी ने साने गुरुजी से कहा था कि जेल से छूटने पर आप गांधी जी से मिलिए, जमना लाल जी आपको गांधी जी से मिलवा देंगे। श्री गुरुजी ने कहा, मुझे अपनी समस्या लेकर किसी के आगे रोना अच्छा नहीं लगता है। जेल से छूटने पर जमना लाल जी ने पत्र भेजा, आप आइए, आपको गांधी जी से मिलवा दूंगा। गुरुजी ने लिखा, क्षमस्व, मैं नहीं जा सकता। कुछ दिन बाद गांधी जी साने गुरुजी के गांव अमल नेर होते हुए वर्धा जाने वाले थे। स्टेशन पर गांधी जी और उनके साथियों के लिए खाना पानी लेकर साने गुरुजी ही जाने वाले थे। गाड़ी छूटने के वक्त किसी साथी ने गुरुजी को डिब्बे में ढकेल दिया और कहा कि आपको गांधी जी 2 मिनट का समय दिए हैं, जो कुछ पूछना हो पूछ लेना। लाचार होकर गुरुजी गांधी जी के सामने जाकर बैठ गए, प्रणाम किया। गुरुजी ने गांधी जी को आम का रस दिया। गांधी जी रस पीकर स्वयं बर्तन धोने निकले। गुरुजी ने कहा, मैं बर्तन धो दूंगा, आप छोड़ दें। गांधी जी ने मना किया और स्वयं अपना बर्तन साफ कर गुरुजी को दिया। हाथ मुंह पोंछ कर बैठे। गुरुजी को कुछ पूछने में संकोच होता था, फिर भी उन्होंने पूछा, मैं जिस गांव में रहता हूं वहां सभी निर्धन हैं, हमेशा अभाव में रहते हैं, यहां तक कि 2 वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाते, गांव वालों की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी। गांधी जी ने कहा, गांव की सफाई किए जाओ, परिवार के सभी सदस्य शारीरिक श्रम करो, इससे लोगों की सेहत सुधरेगी, फलस्वरूप वे ज्यादा दिन काम करेंगे, इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, दवाई में पैसे कम खर्च होंगे, घर के लोगों का समय नष्ट नहीं होगा, मस्तिष्क में फिजूल बातें घर नहीं बनाएंगी, निराश मत हो, स्वच्छ वातावरण में रहने की आदत डालो और एक

दिन देखोगे कि तुम्हारा गांव समृद्धि के शिखर पर होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए गांधी जी स्वच्छता के साथ साथ शारीरिक श्रम पर काफी जोर देते थे और कहते थे, जो बिना शारीरिक श्रम के खाता है वो चोर है। गांधी जी सभी मनुष्यों को समुचित और संतुलित आहार रहन सहन उपलब्ध कराने पर जोर देते थे। उनकी साफ हिदायत थी कि जीने के लिए खाओ, ना कि खाने के लिए जियो। इसके अतिरिक्त गांधी जी चादर स्नान की भी चर्चा करते थे। इसके अंतर्गत मोटे कंबल पर भीगी हुई सूती चादर बिछाई जाती है। इस पर रोगी को सुला दिया जाता है। उसका सिर कंबल के बाहर तकिए पर रखा जाता है। सिर पर गीला तौलिया निचोड़कर रख देते हैं और शरीर के अन्य हिस्सों को चादर या कंबल से ढक देते हैं। इस विधि से बुखार, घमोरी, पित्ती, आमबात, चर्म रोग, खसरा, चेचक में भी लाभ होता है। उन्होंने साफ साफ कहा, डॉक्टरों और अस्पतालों की वृद्धि कोई सच्ची सभ्यता की निशानी नहीं है। हमें स्वयं अपनी साफ सफाई करनी चाहिए, शारीरिक श्रम करना चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए।

चिंतन मनन का प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। आइए अब आनंद लेते हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। आरंभ करेंगे देश वंदना के साथ।

प्रातःकाल हमारे मन में जो विचार आते हैं, सबसे पहले जो हमारे मन में भावना उत्पन्न होती है, कहते हैं उसका असर पूरे दिन रहता है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत ईश्वर के नाम के साथ करनी चाहिए। उनके नाम की पवित्रता, उनके नाम की सच्चाई हमारे मन में पूरे दिन रहती है। इससे हमारा मन शांत रहता है। तो आइए अपने दिन का आरंभ करें मैया के भजन के साथ। आइए मैया के लीला को समझें। हालांकि उनके लीला को समझना थोड़ा मुश्किल है, हम सभी तो उनके बस खिलौने मात्र हैं। उनके लाल, उनके बच्चे

मैया की माया को समझने के लिए हमें उनके दरबार में जाना होगा, उनका दरबार जहाँ वो चांद के से आसन पर बैठती हैं, जहाँ उनके भक्तजन ढोल नगाड़ों के साथ उनका भजन करते हैं, जहाँ का माहौल ही कुछ और होता है, जहाँ केवल शांति होती है, भजन होता है, कीर्तन होता है और मन के हर कोने में सिर्फ और सिर्फ मैया वास करती हैं। जो भजन में शांति मिलती है, जो भजन में पूरी तरह से रम जाता है, उसे माँ की माया भी धीरे धीरे समझ आने लगती है।

माँ कोई भी हो, माँ किसी की भी हो, माँ के मन में अजीब सी ममता होती है जो शायद दुनिया के किसी और प्राणी में वो ममता नहीं हो सकती जो माँ के मन में होती है। जैसे यशोदा मैया, कान्हा की सुन के यशोदा मैया कितनी खुश हो जाया करती थी, लल्ला की सुन के यशोदा मैया जहाँ हो वहाँ दौड़ी चली जाती थी लल्ला की खबर पाकर, और लल्ला की इतनी बदमाशियों के बाद भी यशोदा मैया उनसे इतना प्रेम करती थी, उन्हें जब वो उनकी गलतियों के लिए डांटती थी तब भी यशोदा माँ के मन में पीड़ा होती थी कि वो अपने लल्ला को डांट रही है। ठीक वैसे ही हमारी माताओं के मन में भी जब वो हमें डांटती हैं, जब वो हमें दंड देती हैं, तब उनके मन में भी उतनी ही या शायद उससे कहीं ज़्यादा पीड़ा होती है कि वो अपने ही बालक को दंड दे रही हैं। आइए लल्ला और यशोदा मैया की लीला को समझें, लल्ला और यशोदा मैया के प्रेम को समझें।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए आज स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में वार्ता सुने लू से बचाव। वार्ताकार हैं डॉक्टर एनपी सिंह।
1: सूर्य के अत्यधिक उत्ताप में रहने से या धूप में अत्यधिक दौड़कर जाने से शरीर की कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती है, परिणाम ऑक्सीजन की कमी और चयापचय की क्रिया घट जाती है और व्यक्ति लू से आक्रांत हो जाता है। लू से मरे हुए व्यक्ति की जांच जब की गई तो पल्मोनरी आर्टरी और फुसफुस में रक्त नहीं पाया गया। इलाज के लिए जल्द चिकित्सा इसमें सबसे जरूरी है, क्योंकि रोगी की ज्ञानहीनता होने के साथ उसकी छाती, मुंह, मेरुदंड, हाथ पैर पर ठंडी पानी से हमेशा लगाते रहना चाहिए। इससे भी अच्छा होगा गुनगुना पानी और भी अच्छा होता है। कच्चा आम पकाकर उसके शरीर पर और पैर में प्याज का रस का मसाज करना चाहिए। प्यास उस समय अधिक लगती है। ठंडा पानी नहीं दे करके उसे गर्म पानी से अगर दिया जाए तो उसे एनर्जी मिलती है और वह उसकी गर्मी दूर हो जाती है और थोड़े समय में ही ज्ञान भी वापस आ जाती है, क्योंकि लू लगने के बाद ज्ञान हीन हो जाता है आदमी। इसके साथ साथ रोगी की आंखें लाल होने पर सिर पर आइसक्रीम लगाना चाहिए, आइस बेक देना चाहिए। इन दोनों की व्यवस्था देहातों में ना हो पावे तो ठंडा पानी से उसका माथा हमेशा पोंछना।

0: चाहिए। धूप में निकले हुए व्यक्ति खाली पेट में नहीं निकलना चाहिए, और अगर खाना खा लिया है तो वह पानी अवश्य पी ले यात्रा के पहले, और अपनी सोच को नकारात्मक नहीं लावे कि उसका रिजल्ट क्या होगा। वह अफर्मेटिव, वह हम सकारात्मक ही सोच करे, रोगी अवश्य राहत में मिलेगी। उसके बाद अगर कोई कंप्लेन हो, भावी कंप्लेन हो, तो अन्य चिकित्सकों से परामर्श ले लें निकट के।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में वार्ता का विषय था लू से बचाव। वार्ताकार थे डॉक्टर एनपी सिंह। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम है रामचरितमानस गान। रामचरितमानस गान से पहले कुछ आज के सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। आज 7 बजे आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। साथ ही आप 12:30 पर सुनेंगे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हमारी आज की पहली सभा संपन्न होगी 3:00 PM। हालांकि आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप और FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के कार्यक्रम सुन पाएंगे। हमारे शेष कार्यक्रम प्रसारित होंगे 5:00 PM से। आइए सुने हमारा अगला कार्यक्रम रामचरितमानस गान महेंद्र कपूर के स्वर में।

श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति किसी से छिपी नहीं है। फिर भी राजा जनक अपनी रानी सुनैना से भरत के गुणों का बखान करते हैं। रानी की मनोदशा भांप कर राजा जनक भी यही चाहते हैं कि भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि भरत ने स्वार्थ तथा निजी सुखों की ओर स्वप्न में भी नहीं ताका है। उधर श्री राम के मन में ये विचार आता है कि मिथिलापति जनक अयोध्यावासियों तथा माताओं को चित्रकूट में वन प्रवास के कष्ट सहते कई दिन बीत गए हैं। वो कुल गुरु वशिष्ठ से निवेदन करते हैं कि अब वे जो उचित समझें आदेश दें।

रामचरित मानस गान आपने सुना महेंद्र कपूर के स्वर में। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि ठीक 7 बजे रोजाना की तरह प्रातः 7 बजे आनंद लीजिए मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला का। कार्यक्रम में सुगम संगीत और फिल्मी गीतों के साथ आप जान पाते हैं मौसम का हाल, रेल सूचना, समाचार पत्रों की सुर्खियां, आज का इतिहास, साथ ही आप सुन पाएंगे आज गांधी कथा। आज फिल्मी गीतों का आनंद लीजिए प्रातः 9:06 पर, 10 बजे, 11 बजे, 11:30 पर, दोपहर 2:30 पर, शाम 5:30 पर, रात 8 बजे और रात 10:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम पसंद आपकी होगा। प्रस्तुत होगा सुगम संगीत कार्यक्रम प्रातः 9:30 पर अभिजीत आनंद के स्वर में। शाम 7:52 पर सुगम संगीत में कलाकार भोपाल कृष्ण मिश्र। लोकगीतों का प्रसारण समय है आज प्रातः 10:30। कलाकार होंगे शिव शंकर कुशवाहा एवं साथी। दोपहर 1 बजे कलाकार वीणा देवी। दोपहर 12 बजे बहनों को संबोधित हमारा कार्यक्रम नारी लोक। 12:30 पर NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग घर आंगन कार्यक्रम होगा दोपहर 1:30 पर। दोपहर 3 बजे मीडियम वे पर सभा संपन्न होगी। आप न्यूज ऑन एयर ऐप और FM बैंड 100.1 MHz पर विविध भारती के कार्यक्रम सुन पाएंगे। श्रोताओं, आप हमारे केंद्र के शेष कार्यक्रम सुन पाएंगे मीडियम वेव FM 100.1 MHz एवं न्यूज ऑन एयर ऐप पर शाम 5 बजे से।

शाम 5 बजे युवाओं का विशेष कार्यक्रम युववाणी होता है। ग्राम जगत खेती गृहस्थी कार्यक्रम शाम 6 बजे। सुरक्षित प्रसव एवं नवजात की देखभाल, इस विषय पर हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में वार्ता होगी आज शाम 7:10 पर। वार्ताकार होंगे अजय कुमार घोष। श्रोताओं सुनना ना भूले रेडियो साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम शतदल आज रात 9:30।

मिनट पर। साथ ही प्रस्तुत होगा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम रात के 10 बजे। कलाकार होंगे एलके पंडित, राग छाया नट। हमारी आज की ये सभा संपन्न होगी रात 11:10 पर।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। ये समय होता है दिल्ली केंद्र से संस्कृत समाचार का। कृपया प्रतीक्षा करें।

गुड मॉर्निंग, राम राम, सुप्रभात। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना, अपने अपनों का और अपने आसपास का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, खुश होंगे और साथ ही अपने जीवन में हर रोज़ कुछ नया सीखने की, कुछ नया जोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। बस आपकी इसी कोशिश में आपका थोड़ा सा साथ देने के लिए लेकर आ गए हैं हम आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा, और आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। उम्मीद है कि आपने अपने दिन की शुरुआत कर ली होगी, नहीं की है तो हमारे साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। बहुत सी बातें होने वाली है, बहुत सारी गपशप होने वाली है और मनोरंजन के पोटली में लिपटी होने वाली है ढेर सारी जानकारियां। बस आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक छोटी पर बेहद जरूरी जानकारी के साथ। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक समझा है, हम बातें करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं वक्त का हाल। अगर वक्त का हाल आपको बता दूं तो 7:02 हो चुके हैं और दिन की बात करें तो आज दिन है शुक्रवार का और तारीख 22 मई 2026, और तारीख भागते जा रहे हैं, वक्त भागता जा रहा है, पर हमें थोड़ा ठहर जाना चाहिए कभी कभी अपने लिए, कभी कभी अपनों के लिए, और ख़ास तौर से तब तो ज़रूर ठहर जाना चाहिए जब हमें लगे कि शायद किसी को हमारी ज़रूरत हो। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत में मदद नहीं कर पाते हैं, अगर आप सक्षम होते हुए भी मदद नहीं कर पाते हैं, तो फिर वाकई में हमारा जीवन समझ लीजिए कि एक तरह से व्यर्थ हो जाता है अगर हम किसी के भी काम ना पाएं। अगर हम सक्षम हैं कि किसी की किसी तरह से मदद कर पाएं, किसी ज़रूरतमंद की, और उसके बावजूद हम मुंह फेर कर चले जाएं, तो सोचिए हमें इंसानियत कहाँ बचती है। इसलिए अगर मौका है, आपको भगवान ने इस लायक बनाया है, इतना सक्षम बनाया है कि आप किसी की मदद कर सकें, तो ज़रूर मदद कीजिए। इससे आपको तो शांति मिलेगी ही, साथ ही जो आपको वो इंसान दुआएं देगा ना, उससे आपके अपनों को भी बहुत सी शांति मिलने वाली है। तो और साथ ही आप जब आईने में खुद को देखेंगे, दर्पण में खुद को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, आपके अंदर एक अच्छा सा इंसान तो रहता ही है। वरना अगर आप बाहरी वेशभूषा पर जाते हैं, अंदर के शांति को महसूस नहीं किया है आपने अभी तक, तो फिर ये जीवन व्यर्थ है। अंदर की शांति को महसूस करना है तो मानवता को समझना होगा, हमें इंसानियत को समझना होगा, दूसरों की मदद करनी होगी और अच्छे सच्चे रास्ते पर चलना होगा, धर्म के रास्ते पर चलना होगा, और फिर

है, धर्म कोई भी हो, किसी भी प्रकार का धर्म हो, सारे धर्म एक ही बात कहते हैं कि हमें इंसानों की जितनी हो सके सेवा करनी चाहिए, और ख़ास तौर से अगर आप सक्षम हैं तो ज़रूर कीजिए। तब आप खुद को दर्पण में देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, वरना आप दर्पण में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बाहरी सुंदरता ही भाएगी। आंतरिक सुंदरता जब तक नहीं होती है तो बाहरी सुंदरता का भी कोई महत्व नहीं रह जाता।

0: हम दर्पण में देखकर अपना मुखड़ा तो समझ सकते हैं कि हम कहीं एक हद तक अपने बारे में जानते हैं। ये बात दूसरी है कि कई बार कुछ लोग अपनी अपने आप से नज़रें नहीं मिलाते और अपने बारे में झूठ कहते हैं, पर ज़्यादातर लोग अपने बारे में जानते हैं कि वो कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है। लेकिन अभी फ़िलहाल मौसम के स्वभाव की बात करें तो मौसम का स्वभाव इस तरह से बदल रहा है कि क्या ही कहने। एक पल में देखेंगे कि 5 मिनट पहले बहुत तेज़ आंधी तूफान है और थोड़ी देर बाद बारिश और बस थोड़ी ही देर बाद इतनी कड़क धूप की क्या ही कहने। फिलहाल आज के मौसम की अगर हम बात करें तो आज दिन में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, और आज संभावना है कि आसमान साफ रह सकता है, हालांकि तापमान बढ़ सकता है। और फिलहाल अगर हम बात करें सापेक्ष आर्द्रता की तो सापेक्ष आर्द्रता 70 से 75% और दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है, और अनुमान है कि 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पूर्वा हवा चलेगी। तो ये है मौसम का हाल, मौसम का मिजाज। ये मौसम अभी पता नहीं अचानक हमारे ज़िंदगी पे ब्रेक लगा देता है, अंदाज़ा भी नहीं होता कि अब बस 10 मिनट के बाद बारिश होने वाली है। अचानक मौसम ख़राब होता है और अचानक मौसम ठीक हो जाता है, और मौसम ने जो ब्रेक हमारे जीवन पे मतलब लगाने की कसम खाई है तो खाई ही है। खैर, अभी फ़िलहाल हम अपने कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक पर चलते हैं, यानी कि एक छोटे से अंतराल पर चलते हैं। एक छोटे से अंतराल के इस पार हम होंगे यहीं, आप भी कहीं मत जाइएगा।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: बिल्कुल अपने वादे के अनुसार एक छोटे से अंतराल के इस पार हमें आपके साथ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त, रेडियो होस्ट उमा, आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में हम सुगम संगीत सुनते हैं, और सुगम संगीत में आज कलाकार है स्वामी प्रणवानंद। इनके कुछ भजन आपने सुने, आइए एक और भजन सुनते हैं जो लिखा है मीराबाई ने।

0: तेरी यवना रहूंगी तेरी
1: आरती की। कृष्ण और मीरा के प्रेम में एक अजब सी माया दिखती है, अजब सी उनमें कसक दिखती है। और बात करें तो मीरा के ऊपर कितनी ही पाबंदियाँ थी, इसके बावजूद वो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से रम गई कि क्या कहने। और आज की बात करें तो आजकल हमने खुद पर पाबंदियाँ लगा रखी है, पाबंदियाँ कि हम छोटे सपने देखते हैं, पाबंदियाँ कि हम सोचते हैं शायद हमसे ये काम संभव नहीं होगा, वो काम संभव नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ना तो चाहते हैं पर अगर हम चाहें कि उसके लिए हम बाहर जाएं तो हम खुद को ही रोक देते हैं कि अगर हम बाहर जाएंगे तो पता नहीं बाहर हम अपने घर वालों के बिना कैसे रहेंगे, अकेले कैसे सब कुछ गुजारा होगा। कई बार कई बच्चे ये सोचकर खुद पर ही कई सारी पाबंदियाँ लगा देते हैं और कहते हैं कि अक्सर हमें कुछ नया सीखते रहना चाहिए, कुछ नया करते रहना चाहिए। एक तरह की पाबंदी ये भी है कि हम जैसे माहौल में रहते हैं वैसे ही माहौल में खुद को ढाल लेते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश नहीं करते हैं और जिस तरीके से हमारा जीवन चल रहा होता है उसी तरीके से उसे चलाते रहते हैं। ज़रूरी होता है कि हम कुछ नया सीखते रहें, खुद को अपडेट करते रहें। और अभी देखिए एआई का ज़माना आ गया है और अभी हर तरफ कहा जा रहा है कि हमें एआई सीख लेना चाहिए, एआई सीख लेना चाहिए। और ऐसे में अभी भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो खुद पर पाबंदी लगाना चाहते हैं और चाहते हैं कि ना ये सारी चीज़ें अभी हम सीख कर क्या करेंगे, फिलहाल हम अपने कार्यक्रम पर और ज़्यादा पाबंदी नहीं लगाएंगे, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और कार्यक्रम में आगे हम जानेंगे रेल सूचना के बारे में। जी हाँ, और कोई अगर आपका अपना आने वाला है, कोई अगर नहीं आने वाला है, आप किसी अपने के पास जाने वाले या फिर आप अपने ऊपर से पाबंदियां हटा कर कुछ नया सीखने के लिए कहीं जाने वाले हैं तो सबसे पहले ट्रेनों का हाल, ट्रेनों का मिजाज जान लेते हैं, कौन सी ट्रेनें सही समय पर है और कौन सी ट्रेनें हैं लेट लतीफ। अगर बात करें ट्रेन संख्या 15553 यानी कि भागलपुर जयनगर एक्सप्रेस की, तो बिल्कुल सही समय यानी कि 7:50 पर भागलपुर से रवाना होगी। ट्रेन संख्या 13016 यानी कि हावड़ा कवि गुरु एक्सप्रेस 7:45 पर भागलपुर पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 12368 आनंद बिहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस अपने तय समय से 14 की देरी से चलते हुए 8:29 पर भागलपुर पहुंचेगी। 15658 यानी कि ब्रह्मपुत्र मेल 25 की देरी से चल रही है, अब ये ट्रेन 8:30 पर भागलपुर आएगी। 5-3-4-1-6 साहिबगंज जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर, जमालपुर साहिबगंज पैसेंजर अपने निर्धारित समय 8:37 पर भागलपुर आएगी। ट्रेन संख्या 12335

0: आज भागलपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस राइट टाइम में बिल्कुल 8:55 पर भागलपुर से रवाना होगी। 1:03:03 रांची भागलपुर वनांचल एक्सप्रेस ये भी बिल्कुल सही समय से चल रही है, 9:00 भागलपुर पहुंच जाएगी सुबह 9:00। बात करें ट्रेन संख्या 6:03:31 यानी कि साहिबगंज जमालपुर मेमू की, तो ये 9:15 पर भागलपुर आएगी। 1:03:09 मालदा क्यूल इंटरसिटी 9:35 पर बिल्कुल अपने सही समय पर भागलपुर पहुंचेगी। 1:03:241 यानी कि बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी 10:15 पर भागलपुर आएगी। 1:02:367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस बिल्कुल अपने निर्धारित समय 11:55 पर भागलपुर से रवाना होगी। तो ये था ट्रेनों का हाल, ट्रेनों का मिजाज। अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे गांधी कथा। जी हाँ, गांधी कथा में आज वार्ता है महात्मा की बात और भेंट वार्ताकार हैं डॉक्टर सुजाता चौधरी और भेंट करता है अमित कुमार। तो आइए सुनते हैं भेंट वार्ता, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल, अंतराल के बाद आप सुनेंगे भेंट वार्ता।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

0: श्रोताओं नमस्कार। गांधी कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुजाता चौधरी, जो समाज सेविका, जानी मानी लेखिका और गांधी विचारक हैं। मैम, सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, शुक्रिया
0: जी। महात्मा गांधी की प्रासंगिकता आज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दिखती है। ऐसे में इन सभी विषयों को एक छोटे से इंटरव्यू में शामिल करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम आपके अनुभवों और ज्ञान के आधार पर महात्मा की बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यह है मैडम कि महात्मा गांधी की किस विचारधारा ने आपको सबसे पहले आकर्षित किया, या इसे यूं कह ले कि आपको ये कब लगा कि आपको महात्मा गांधी पर काम करना चाहिए?
1: सबसे पहली बात जो हम बताना चाहते हैं आपसे कि जब 10th की परीक्षा हमने दी थी तो हमें एक पुस्तक मिली, उसका नाम था सत्य के प्रयोग।
0: मैम, साल कौन सा रहा होगा जब आपने 10th दी होगा?
1: ये 83 की बात है
0: जी।
1: जी, तो उस समय उस किताब को जब पढ़ा तो उस किताब में एक पंक्ति है जिसमें गांधी जी ने अपने ब्रिटेन प्रवास में लिखा है कि मैं पहले कैसे सूटेड बूटेड रहता था, किस तरह से मक्खन खाता था, लेकिन बाद में चलकर मैंने सोचा कि नहीं, ये जीवन सही नहीं, कुछ तो पैसों की भी दिक्कत थी और कुछ सादगी का भी उन पे प्रभाव आया था। तो उसी दरमियान वो लिखते हैं कि जब मैंने मक्खन को त्याग कर मूंगफली को पीस के मक्खन बनाया उसको और उसी को ब्रेड पे लगा के खाया और टोप हैट सब छोड़ा, तो फिर से मैं कहना चाहती हूँ कि उसी पंक्ति को जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, जिसमें लिखते हैं कि पाठ को ये मत समझिएगा कि मेरे जीवन में एक नीरसता आ गई या मैं कोई बोर व्यक्ति हो गया, इसके उलट ये हुआ कि मेरे अंदर एक आत्मबल आ गया, उस त्याग से मेरे जीवन में एक आत्मबल आया और उस आत्मबल से मुझे एक नई ऊर्जा मिली। उस पंक्ति को पढ़कर एक किशोर के मन में भी बहुत बार बार ये बातें उठती थी कि आत्मबल आखिर है क्या और कैसे उनमें ऊर्जा भरी होगी। वो पंक्ति बहुत देर तक उद्वेलित करती रही, लेकिन फिर घटनाक्रम में वो बात थोड़ी दब गई और पढ़ाई में आगे बढ़े। उसके बाद कुछ कुछ महात्मा गांधी को जब कभी पढ़ना होता था पढ़ते थे और एक आश्चर्य सा लगता था कि ये सचमुच में आइंस्टीन ने जो कहा है वो सही में ऐसा ही ये व्यक्ति है। उसके बाद हमने बहुत दिनों बाद, उस घटना के 10 साल बाद, हमने संपूर्ण बांग में पढ़ा
0: जो कि सौ
1: खंडों में है। जो कुछ भी नहीं गांधी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है बोला है वो सारी बातें उसमें है। उसको पढ़ने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, एक चमत्कार जैसा लगा। चमत्कार इन द सेंस इस मामले में कि जैसे हमारे घर में धार्मिक माहौल था, धार्मिक संतों की जीवनी हमने खूब पढ़ी, भक्तमाल पढ़ा, ब्रज के भक्त पढ़ा, भारत के महान साधक साधिकाएं पढ़ा, तो उसमें हमें गांधी का एक नया रूप मिला। वो था गांधी महात्मा, जिस नाम का भी आपने जिक्र किया है कि आध्यात्मिक मामले में भी वो एक बेजोड़ व्यक्ति थे। और हम यहाँ तक हमें जो लगा इतने लोगों को पढ़ने के बाद, साधकों को पढ़ने के बाद, कि इनसे बड़ा महात्मा शायद भारतीय दर्शन में या भारतीय अध्यात्म की दुनिया में कोई नहीं हुआ। तो इस तरह से हमने उनके उनके जीवन पर खोज करना शुरू किया और हमने जगह जगह ये बात कहा है आज भी कि जब वो जैसे सागर में जब हम गोता लगाते हैं तो बहुत सारे मोती मिलते हैं, तो इस बांग्मय के सागर में हमें बहुत मोती मिले और जिसको हमने अलग अलग पुस्तकों के रूप में समाज के सामने लाया
0: जी। वर्तमान जो अभी परिदृश्य है उसमें गांधी जी को किस तरह से समझा जा सकता है, उनके विचारों को किस तरह से लिया जाए कि वो आत्मसात किया जा सके उसे?
1: ये गांधी को समझना थोड़ा मुश्किल तो है
0: जी,
1: इस बात से हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। वो जितने ही सरल हैं, जितने ही सहज हैं, उतना ही उनको समझना कठिन है। ये बात अंग्रेज बहादुर जो थे वो भी सोचते थे, क्योंकि जब गांधी अपनी सारी बात उनको बता देते थे, उनके उनके डिक्शनरी में कोई गुप्त बात होती नहीं थी, तो अंग्रेज सोचते थे ऐसा हो नहीं सकता है, ये बात नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी अपने दुश्मन को सारी बात क्यों बताएगा। तो इससे वो गांधी जिस बात को करने वाले होते थे, अंग्रेज वो पता भी देते थे तो अंग्रेज उस पर विश्वास नहीं करते थे। और जैसे चंपारण का जो सत्याग्रह हुआ उसमें अंग्रेजों ने इसी कारण से मात भी खाई कि उनको गांधी के सरलता और सहजता पर विश्वास नहीं था। लेकिन जब गांधी इंग्लैंड गए हैं तो उस समय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम आप लोग सब लोग हम लोग जानते हैं, वो बहुत बड़े जीनियस थे। तो जब गांधी जी उनसे मिले तो पत्रकारों ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को घेर लिया कि अच्छा बताओ इस महात्मा को तुमने क्या आंका। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि हिमालय के पास खड़ा तलहटी में कोई व्यक्ति क्या हिमालय को नाप सकता है या आंक सकता है, क्या उसको कह सकता है। इसी तरह यह व्यक्ति मेरे सामने हिमालय है और मैं उसके पैरों के पड़ा हुआ तलहटी में जैसे व्यक्ति हूँ, तो मैं नहीं आंक सकता हूँ। तो एक तो उनका जो विराटता है वो उसके कारण हम लोग भी उनकी बहुत सारी बातों को नहीं समझ पाते हैं, और नहीं समझ पाने के कारण उनको महात्मा मानकर, कभी उनको अवतारी मानकर या कोई चमत्कारी व्यक्ति मानकर उनसे हम लोग थोड़ी अपनी दूरी बना लेते हैं और सोचते हैं शायद उनको अपनाने से मेरे जीवन की जो सारी खुशियां हैं वो त्याग में जीवन से कहीं वो समाप्त ना हो जाए, जबकि होता उल्टा है। या जो हमारी जो पुरानी भी जो शास्त्र हैं वो भी कहते हैं कि त्याग में जीवन ही जो है वो आपको सुख देता है, और गांधी ने उसको जिया, उसको देखा और भोगा, लेकिन फिर भी उनके जीवन को अपनाने से डरते हैं। इसका यही कारण है कि हम उनको पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। हमें सबसे पहले, हमें जो लगता है आज के युवाओं से खास करके और हम सब लोगों के लिए, कि गांधी को समझने के लिए सबसे पहले उनको थोड़ा पढ़ना बहुत जरूरी है। उनको पढ़ने के बाद उनके जो सत्य अहिंसा जैसे जो और भी जो भी बातें हैं उनकी, जो हम एकादश व्रत को कह लें या और भी सारी बातें, एक बार जरूर पढ़ें। सत्य के प्रयोग को जरूर पढ़ें। और लुई फीसर और रोम्या रोला दो ऐसे महान लेखक हैं जिन्होंने गांधी के बारे में उस समय, चूंकि उन्होंने गांधी को देखा और सुना था, उसको लिखा है। तो हमारे जो आज के नौजवान हैं वो इसको पढ़ें तो जरूर हम उनके मूल्यों को अच्छी तरह से समझ सकें।
0: त्याग में ही सुख है, ये तो आपका अध्ययन है, उस तरह का जीवन जिया तो आप ये मानती हैं, लेकिन जो हमारा एक बड़ा तबका है वो आम लोगों का है, आम लोग कैसे आज उनको रिलेट कर पाए। मैं फिर से वही पूछना चाहूंगा कि वर्तमान परिदृश्य में जो आम लोग हैं उनके अंदर क्या कमी है जो वो खुद को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, आप क्या देखती हैं?
1: जी, उनके अंदर कोई कमी नहीं है, आम जनों के अंदर कोई कमी नहीं है। सबसे पहले तो कमी हम उन लोगों की कहेंगे, अपनी भी कहेंगे, कि जो लोग गांधी का नाम लेते हैं उनको पहले अपना आचरण उस तरह का समाज के सामने लाना होगा कि उस आचरण को देख के लोग समझें कि जो गांधी को का नाम लेता है, जो गांधी की बात करता है, वो समाज में कैसे अन्य लोगों से थोड़ा सा अलग है। वो उसको जब देखेंगे आमजन, तब, क्योंकि आज वो गांधी को न पढ़ रहे हैं, न देख रहे हैं, न सुन रहे हैं, सिर्फ गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी हमारे देश के हैं, इतनी बातें जान रहे हैं, लेकिन इसका पहला उत्तरदायित्व तो गांधी जनों पर ही है। दूसरा, हम फिर ही कहेंगे कि जो आम जन पढ़ सकते हैं उनके सामने हम लोगों को आकाशवाणी के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा और भी जो है उनके द्वारा उन गांधी के जो सूत्र हैं जीवन के, उनको थोड़ा समाज के सामने लाने की जरूरत है कि आखिर गांधी गांधी क्यों है, आखिर पूरी दुनिया में आज गांधी की बातें क्यों हो रही है, उनका गांधी का जो जन्म दिवस है उसको क्यों अहिंसा दिवस के रूप में किया। तो ये बातें पहले, और एक दूसरी बात जो हम सबसे ज्यादा अभी हमें लगता है जरूरत है कि हम लोग, आप लोग के पास जो विधा है उसके द्वारा भी गांधी का जो गौरव करने लायक जो बातें हैं वो लोगों के सामने लानी चाहिए कि आखिर गांधी ने क्या किया है।
0: अहिंसा को लेकर भी मिसकंसेप्शन है कि अहिंसा आखिर है क्या, थोड़ा सा इस प्रकाश डालेंगे कि आम आदमी अहिंसा को किस तरह से समझे अपने जीवन के स्वरूप में।
1: अहिंसा, देखिए, अहिंसा हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कुछ लोग बातें करते हैं कि अहिंसा का अर्थ कायरपना हो जाता है, तो दो लोग यदि लड़ते हैं, दो समुदाय में जब लड़ाई होती है तो हम अपने आन बान के लिए कहते नहीं हमारा धर्म अच्छा है, हम उससे लड़ मटेंगे, हम अपने कट मिटेंगे। लेकिन आप एक बार ये सोचिए कि यदि हमारे दो बच्चों में, दो हमारे पुत्र हैं या पुत्रियां हैं, उनमें लड़ाई हो जाती है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम दोनों के हाथ में तलवार दे दें, और उस समय क्या हम हिंसा की वकालत कर सकते हैं? उस समय हम उन्हें अहिंसा का मार्ग बताएंगे कि देखो लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है, तुम लोग बातचीत करके इस मामले को सुलझा लो। क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि हमको अपने बच्चे से प्रेम है। लेकिन हम हिंसा की बात तब करते हैं जब हमारे अंदर प्रेम नहीं होता है, हम उन लोगों से हिंसा की बात करते हैं जिनसे हम प्रेम नहीं करते हैं। तो हमें समझना होगा कि जहां प्रेम है वहां हिंसा रुक ही नहीं सकती है, वहां टिकेगी नहीं, वहां हिंसा के सिवा और कोई विकल्प ही नहीं होता। तो इस तरह से हम अहिंसा को छोटे से सूत्र में समझ सकते, मतलब हम ये सोचे कि किसी बात को, जैसे कहा जाता है ना, हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि कोई भी बात हो तो पहले अपने पे महसूस करके देखो, कभी मेरे साथ ऐसा होता है तो क्या होता है। तो उसी तरह से यदि हम ये सोचे कि हम, चूंकि हम नफरत में आ जाते हैं किसी बात को लेके, और वो नफरत भी कहीं बाहर से नहीं आती, हमारे अंदर की नफरत होती है, हमारे अंदर की कुंठा होती है, वही हमारे आगे आके हमें हिंसा की तरफ ले जाती है।
0: समय अब थोड़ा सा कम है हमारे पास, तो अंतिम रूप से बस ये जानना चाहेंगे आपसे कि अभी तक का जो आपका अनुभव है, अगर उसे एक छोटे से सूत्र में बांधना हो, या आप बताना चाहती हूँ कि मैंने ये किया तो मुझे ये मिला, तो वो एक सूत्र कौन सा होगा जो आप आम जनों को देना चाहेंगे? या
1: हमारे जो सबसे अभी का जो वर्तमान में जो हम जिसमें जी रहे हैं, उसमें गांधी का एक सूत्र है कि कोई भी काम करो तो ये सोचो कि क्या इससे अंतिम जन को कोई फायदा है। तो हमने इसको प्रयोग करके देखा और उस

0: अंतिम जन के बारे में हम कुछ काम कर रहे हैं एजुकेशन के मामले में और उनके लिए, तो हम देखते हैं कि वो जो है वो जो अंतिम जन की सोचने की जो और उनके लिए करने की जो एक एक जो एक मन में जो उठती है तरंगे कि उनके लिए कुछ की जाए, ये पूरे जीवन को पूरे जीवन दर्शन को आंदोलित कर देती है और मन में ऊर्जा का संचार तो करती ही है, साथ साथ आनंद और प्रेम से भी भर देती है। तो हम अंतिम यदि हमसे एक दो शब्द में कहें तो हम यही कहेंगे कि गांधी का जो सूत्र है अंतिम जन के बारे में, हम हर भारतीयों को इस पर सोचने की जरूरत है।
1: मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आई और इतना कीमती समय हमें दिया, धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
1: श्रोताओं, आज इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी नए विचारों के साथ। धन्यवाद।

गांधी कथा में आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। जी हाँ, गांधी कथा अभी आप सुन रहे थे। भेंट वार्ता का विषय था महात्मा की बात और भेंट वार्ता का अर्थ ही डॉक्टर सुजाता चौधरी, भेंटकर्ता अमित कुमार। दोस्तों, गांधी के जीवन से हमें एक ही बात सीखने को मिलती है कि हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए, हमें जितनी हो सके दूसरों की सेवा करना चाहिए। और गांधी जी के जीवन से तो हमने यही देखा है कि उन्होंने जितना हो सके दूसरों की सेवा की है। वो दूसरों के लिए जिए हैं और कहते भी हैं कि जीने का मतलब ही होता है कि आप दूसरों के लिए जिएं।

0: It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexus showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है? ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत। वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है।
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: एक बहुत ही प्यारे से गीत और एक छोटे से अंतराल के इस बार हमें आपके साथ लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। गुड मॉर्निंग विक्रमशिला में मैं आपकी रेडियो दोस्त रेडियो होस्ट उमा आपका फिर से स्वागत करती हूं। और आपको वक्त का हाल बता दूं तो वक्त हो चुका है 7:41 और दिन है आज शुक्रवार का, तारीख है 22 मई। तो आइए देखते हैं 22 मई के आज के तारीख में क्या कुछ घटित हुआ था, क्या कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ था, यानी कि इतिहास के पन्नों को हम पलटेंगे और जानेंगे कि आज के दिन में क्या कुछ घटित हुआ था। सबसे पहले 1805 की बात, 1805 में गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली ने एक आदेश के तहत दिल्ली के मुगल बादशाह के लिए एक स्थायी प्रावधान की व्यवस्था की थी। 1990 में उत्तरी एवं दक्षिणी यमन के विलय के साथ संयुक्त यमन गणराज्य का अभ्युदय हुआ था। 1992 में बोस्निया स्लोवेनिया और क्रोएशिया संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए थे। बात करें 1996 की तो 1996 में माइकल कैम्प डेविस तीसरी बार अगले 5 वर्षों तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंध निदेशक चुने गए। 2001 में दलाई लामा ने तिब्बत की आज़ादी की मांग छोड़ी। 2002 में नेपाल में संसद भंग हो गया था। 2007 में गणितज्ञ श्रीनिवास वर्धन को नॉर्वे का अबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और साल 2008 में केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों में ओबीसी छात्रों को 27% कोटा देने का आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए सरकार ने 10,328 करोड़ रुपए दिए थे। बात करें तो आज ही के दिन साल 2008 में मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति निर्मला सहित हिंदी के 5 रचनाओं के अनुवादक वर्ष 2007 के साहित्य अकादमी पुरस्कार हेतु चुने गए थे। साल 2008 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ की 47 सदस्यीय मानवाधिकार समिति में पाकिस्तान को शामिल कर लिया गया था। और अब बात उन व्यक्तियों की जिनका आज निधन हो गया था। आज ही के दिन साल 2021 में रेवा प्रसाद द्विवेदी का निधन हो गया। रेवा प्रसाद द्विवेदी काशी के प्रकांड विद्वान थे और साल 2021 में निधन हो गया था राम लक्ष्मण का। राम लक्ष्मण वो संगीतकार जिनके बहुत सारे गीत आपने सुने होंगे, हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार थे। और इनके नाम की एक अनोखी कहानी है जो मैं आपको बताऊंगी। साल 2012 में निधन हो गया था एफ.ए. खोगलाम का। एफ.ए. खोगलाम मेघालय के भूतपूर्व 8वें मुख्यमंत्री थे। साल 2011 में निधन हो गया था गोविंद चंद्र पांडे का, 20वीं सदी के जाने माने चिंतक इतिहासवेत्ता।

संस्कृतिज्ञ और सौंदर्य शास्त्री थे। साल 2000 में सोहराब फिरोज शाह गोदरेज का निधन हुआ। प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी, उद्यमी और गोदरेज समूह

था शेर शाह सूरी। और बात अब उन व्यक्तियों की जिनका आज के दिन जन्मदिन है। 1925 में जन्म हुआ था मदन लाल मधु का। मदन लाल मधु हिंदी और रूसी साहित्य के आधुनिक सेतु निर्माताओं में से एक थे। 1878 में गामा पहलवान का जन्म हुआ था। गामा पहलवान के बारे में तो आपने सुना ही होगा। गामा पहलवान विश्व के एकमात्र ऐसे पहलवान थे जिन्होंने अपने जीवन में कोई भी कुश्ती नहीं हारी थी। 1774 में जन्म हुआ था राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय जो कि धार्मिक और सामाजिक विकास के क्षेत्र में एक सबसे कह सकते हैं कि अग्रणी नाम है। इन्होंने ही आज जो हम देखते हैं कि एक हमारा मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न जो हमारी शिक्षा है उसमें इनका बहुत महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि रोल है। सती प्रथा को ख़त्म करने में, महिला के अधिकारों के लिए इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी। फिर चाहे वो बाल विवाह के खिलाफ हो या फिर बच्चों को जो गर्भ में ही यानी कि भ्रूण हत्या के खिलाफ हो। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में और उसी के जरिए से इन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए इन्होंने उस वक्त जितना हो सका काम किया था। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी राम लक्ष्मण के बारे में भी। जी हाँ, राम लक्ष्मण जो कि बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार थे और इनका जन्म 16 सितंबर 1942 में हुआ था। और अगर बात करें तो इनका जो नाम है, इन्होंने लक्ष्मण नाम के अंडर इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। और बात करें तो इन्होंने विजय पाटिल के साथ भी काम किया। और अगर इनके करियर की शुरुआत की बात करें तो इन्हें पहली बार नोटिस किया था एक कॉमेडियन ने। उसके बाद इन्हें काम मिला मराठी फिल्म के लिए म्यूज़िक बनाना था और ये म्यूज़िक इतना हिट हो गया कि इसके बाद इन्हें हिंदी फिल्मों में भी काम मिलने लग गया। और इन्होंने बहुत सारे प्रसिद्ध सिंगर के साथ, बहुत सारे प्रसिद्ध लेखकों के साथ काम किया। इन्होंने महेश भट्ट के साथ काम किया, मनमोहन देसाई के साथ काम किया, शैलेंद्र सिंह के साथ काम किया। उषा मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह इनके फेवरेट सिंगर थे और अरशद भोपाली इनके फेवरेट गीतकार थे। और अगर हम बात करें राम लक्ष्मण की तो राम लक्ष्मण ने रविंद्र रावल के साथ भी इन्होंने काम किया। और अगर इनके नाम की कहानी की बात करें तो इनके नाम में जो लक्ष्मण है ना, और राम लक्ष्मण, राम इनके पार्टनर हुआ करते थे जिनका नाम सुरेंद्र था। इनकी मृत्यु हो गई और जब उन्होंने 1977 में एक फिल्म साइन किया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उन्होंने अपने पार्टनर का नाम अपने नाम के साथ हमेशा लगा कर रखा और राम लक्ष्मण के नाम से ही ये संगीत बनाते रहे फिल्मों के लिए। और 1988 में एक फिल्म आई थी मैंने प्यार 1989 में इनकी एक फिल्म आई थी मैंने प्यार किया, जो सूरज बड़जात्या की थी। और इस फिल्म के संगीत के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। और इसी फिल्म के एक गीत को हम सुनेंगे, बहुत ही प्यारा सा गीत। और इन्होंने बहुत सारे और भी फिल्मों के लिए काम किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं। और 22 मई 2021 को नागपुर में इनका देहांत हो गया था कोविड की वजह से। फिलहाल इनकी ही बनाए एक संगीत को हम सुनते हैं और फिल्म है हम आपके हैं कौन, माफ़ कीजिएगा, फिल्म है मैंने प्यार किया।

आइए फिलहाल हम तो जानते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियां। जी हां, इतिहास के बारे में हमने बात कर लिया, अब पलटते हैं समाचार पत्रों को और जानते हैं फिलहाल वर्तमान में देश दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है। समाचार पत्रों की पहली सुर्खी है मौसम से जुड़ी हुई। यूपी का बांदा 47.6 डिग्री लगातार पांचवें दिन देश का सबसे गर्म स्थान रहा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत 8 राज्य लू की चपेट में, हफ्ते भर राहत के आसार नहीं। इधर बिहार का मौसम दो हिस्सों में बटा, दक्षिण में झुलसा रही मौसम 46.6 डिग्री की गर्मी, उत्तर में ओले बारिश और आंधी। रोहतास में पारा सबसे ज्यादा, 4 जिलों में रात भी गर्म। एवरेस्ट पर बंदे मातरम, बीएसएफ की महिलाओं ने रचा इतिहास। तमिलनाडु में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग केरल के बाद ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बना। सीबीआई का एक्शन, आरोपी मोटे गांवकर से संबंध के चलते बुलाया था। नीट लीक के मामले में बेटे के लिए पेपर लेने का शक में डॉक्टर से पूछताछ, सीबीआई ने गवाह बनाया। खुलासा, 5 राज्यों में बिका नीट का पेपर। विक्रमशिला सेतु पर कल तक पहला बेली ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। 2 और बेली ब्रिज निर्माण के बाद 7 जून से पहले शुरू होगा आवागमन। पुलवामा के मास्टरमाइंड हमजा को पीओके में अज्ञात ने ढेर किया। नया विभाग बना, सीएजी को बताना भूल गई सरकार, नतीजा वेतन नहीं। युवा रोजगार और कौशल विकास के 4500 कर्मचारी वेतन से वंचित। एसआईटी की 6 टीमों ने तस्करों के जाल से मासूमों को बचाया। नाथनगर से लापता 5 बच्चियां 12 घंटे में पटना स्टेशन पर मिली। ड्यूटी पर जान गंवाने वाले 61 जवानों के परिजनों को 37.50 करोड़ का चेक। सभी 40 पुलिस जिलों में क्वालिटी स्कूल खुलेंगे। पुलिस कर्मियों को कैशलेस इलाज की सुविधा। महंगाई की मार, दाम बढ़ाने पर सचिव ने दी सैद्धांतिक सहमति। सुधा के दूध और अन्य उत्पाद 25 मई से 2 से 4 रुपए तक महंगे हो जाएंगे। SKMCH, NMCH, DMCH में लगेंगी एडवांस मशीनें। कैंसर के इलाज के लिए अब दिल्ली मुंबई की दौड़ नहीं। बिहार के 3 अस्पतालों के लिए 6 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर। एसी के टपकते पानी से शॉर्ट सर्किट ना हो, इसलिए मायागंज में सिटी स्कैन बंद। इलाज JLNMCH में, सिटी स्कैन सदर या सुपर स्पेशलिटी में 1000 रुपए का अतिरिक्त खर्च। बार बार जल रहे ट्रांसफार्मर, केबल भी पिघल रहा, गर्मी में परेशानी। नए ट्रांसफार्मर कवर वायर भी फेल, बिजली कंपनी जवाब देने से बच रही। टीएमबीयू की जांच रिपोर्ट पर लोक भवन से आए पत्र के बाद उलझा मामला। गेस्ट फैकल्टी रिन्यू पर पेंच बहाली रद्द होने का खतरा। मार्च में संविदा पूरी, भुगतान अब तक नहीं हुआ। जाम से मिलेगी मुक्ति। मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन हाईवे अगले माह चालू होगा। 124 किलोमीटर की दूरी अब मात्र 2 घंटे में। सड़क की फिनिशिंग अंतिम दौर में। 3792 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये ग्रीनफील्ड हाईवे। भागलपुर मिर्जा चौकी 2 लेन भी 2 महीनों में बन जाएगा। अलर्ट, मुख्यमंत्री ने संभावित बाढ़ और सूखा से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। खजाने पर पहला हक आपदा पीड़ितों का, ऐसा सीएम का कहना। जमुई में कुकुरझप डैम के पास कैमरे में कैद हुए कई तेंदुए, वन विभाग भी चौंका। 5 दिन पहले लगाए गए कैमरों की जांच में हुआ खुलासा, बिहार का तीसरा सबसे बड़ा लेपर्ड जोन बनने की ओर। मंथन शुरू, केंद्रीय बैंकों में बैठक का दौर। मिशन मोड में गवर्नर संजय मल्होत्रा, 3 से 5 जून के बीच समीक्षा होगी। रुपया संभालने के उपाय 2 हफ्तों में आएंगे। 2026 में रुपए 7% से ज्यादा गिरावट ने बढ़ाई चिंता। मेगा इशू, मास्क बनेंगे दुनिया के पहले ट्रिलियनर। स्पेस एक्स का आईपीओ कन्फर्म, 193 लाख करोड़ तक जुटाएगी। डीजल नहीं तो ट्रक भी नहीं, एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी में नीलामी बंद हुई। नया ट्रेंड, आयात पर निर्भरता कम करने के लिए गोल्ड एक्सचेंज स्कीम बढ़ी। ऊंचे दाम के बीच पुराने सोने की रिसाइकिलिंग 44% बढ़कर 31 टन तक पहुंची। डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट का खुलासा। अदानी पोर्ट्स ने अब जेपी फर्टिलाइजर्स को खरीदा। बांग्लादेश से 2 सीरीज में क्लीन स्वीप। 2023 के बाद पाकिस्तान एक बार भी घर के बाहर नहीं जीता। अब बात आईपीएल की।
आईपीएल के 66वें मैच में 89 रन से हारे सुपर किंग्स गुजरात की सबसे बड़ी जीत। चेन्नई लगातार तीसरी बार बाहर है। आज के मैच की बात करें तो आज हैदराबाद में मुकाबला शाम 7:30 बजे से। प्रीव्यू मैच, सनराइजर्स हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच टॉप टू में रहने की जंग होगी। पहले नंबर पर बेंगलुरु, दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर हैदराबाद और चौथे नंबर पर राजस्थान और पांचवें नंबर पर पंजाब बना हुआ है। फुटबॉल, एस्टन विला यूरोप लीग चैंपियन या ट्रॉफी जीतने वाला छठा इंग्लिश क्लब, 30 साल बाद पहला बड़ा खिताब जीता। ये थे आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां और अब हमसे वक्त कह रहा है कि हमें आपसे लेनी चाहिए इजाज़त। और जाने से पहले कुछ ख़ास बात की, अपना और अपने अपनों का रखें विशेष ख्याल और इस मौसम में ध्यान रखें कि गर्मी से बचना है, बहुत सारा पानी पीना है और जहां भी थोड़ा भी वक्त बिताएं वहां की साफ़ सफ़ाई की जिम्मेदारी आपकी भी होती है। साफ़ सफ़ाई होगी तो आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपके परिवार भी और आपका समाज भी स्वस्थ रहेगा। इन्हीं कुछ बातों के साथ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट उमा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

आप सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विक्रमशिला। हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने से पहले आइए सुने कुछ संदेश।

0: Akashwani at 90.
1: हम आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। आइए अब सुने दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और खबरनामा। श्रोताओं, खबरनामा के थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार। कृपया इन समाचारों के लिए प्रतीक्षा करें।

0: कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
5: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर

0: और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
5: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
6: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में 1 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
4: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नी यारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लो ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
7: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
4: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $5,00,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
8: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्य के शब्द हैं, 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्ययोजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल।

0: ये आकाशवाणी पटना है। थोड़ी ही देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।
1: अब उपभोक्ता आयोगों में शिकायतों की ई फाइलिंग करना हुआ और भी आसान।
2: घर बैठे ही ई जागृति पोर्टल www.e-jagriti.gov.in पर कहीं से भी खुद से रजिस्टर कर अपना केस दर्ज कर सकते हैं। 5 लाख रुपए तक के मामलों पर कोई शुल्क नहीं।
1: ई जागृति पोर्टल उपभोक्ताओं का अपना डिजिटल मंच। शिकायत दर्ज करें और त्वरित समाधान पाएं।
2: जागो ग्राहक जागो। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा हितने जारी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: और इस गीत के बाद
6: छाया गीत

This is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: इधर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की। शिवालयों में भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। राज्य सरकार विज्ञान और प्रावैधिकी कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए 3 श्रेणियों में यंग प्रोफेशनल की भर्ती करेगी। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों की निगरानी और समस्याओं के समाधान के लिए पटना में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की। और मौसम विभाग ने आज अरवल, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास और बक्सर समेत दक्षिण बिहार के 14 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया। उत्तर बिहार में कई स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रावणी मेले के दौरान शिवालयों में भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। श्रावणी मेला की तैयारियों की समीक्षा के दौरान उन्होंने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को कांवरिया पथ पर सभी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था समय पर करने को कहा। मुख्यमंत्री ने पैदल पथ को व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाएं, शौचालय, साफ सफाई और पेयजल की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री चौधरी ने अधिकारियों से श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा ताकि उन्हें जलाभिषेक के दौरान कोई परेशानी नहीं हो। मुख्यमंत्री ने सभी

0: जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को मेला की व्यवस्था के संबंध में एक विस्तृत प्रतिवेदन भी जमा करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार विज्ञान और प्रावैधिकी कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए दक्ष युवाओं की भर्ती करेगी। विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि यंग प्रोफेशनल चयन संबंधी नीति 2026 के तहत विभाग 3 श्रेणियों में यंग प्रोफेशनल का चयन करेगा। यंग प्रोफेशनल का प्रारंभिक चयन 2 वर्षों के लिए होगा। विभाग के कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए ये भर्तियां की जाएंगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले ताबे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों की निगरानी और समस्याओं के समाधान के लिए पटना में केंद्रीयकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है। इस सेंटर का टोल फ्री नंबर है 14417 और 1800-34-54-417। इस नंबर के माध्यम से विद्यार्थी या अभिभावक विद्यालय से संबंधित अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के नामांकन के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम वीरकर ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि 31 मई तक चलने वाले अभियान के तहत और नामांकित बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में मातृ शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS की हालिया रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में 8 अंकों की गिरावट आई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रति 1 लाख प्रसव में महिलाओं की मृत्यु दर 96 रह गई है। पहले यह 104 थी। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इससे बड़ी उपलब्धि बताया है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने का तुरंत आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
1: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में CCTV कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच वह सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इस वर्ष की थीम वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना है। इस अवसर पर बिहार राज्य जैव विविधता परिषद सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा राज्य की अनूठी प्राकृतिक संपदा को बचाने के संकल्प के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार जैव विविधता संरक्षण के लिए आम लोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने कहा कि जैव विविधता संरक्षण को व्यवहारिक रूप से प्रभावी बनाने के लिए सरकार कृत संकल्प है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए। इधर
3: इधर
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।

0: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
0: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
0: शुभवाणी,
1: लाभवाणी,
0: आकाशवाणी।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। एक ओर दक्षिण बिहार भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, तो वहीं उत्तर बिहार में अच्छी बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण बिहार में अधिकांश स्थानों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। कैमूर का अधिकतम तापमान 44.4, बक्सर का 43.4 और औरंगाबाद का 43.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर मौसम विभाग ने आज अरवल, भोजपुर और बक्सर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिले में लू के साथ गर्म रात की चेतावनी जारी की गई है। पटना सहित दक्षिण मध्य भागों के 14 जिलों में लू जैसे हालात रहेंगे। वहीं विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना जताई है।
3: दिनांक 22 मई राज्य के उत्तर पूर्व एवं उत्तर पश्चिम भागों के जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। अररिया, किशनगंज एवं सुपौल जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
2: भीषण गर्मी और लू को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग 5 तक की कक्षाओं के संचालन पर रोक लगा दी है। वहीं 6 से 8 तक की कक्षाएं सुबह 10:30 तक ही चलेंगे। यह आदेश सभी स्कूलों, प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर 26 मई तक लागू रहेगा। राज्य में बाल श्रम के विरुद्ध चलाए जा रहे विमुक्ति अभियान के तहत पिछले 2 दिनों में 34 बाल श्रमिक मुक्त कराए गए। श्रम संसाधन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सप्ताह में 68 जगहों पर छापेमारी की गई। अभियान के तहत नियमों के खिलाफ 15 प्राथमिकी दर्ज की गई है। पटना में पिछले दिनों 25 करोड़ रुपए मूल्य के स्मैक मिलने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ऋषिकेश क्रांतिकारक को रांची से गिरफ्तार किया है। आरोपी पूर्व में बिहार पुलिस में सिपाही रह चुका है। वह नालंदा जिले के दीपनगर नगवा गांव का रहने वाला है। सीतामढ़ी जिले के कन्हौली थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं जिले के पोखरा थाना क्षेत्र के बुधनगड़ा गांव में एक युवक की पीट पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। बांका सिविल कोर्ट परिसर से 2 कैदी चकमा देकर पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गए। इस मामले में बांका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पूर्णिया जिले के बायसी थाना क्षेत्र के कांगर पंचायत के कुहास में स्नान के दौरान 4 किशोर महानंदा नदी में डूब गए। गोताखोरों के प्रयास से एक बालक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 3 अन्य की तलाश जारी है। वहीं समस्तीपुर जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र के शादीपुर बतनाहा गांव में पानी भरे गड्ढे में नहाने के दौरान डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हो गई। मधुबनी जिले के बाबूपरी थाना क्षेत्र के दोनवारी गांव में पुलिस ने एक युवक को 2 पिस्तौल और 100 ग्राम मादक पदार्थ ब्राउन शुगर समेत अन्य आपत्तिजनक सामानों के साथ गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले के सासाराम में 2 दिवसीय शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से न्यू स्टेडियम फैजलगंज में आयोजित इस महोत्सव में लोक संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने विद्युत ट्रांसफार्मर और वाहनों से तेल चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 400 लीटर डीजल और ट्रांसफार्मर का 20 लीटर तेल जब्त किया गया। कटिहार जिले के बराड़ी में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के तहत पुलिस ने 16 हाइवा और एक पोकलेन मशीन को जब्त किया है। जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि पिछले 4 दिनों में अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ रुपए से अधिक की जुर्माना राशि वसूली गई। नक्सल मुक्त मुंगेर जिले के सवासीन पहाड़ के जंगलों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 2 देशी बंदूक और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट संदीप कुमार ने बताया कि नक्सल गतिविधियों पर पूरी तरह विराम सुनिश्चित करने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रनों से पराजित किया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, पुलवामा हमले का सूत्रधार आतंकी हमजा बुरहान पीओके में मारा गया। प्रभात खबर की सुर्खी है, पुलिस को चैलेंज करने वालों को उसी की भाषा में 48 घंटे के अंदर मिलेगा जवाब मुख्यमंत्री। दैनिक जागरण ने कोलकाता हाईकोर्ट के एक फैसले को प्रमुखता देते हुए लिखा है, बकरीद पर पशुओं की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, कैंसर के इलाज के लिए दिल्ली मुंबई की दौड़ नहीं, बिहार के 3 अस्पतालों के लिए 6 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, 1 साल बाद सुधा दूध 2 रुपए हुआ महंगा। आज अखबार लिखता है, मंत्रियों के साथ पीएम मोदी की महाबैठक, मिडिल ईस्ट संकट पर चर्चा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने श्रावणी मेले की तैयारियों की समीक्षा की। शिवालयों में भीड़ प्रबंधन के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। राज्य सरकार विज्ञान और प्रावैधिकी कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए 3 श्रेणियों में यंग प्रोफेशनल की भर्ती करेगी। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों की निगरानी और समस्याओं के समाधान के लिए पटना में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की। और मौसम विभाग ने आज अरवल, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास और बक्सर समेत दक्षिण बिहार के 14 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया। उत्तर बिहार में कई स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: बिहार सरकार लेकर आई है आपकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नई पहल, सहयोग शिविर। इसके तहत प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत सरकार भवन अथवा निकटवर्ती सार्वजनिक स्थल पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
5: सहयोग पोर्टल sahyog.bihar.gov.in पर कभी भी ऑनलाइन परिवाद दर्ज कर सकते हैं। परिवाद दर्ज करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर समाधान सुनिश्चित कर सहयोग पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
4: साथ ही सहयोग शिविर में संबंधित जानकारी हेतु निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 पर सुबह 8 से शाम 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सहयोग से सबका सम्मान, जीवन आसान।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज एवं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। आइए आनंद ले फिल्म संगीत के कार्यक्रम नगमे नए पुराने का। कार्यक्रम का पहला गाना आइए सुने फिल्म बागी से। फिल्म के लिए संगीत तैयार किया है साजिद वाजिद ने, आवाज़ है अभिजीत की, गीत लिखा है फैज़ अनवर ने।

आइए आप सुने अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का ये गाना। गायक कलाकार हैं नीरज श्रीधर और सुजैन डिमेलो। संगीत तैयार किया है प्रीतम ने, बोल हैं इरशाद कामिल के।

0: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।
1: While some just go through the day, you could live the grand life with the Grand Vitara. As you move from city streets to open escapes, the strong hybrid keeps up seamlessly. No matter where the road takes you, you're always breathing in freshness with auto purify and PM2.5 display. And when every moment feels this grand, safety comes standard with 6 airbags. Visit your nearest Nexa showroom to live the grand life with the Grand Vitara Strong Hybrid. Nexa.
2: सुनो ना,
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है, हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूँ।
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
2: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
5: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
4: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नगमे नए पुराने। ये गीत आप सुन रहे थे शान।

और शांतनु मोइत्रा की आवाजों में संगीतकार हैं शांतनु मोइत्रा, अल्फाज था स्वानंद किरकिरे के। आइए अब सुने फिल्म आवारापन का ये गाना, आवाज दी है मुस्तफा जैद ने, संगीत है मुस्तफा जैद का, इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नगमे नए पुराने, प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, अब आपके लिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत अभिजीत आनंद के स्वर में, आइए सुने कबीरदास की ये रचना।

0: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
1: क्रेश,
2: क्रेश
0: और बाल्टी बॉय।
3: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय।
4: वाइल सम जस्ट गो थ्रू द डे, यू कुड लिव द ग्रैंड लाइफ विद द ग्रैंड विटारा। एज यू मूव फ्रॉम सिटी स्ट्रीट्स टू ओपन एस्केप्स, द स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कीप्स अप सीमलेसली। No matter where the road takes you, you're always breathing in freshness with Auto Purify and PM2.5 display. And when every moment feels this grand, safety comes standard with 6 airbags. Visit your nearest Nexa showroom to live the grand life with the Grand Vitara Strong Hybrid. Nexa.
5: आपका पुनः स्वागत है सुगम संगीत कार्यक्रम में। सुगम संगीत कार्यक्रम में कलाकार हैं अभिजीत आनंद। आइए सुने कबीर दास की ये रचना।

0: It's raining offers on the new age Baleno. Techie, new age Baleno, and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: Nexa.
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

सुगम संगीत में कलाकार थे अभिजीत आनंद। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। 10 बज चुके हैं, ये समय होता है फिल्म संगीत के कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से का। आइए कार्यक्रम के आरंभ में सुने गीता दत्त की आवाज़ में प्यासा फिल्म का ये गीत। संगीतकार हैं SD बर्मन, गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने।

अगला गाना फिल्म रोटी से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, अल्फाज हैं आनंद बख्शी के।

अब गीतकार शैलेंद्र का लिखा गाना मुकेश की आवाज में। संगम फिल्म के इस गीत के लिए संगीत तैयार किया है शंकर जयकिशन ने।

AIR at 90. आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। आइए अब सुने फिल्म यादों की बारात का ये गाना। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। संगीतकार हैं राहुल देव वर्मन।

अब लता मंगेशकर की आवाज में गाइड फिल्म का ये गाना। नगमे निगार शैलेंद्र, संगीत तैयार किया है सचिन देव वर्मन ने।

0: और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से। आइए सुने नाम फिल्म का ये गाना पंकज उदास और साथियों की आवाजों में। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम पुरानी फिल्मों से में आज इतना ही। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। अब शिवशंकर कुशवाहा एवं साथियों के स्वर में सुनिए लोकगीत। आरंभ करेंगे देवी गीत के साथ।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: Some cars are designed to blend in. Others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design. Already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now. Nexa.
2: लोकगीत कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। लोकगीतों के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं शिव शंकर कुशवाहा एवं साथी। आइए इनकी आवाज में सुने पूर्वी।

सुगम संगीत में कलाकार थे शिवशंकर कुशवाहा एवं साथी। प्रसारण आकाशवाणी के भागलपुर केंद्र से किया गया। श्रोताओं, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का कार्यक्रम। कलाकार थे शिवशंकर कुशवाहा एवं साथी। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: AIR at 90. It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
1: Nexa.
2: Ye. आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं और वक्त है कार्यक्रम नई फिल्मों से के तहत नई फिल्मों के संगीत को सुनने का। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म बॉर्डर टू के इस गीत से, जिसे गाया है सोनू निगम और पलक मुछाल ने। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर और मनोज मुंतशिर ने। धुन बनाई है अनु मलिक और मिथुन ने।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए, फिल्म परम सुंदरी से। गायक कलाकार हैं सोनू निगम और कृष्ण कली साहा। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है सचिन जिगर ने।

0: अभी आपने सुना फिल्म रेड टू का गीत जुबिन नौटियाल की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे मनोज मुंसतिर, मुंतसिर पूनम अलाबादी और नुसरत फतेह अली खान ने। धुन बनाई थी रोचक कोहली और नुसरत फतेह अली खान ने। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, कहीं जाइएगा नहीं, हम बस यूं गए और यूं आए। बने रहें आकाशवाणी भागलपुर के संग।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाश

0: आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
0: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
0: 8700001-4242।
2: आकाशवाणी भागलपुर केंद्र से सुने NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार दिन के 12:30 बजे से।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए सुनते हैं फिल्म लापता लेडीज का गीत, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने। गीत के बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने, धुन बनाई है राम संपत ने।

फिल्मों से। कार्यक्रम के अंत में सुनिए फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद फैज ने। गीत के बोल लिखे हैं जानी और समीर अंजान ने, धुन बनाई है जानी और आदेश श्रीवास्तव ने।

0: काली।
1: इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम नई फिल्मों से। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।

0: आकाशवाणी एट 90। आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: Some cars are designed to blend in, others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design, already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now.
2: Nexa. आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कंपेयरिंग पर आधारित फिल्म संगीत गुलदस्ता।

नमस्कार दोस्तों, सुरीले नगमे और दिल को छू जाने वाले एहसासों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गुलदस्ता में, जहां हर गीत सिर्फ एक धुन नहीं बल्कि किसी की याद, किसी का प्यार और किसी अधूरी कहानी का खूबसूरत एहसास बनकर आपके दिलों तक पहुंचता है। जहां कभी मोहब्बत गुनगुनाएगी आज के इस कार्यक्रम में, कभी यादें गुनगुनाएंगी और कभी दिल पुराने नगमों के साथ चुपके से धड़क उठेगा। मैं हूं आपकी दोस्त मीनू, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत गुलदस्ता कार्यक्रम का एक ऐसे प्यारे से गीत के साथ जो सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंचता है।

दोस्तों, इश्क एक ऐसा एहसास जो कभी दुआ बनकर दिल में उतरता है, तो कभी किसी की याद बनकर रातों की खामोशी में धीरे धीरे गुनगुनाने लगता है। जब किसी की मोहब्बत रूह को छू जाए तो फिर उसके बिना हर खुशी अधूरी सी लगती है, हर महफिल सूनी लगती है और दिल की हर धड़कन बस उसी का नाम लेने लगती है। हर सुर में एक वफा की मिठास है। जो ये गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसके हर लाइन में, हर एहसास में मोहब्बत की वो तड़प है जो सीधे दिल से निकलकर रूह तलक पहुंचती है। ये गीत सुनते हुए यूं महसूस होता है दोस्तों, जैसे कोई अपने महबूब की याद में चांद से बातें कर रहा हो, जैसे रात की ठंडी हवाएं भी किसी के इंतजार में थम सी गई हों और जैसे हर धड़कन बस यही कह रही हूँ कि तेरे बिना अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो आइए थोड़ी देर के लिए दुनिया की सारी हलचल भूल जाएं, अपनी आंखों में किसी खास की तस्वीर सजाएं और दिल को मोहब्बत के उन नरम जज्बातों में खो जाने दें। तो आइए सुनते हैं ये गीत, जिसे सुनकर शायद आपकी पलकों पर भी किसी की याद ठहर जाए और दिल चुपके से मोहब्बत का कोई अधूरा किस्सा फिर से सुनाने लगे।

सीख ही दुआ करती है कि जिसको चाहा है वो हमेशा पास रहे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां प्यार सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि अपनी पूरी दुनिया किसी एक शख्स पर लुटा देने का नाम बन जाता है। जहां किसी की मुस्कुराहट अपनी खुशी लगती है और उसकी सांसों में अपनी धड़कन सुनाई देने लगती है। आज जो गाना आप सुनने जा रहे हैं उसकी हर लाइन इश्क की गहराई, चाहत की शिद्दत और अपनेपन की खूबसूरती को बड़े प्यार से बयां करती है। ये गीत सुनते हुए यूं लगता है दोस्तों, जैसे कोई अपने महबूब को दुनिया की हर खुशी सौंप देना चाहता हो, जैसे चांदनी रात में कोई दिल अपने सबसे प्यारे एहसास को धीमे से गुनगुना रहा हो। तो आइए अपने दिल को मोहब्बत के नरम जज्बातों में खो जाने दीजिए। आंखों में किसी की तस्वीर सजाइए और महसूस कीजिए उस प्यार को जो सिर्फ साथ नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी किसी के नाम कर देने का एहसास होता है, जिसे सुनकर शायद आपका दिल भी किसी अपने के और करीब महसूस करने लगे और मोहब्बत की नरम सी बारिश आपकी रूह को छू जाए।

दोस्तों, रात जब मखमली चादर ओढ़ लेती है, चांद अपनी ठंडी रोशनी जमी पर बिखेरता है और हवाओं में किसी अनकही मोहब्बत की खुशबू खुलने लगती है, तब कहीं दूर किसी बाग में एक मोरनी अपने दिल का राज सुरों में कह उठती है। ये गीत सिर्फ एक नगमा नहीं, बल्कि रूह की उस तड़प का एहसास है जो इश्क को इबादत बना देता है। राजस्थानी मिट्टी की सौंधी सी महक, पायल की छनक और मोहब्बत की मासूम सरगोशियों से सजा ये दिलनशी गीत हर सुनने वाले को जैसे किसी सूफियाना ख्वाब में ले जाता है। तो आइए दोस्तों, दिल की धड़कनों को थोड़ा धीमा कीजिए, आंखों में चांदनी और होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाइए, क्योंकि अब हम सुनने जा रहे हैं वो हसीन नगमा जिसे सुनकर यूं लगेगा जैसे रात खुद इश्क का कोई किस्सा गुनगुना रही हो।

दोस्तों, जब कोई खास हमारे जिंदगी में आता है ना, तो सिर्फ मौसम ही नहीं बदलता, दिल की दुनिया भी बदल जाती है। धड़कनों को एक नया सुर मिल जाता है, नजरों को एक प्यारा सा ख्वाब मिल जाता है, और फिर किसी की हल्की सी मुस्कुराहट भी पूरी कायनात से ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। किसी चांदनी रात में दुल्हन के हाथों में मेहंदी की महक हो, पायल धीमे धीमे गुनगुना रही हो, और कोई दिल अपने महबूब की एक झलक पाकर चुपके से मुस्कुरा उठा हो।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक।

बहनों स्वीना का प्यार भरा नमस्कार। बहनों हमेशा की तरह हम ढेर सारी बातें करेंगी, साथ ही आप ही के पसंद के चंद फिल्मी नगमों का आनंद भी लेंगे कार्यक्रम फोन इन बहनों की पसंद के तहत। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले सुनते हैं कुछ और भी जरूरी बातें।

0: AIR at 90.
1: नारी लोक कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है और आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की। जी हाँ बहनों, आज हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की, जो हर वर्ष 22 मई यानी आज के दिन मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को प्रकृति, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और पर्यावरण की विविधता के महत्व के बारे में जागरूक करना। बहनों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों जैसे पशु, पक्षी, वनस्पति, सूक्ष्म जीव और प्राकृतिक संसाधनों की विविधता को ही हम जैव विविधता के तौर पर जानते हैं। बहनों, जैव विविधता हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमें भोजन, दवाइयाँ, स्वच्छ हवा, पानी और रहने योग्य वातावरण प्रकृति से ही मिलता है। जंगल, नदियाँ, पहाड़ और समुद्र सभी मिलकर पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखते हैं। अगर जैव विविधता नष्ट होती है तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है और मानव जीवन भी संकट में पड़ सकता है। बहनों, आज प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक संसाधन उपयोग के कारण कई जीव जंतु और पेड़ पौधे विलुप्त की कगार पर हैं। इसलिए पेड़ लगाना, पानी बचाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और वन्य जीवों की रक्षा करना जैसे छोटे छोटे कदम हम सभी को उठाने चाहिए। बहनों, इस दिवस का संदेश ही है कि प्रकृति की रक्षा करना ही मानवता की रक्षा करना है। आज हम पर्यावरण को बचाएंगे तभी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित और स्वस्थ जीवन जी सकेगी। बहनों, जैव विविधता पृथ्वी की अमूल्य धरोहर है। इसकी रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है और आप बहनों की पसंद का ध्यान रखना भी हमारा कर्तव्य है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं कार्यक्रम फोन इन बहनों की पसंद। तो चलिए कॉल रिसीव करते हैं।
2: हेलो
1: हेलो, आप कौन बोल रही हैं?
2: मैं अंकिता।
1: अंकिता जी, आप कहाँ से बोल रही हैं?
2: मैं सराय भागलपुर से बोल रही हूँ।
1: क्या करती हैं अंकिता जी आप?
2: मैं डाइटिशियन हूँ।
1: वाह, बहुत अच्छी बात है। तो अभी के समय में, अभी का जो मौसम है, ऐसे में कुछ ऐसा पेय पदार्थ बताइए जो इजीली बनाया जा सके।
2: जी, तो ऐसे में सर्दी खांसी होने का रिस्क काफी ज्यादा है।
1: जी,
2: तो अभी जो सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मार्केट में मिल रहे हैं उसका उपयोग जरूर ही करना चाहिए अपने डेली खान पान में।
1: जी,
2: और जहाँ तक आपने पेय पदार्थ के बारे में पूछा, तो जैसे अभी मार्केट में तरबूज मिल रहा है तो उसका जूस बना सकते हैं या उसको डायरेक्ट खा सकते हैं। फिर बेल का शरबत हो गया।
1: जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत ही अच्छा पेय पदार्थ बताया। और आप क्या कहना चाहेंगी, इस मौसम के अनुसार कैसा डाइट सबको फॉलो करना चाहिए?
2: जी, जैसा मैंने बताया, अभी सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो खाने ही चाहिए और ना ज्यादा ठंडा चीज, ना ही ज्यादा गर्म चीज, क्योंकि अभी सीजन तुरंत तुरंत बदल रहा है। तो ऐसे में खुद को मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी है।
1: बहुत अच्छी बात है। और फोन इन बहनों की पसंद में आपने कॉल किया, तो बताइए किस फिल्म का गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
2: ऐसा तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, आप कुछ भी सुना दीजिए।
1: ठीक है, हम आपको अपनी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: बताइए जी।
0: फोन इन बहनों की पसंद में आपका स्वागत है। आप कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं लखनऊ से बोल रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम पिंकी शुभ्रा है। मैं
0: पिंकी जी, आप क्या कर रही?
1: फैमिली काउंसलर हूँ। मैंने यहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट में महिला सहायता प्रकोष्ठ में मैंने
0: जी,
1: काउंसलिंग का काम किया है। काउंसलिंग में पति पत्नी के जो छोटे मोटे विवाद होते हैं कोर्ट
0: जी
1: जाने से पहले
0: जी
1: उसमें सुलह करा के घर बसाने का काम करती हूँ मैं।
0: बहुत ही अच्छा काम करती है। इसमें आपको उन लोगों के बीच सुलह कराने में कितना समय लग जाता है?
1: हमको पति पत्नी के बीच में सुलह कराने में कम से कम 4 सीटिंग करनी पड़ती है।
0: जी,
1: तीन से चार सीटिंग के अंतर

0: जो समस्याएं उनकी होती हैं
1: अच्छा, तो ये
0: उनका
1: जो
0: हम लोग
1: सीटिंग
0: सब
1: होती है आपकी, मीटिंग जो
0: जी
1: चलती है, तो वो कितने दिनों के अंतराल में होता है?
0: ये हफ्ते हफ्ते भर के
1: अच्छा
0: अंतराल में
1: अच्छा
0: डेट
1: अच्छा
0: देते हैं,
1: अच्छा अच्छा
0: एक एक हफ्ते के। जैसे
1: अच्छा
0: इस सोमवार को जिस दंपत्ति को बुलाया तो अगले सोमवार को उस दंपत्ति को फिर बुलाएंगे,
1: ठीक
0: और जब सुलह हो जाती है तो उसके
1: जी
0: बाद हम लोग फाइल जो है
1: जी
0: बंद नहीं करते हैं, 15 दिन में फिर उन दोनों को बुलाते हैं फोन करके कि
1: जी
0: आप लोगों की समस्या का समाधान हो गया या अभी कुछ बाकी है।
1: जी जी
0: तो 6 महीने तक ये प्रोसेस चलता रहता है,
1: जी
0: उसके बाद फाइल बंद कर दी जाती है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता है तो फाइल बंद कर दी जाती है,
1: जी
0: और अगर सुलह की गुंजाइश नहीं होती है उसमें, तो उसमें हम लोग कानूनी कार्रवाई हेतु अपने अधिकारी को फाइल प्रेषित कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आजकल की जो शादियां हो रही हैं वो तो ज्यादा लंबे समय तक
0: जी
1: टिक नहीं पाती है, किसी कारणवश
0: जी
1: या
0: जी जी
1: दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन
0: जी
1: हाँ, आप जोड़ने का काम कर रही हैं, एक परिवार बसाने का काम कर रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम है, और मैं चाहूंगी कि आप लगातार इसे जारी रखें।
0: यह काम जारी है। अब तो पहले तो मैं पुलिस कमिश्नरेट में बैठती थी, तो
1: जी
0: वहाँ पूरे पूरे लखनऊ जनपद के सारे केसेस आते थे। अब
1: जी जी
0: जो है तो इनको सरकार ने यूनिट वाइज, जैसे चौक थाने में चौक थाने का काउंसलर नियुक्त किया है, उसमें
1: जी
0: चौक थाने के अंतर्गत 5 थाने आते हैं, कोतवाल कोतवाली
1: जी
0: जो है, चौक कोतवाली में 5 थाने आते हैं।
1: जी
0: तो उन 5 थानों में जो केस आएंगे
1: जी
0: उनकी सुनवाई मुझे चौक कोतवाली में करनी है। तो
1: ओके, बहुत अच्छी बात। तो आपने फोन इन बहनों
0: अब
1: की पसंद में कॉल किया है, तो बताइए किस फिल्म का गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
0: हमें कोई भजन सुना दीजिए बढ़िया सा।
1: ठीक है, हम आपको सुनाते हैं प्यारा सा भजन।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हेलो
4: हेलो,
3: आप कौन बोल रही हैं?
4: हम तानिया बोल रहे हैं।
3: तानिया जी, आप कहाँ से बोल रही हैं?
4: नाथनगर से।
3: अच्छा, क्या करती हैं आप?
4: अभी स्कूल में हैं।
3: अच्छा, स्कूल में पढ़ाई कर रही हैं, है ना? और रेडियो सुनना पसंद करती हैं?
4: हाँ।
3: अच्छा, तो बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
4: चांदनी।
3: चांदनी मूवी का गीत सुनना पसंद करेंगी? ठीक है, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
5: चांदनी

सिखाऊं तुम्हें, प्यार सिखाऊं तुम्हें।

0: हेलो,
1: हाँ, कौन बोल रही हैं आप?
0: हम दीप्ति बोल रहे हैं।
1: दीप्ति, क्या करती हैं आप?
0: हम स्टूडेंट हैं और अपने कॉलेज से हम एनएसएस की भी छात्रा हैं।
1: एनएसएस, ये क्या है? जरा इनके बारे में हमें बताएं।
0: तो पढ़े में अच्छा बताते हैं। एनएसएस होता है, नेशनल सर्विस स्कीम।
1: जी
0: इसमें हम लोग ना गांव देहात वाला एरिया जाते हैं, वहाँ का जो बच्चा लोग होता है ना,
1: हाँ
0: उन लोग को पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं।
1: जी
0: और फिर जैसे हम लोग ना वो खून देने का जो कैंप लगता है वो लगाते हैं।
1: अच्छा
0: फिर जैसे बाढ़ आ गया या सूखा है कहीं पे, तो हम लोग को सरकार मदद करती है, फिर वो मदद हम लोग वहाँ का लोग तक भी पहुँचाने का प्रयास करते हैं।
1: तो ये एक तरह से सोशल वर्क भी है ना?
0: हाँ
1: अच्छा, तो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं दीप्ति जी आप, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी इस काम को आप जारी रखें। बताइए कि आप रेडियो सुनना पसंद करती हैं?
0: हाँ कभी कभार सुन लेते हैं, जब कॉलेज से आना जाना करते हैं तो ऑटो में भी कभी कभी बजता है।
1: जी, फोनिंग बहनों की पसंद में आपने फोन किया है, तो बताइए किस मूवी का गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
0: मूवी तो नहीं पता हमको, लता मंगेशकर जी का कोई सुना दीजिए।
1: ठीक है, हम सुनवाते हैं लता मंगेशकर जी का ये प्यारा सा गीत।

बहनों, आज के लिए इतना ही। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब हमें दे आज्ञा, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम नारी लोक, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: PIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा,
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव,
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे,
0: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई,
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
0: जी,
2: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
0: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
2: बिल्कुल सही,
0: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
2: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
0: जी, सुना तो है,
2: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
0: अच्छा,
2: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
0: क्यों?
2: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
0: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओ, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
2: जी।
0: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
2: जी।
0: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
2: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्धखारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
0: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है। यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
2: जी
0: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
2: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
0: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
2: चलते हैं, ऐसा वाला कैसे हो सकता है?
0: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
2: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
0: लेकिन भला वो कैसे?
2: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है, तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
0: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
2: जी,
0: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स

0: नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे। संतान न होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
1: शायद आप ठीक कहते हैं, ये हमारे बच्चे ही हैं।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
2: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदूर का राजमार्ग जाता था।
3: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
4: सुनिए, देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
0: हाँ, ये तो है।
4: राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
0: सही कहा।
4: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
0: बिल्कुल,
4: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
0: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
4: ठीक है,
0: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना।
4: बिल्कुल ठीक है।
2: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
3: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
2: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
3: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
1: जी सुनिए।
0: हाँ।
1: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
0: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
1: हाँ।
0: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
1: अरे अरे, इसको भी डालो।
0: हाँ,
1: ये देखो
0: देखो देखो, कितना छोटा था ना ये पौधा, कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
1: प्यारा लग रहा है।
2: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
3: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
0: देखा थिमक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे। हाँ। और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
1: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
0: हाँ।
1: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
0: हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
5: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
6: ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे हमारा शहर हो।
2: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथ ही

0: सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8,000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8,000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
1: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
2: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
0: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
3: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
0: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8,000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिसे सदा याद रखा जाएगा।
4: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगडिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
0: आह, पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे, ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।
0: वनों

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है, अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। अगला कार्यक्रम है संतराल के बाद।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700001424।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700001424।
0: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकरंग में सुनिए वीणा देवी की गाये लोकगीत। कार्यक्रम के आरंभ में इनसे सुनते हैं देवी गीत।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग। श्रोताओं, लोकरंग कार्यक्रम को हम पुनः जारी रखेंगे प्रादेशिक समाचार के बाद दोपहर 1:20 पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:10 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड की 2 सीटों समेत देश के 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित। शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश की खाली हो रही सीटों के लिए 18 जून को होगा मतदान। रांची की होटवार जेल में महिला कैदी की कथित यौन शोषण मामले में हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। डीजीपी से दो हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। झारखंड बिजली वितरण निगम का कड़ा निर्देश। अब कार्यपालक अभियंता की मंजूरी से ही दिन भर में केवल 2 से 3 बार ही लिया जा सकेगा संक्षिप्त शटडाउन। पाकुड़ की झिकरहट्टी पूर्वी पंचायत को मिलेगा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। महिला सशक्तिकरण और रोजगार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए हुआ चयन। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में जमशेदपुर एफसी ने उड़ीसा एफसी के साथ खेला गोल रहित ड्रॉ। 5वें स्थान के साथ किया सीजन का समापन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि बैठक में जीवन की सुगमता और व्यापार में आसानी

0: को बढ़ावा देने वाले दृष्टिकोण पर चर्चा हुई, साथ ही विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। निर्वाचन आयोग ने 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। इसमें झारखंड की 2 सीटें भी शामिल हैं। अधिसूचना 1 जून को जारी होगी और मतदान 18 जून को कराया जाएगा। झारखंड के अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीटों के लिए चुनाव होगा। झारखंड की बात करें तो चुनाव आयोग की सूची के मुताबिक राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और शिबू सोरेन का कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो रहा है। रांची के होटवार जेल में महिला कैदी के कथित यौन शोषण मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी से 2 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जबकि जुडिशियल इंक्वायरी अभी जारी है। वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि मामले की अगली सुनवाई 8 जून को होगी।
1: इस मामले को जनहित याचिका में तब्दील करते हुए शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार की ओर से यह बताया गया कि इस मामले की पूरी छानबीन जारी है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 8 जून का समय निर्धारित किया गया है।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि केवल दोस्ताना लेनदेन को कानूनी रूप से वसूले जाने योग्य कर्ज नहीं माना जा सकता, इसलिए फ्रेंडली लोन कानून पर एनआई एक्ट लागू नहीं होता। कोर्ट ने बिना वैध अनुबंध किए गए 2 लाख रुपए के लेनदेन से जुड़ी अपील को खारिज कर दिया। झारखंड बिजली वितरण निगम ने निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बिना अनुमति फीडर शटडाउन लेने पर रोक लगा दी है। नए आदेश के अनुसार जिला मुख्यालयों में अब केवल कार्यपालक अभियंता की अनुमति से ही शटडाउन लिया जा सकेगा। निगम ने दिन में केवल 2 से 3 बार ही संक्षिप्त शटडाउन की अनुमति दी है। पाकुड़ जिले के झीकरहट्टी पूर्वी पंचायत को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है। महिला सशक्तिकरण, रोजगार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस पंचायत का चयन दीनदयाल उपाध्याय सतत विकास पुरस्कार के लिए हुआ है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने बताया कि यह पंचायत जिले के अन्य पंचायतों के लिए प्रेरक बनेगा।
2: एक रिप्रेजेंटेटिव पंचायत के तौर पे ये उभर के आया, अन्य पंचायतों को इसी के तर्ज पे महिला सशक्तिकरण उससे रिलेटेड फिर विकास की दिशा में मोड़ने का कार्य करने के लिए हम लोग इसको एज एन एग्जाम्पल यूज करेंगे। आगे हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स डिसाइड किए हैं जिसमें कि महिलाओं के समूह को इंक्लूड किया जाए।
0: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और MDI गुड़गांव ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य सेल के भविष्य में लीडर्स तैयार करना है। इसके तहत संयुक्त रिसर्च, केस स्टडीज और कस्टमाइज लीडरशिप प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर सरायकेला खरसावां के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने चालीयामा स्टील प्लांट और स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए स्ट्रीट लाइट, चेतावनी बोर्ड और 2 नए चेक पोस्ट बनाने का निर्देश दिया। साथ ही अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNewsRanchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग में जिला क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर भाजपा सांसद मनीष जायसवाल और सदर विधायक प्रदीप प्रसाद के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। सांसद मनीष जायसवाल ने विधायक को लक्ष्मण बताते हुए मर्यादा में रहने की सलाह दी।
3: तो उसका पैर भी पकड़ने के लिए तैयार रहेंगे जो बंद कराएगा, उसका कोई नहीं बंद करा सकता है। छोटे भाई को बड़ा भाई को बड़ा पहले मानना पड़ेगा, मतलब अगर छोटा भाई उद्दंड हो उदंडता करेगा और बड़ा भाई जाकर के पैर हाथ पड़ करके उसको मनाएगा, ऐसा राम हम नहीं है। और लाखों क्रिकेट फैंस का इसको दुआ है, कोई बंद नहीं करा पाएगा।
0: वहीं विधायक ने पलटवार करते हुए सांसद को धृतराष्ट्र की संज्ञा दी और जिला क्रिकेट एसोसिएशन पर गंभीर आरोप लगाए।
4: स्टेडियम अच्छा बना, लोगों ने अपना वर्चस्व बनाया, अपने एंटरटेनमेंट वहां खड़ा किया गया, जो उनका इच्छा होगा वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये हजारीबाग स्टेडियम में चलने लगा, ये स्पोर्ट के लिए घातक है। हर जगह हजारीबाग से लोगों की सहभागिता होना चाहिए, लड़ाई इस चीज का हो रहा है कि किसी का बकौती नहीं है।
0: हजारीबाग पुलिस ने इचाक थाना क्षेत्र के लोटवा जंगल में छापेमारी कर ब्राउन शुगर तस्करी नेटवर्क का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 52 ग्राम ब्राउन शुगर और 7 मोबाइल बरामद किए हैं। एसपी अमन कुमार ने बताया कि आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए यह काला कारोबार चला रहे थे।
5: 52 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। ये सभी इचाक थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये जो नेटवर्क है ये चतरा से लिंक है और जहां से ये सामान लाता था उसके संबंध में हम लोगों को जानकारी मिली है, जिस पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई वो करेंगे।
0: पलामू जिले के नक्सल प्रभावित छतरपुर में ग्रामीणों ने आपसी एकजुटता की मिसाल पेश करते हुए एक अनाथ बेटी की शादी कराई। पाटादोहर निवासी बर्ती कुमारी की शादी अर्जुन सिंह से तय कर ग्रामीणों ने इसे संपन्न कराया। इस विवाह का पूरा खर्च पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल और मुखिया पूनम जायसवाल ने उठाया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,47,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,75,000 रुपए प्रति किलो है। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में जमशेदपुर एफसी ने ओडिशा एफसी के खिलाफ 0-0 से ड्रॉ खेलकर अपने फुटबॉल सीजन का समापन किया। जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए इस मुकाबले में दबदबा बनाने के बावजूद टीम गोल नहीं कर सकी। इस ड्रॉ के साथ जमशेदपुर 22 अंकों के साथ लीग में 5वें स्थान पर रही। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड की 2 सीटों समेत देश के 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित। शिबू सोरेन और दीपक प्रकाश की खाली हो रही सीटों के लिए 18 जून को होगा मतदान। रांची के होटवार जेल में महिला कैदी के कथित यौन शोषण मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। डीजीपी से 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। झारखंड बिजली वितरण निगम का कड़ा निर्देश, अब कार्यपालक अभियंता की मंजूरी से ही दिन भर में केवल 2 से 3 बार ही लिया जा सकेगा संक्षिप्त शटडाउन। पाकुड़ की झिकराहट्टी पूर्वी पंचायत को मिलेगा राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। महिला सशक्तिकरण और रोजगार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हुआ चयन। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में जमशेदपुर एफसी ने ओडिशा एफसी के साथ खेला गोल रहित ड्रॉ, 5वें स्थान के साथ किया सीजन का समापन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकरंग को पुनः जारी रखते हुए वीणा देवी की आवाज में आइए सुनते हैं झूमर।

AIR at 90. अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम को जारी रखते हुए वीणा देवी की आवाज में आइए सुनते हैं शिव भजन।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार थी वीणा देवी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए बहनों को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन।

0: घर आंगन की सभी प्यारी बहनों को कमली का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, समूचे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी है। एक तो तेज गर्मी, गर्म धूप और उस पर हवा में आर्द्रता यानी कि नमी, कुल मिलाकर चिपचिपी गर्मी जो जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। बहनों, यह मौसम समय के लिए अनुकूल नहीं होता है। अगर हम संभल कर न रहें तो बीमार पड़ सकते हैं। इस समय बहनों बहुत ज़्यादा पसीना आता है और जिससे पसीने के साथ साथ शरीर का पानी और ज़रूरी खनिज पदार्थ शरीर से निकल जाते हैं और शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जिसे हम निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। तो ये बहुत घातक होता है हमारे शरीर के लिए। इसलिए ज़रूरी है बहनों कि शरीर में पानी की कमी को न होने दिया जाए। हम समय समय पर पानी, छाछ, लस्सी, सत्तू, खीरे, ककड़ी का सेवन करते रहें, जिससे कि हमारा शरीर तरोताज़ा रहे। और अगर शरीर में डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी हो जाए तो इसके बहुत ही घातक परिणाम हो सकते हैं। तो ये डिहाइड्रेशन जो है यानी निर्जलीकरण, इसके कुछ लक्षण हैं, इन्हें जानना समझना जरूरी है बहनों। जैसे कि अत्यधिक प्यास लगना, जीभ, मुंह या तालू का सूखना, पसीना आना बंद हो जाना, जी घबराना, अचेत हो जाना, मूर्छा आना, अगर ऐसे लक्षण दिखाई दे बहनों तो तुरंत सचेत हो जाना चाहिए और प्रभावित व्यक्ति को छाया में पंखे के नीचे लिटाकर उसके सारे बदन को ठंडे पानी से पोंछ देना चाहिए और अगर संभव हो तो उसे नहला देना चाहिए और फिर उसे ORS का घोल चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा देते रहना चाहिए। अगर ORS का की पैकेट अगर उपलब्ध न हो तो बहुत आसान है, एक साफ ग्लास में पानी में एक दो चम्मच चीनी और एक चुटकी भर नमक मिलाकर यह घोल आसानी से ही हम तैयार कर सकते हैं। तो समय समय पर यह घोल चम्मच के माध्यम से प्रभावित व्यक्ति को पिलाते रहें। अगर कुछ देर में उसकी स्थिति में सुधार न दिखाई दे तो अविलंब चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए ताकि समय पर चिकित्सा शुरू हो जाए और व्यक्ति ठीक हो जाए। बहनों, इस मौसम के अनुरूप हमारा खान पान अगर हम करते हैं और सावधानियां रखते हैं तो हम मौसम के विपरीत प्रभाव से असर हम पर नहीं हो पाता है। बहनों, आज जैव विविधता दिवस है। हमारा यह समाज अनेकों विविधताओं यानी कि भिन्नताओं से मिलकर बना है और यही इसकी खूबसूरती भी है। बहनों, हम प्रकृति में हाथी जैसे विशाल प्राणी भी देखते हैं तो चींटी जैसा लघु जीव भी, बरगद, पीपल, ताड़ जैसे विशालकाय पादप हैं तो छोटी छोटी जड़ी बूटियां, बेलें, ये सब भी, और सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, सबकी अपनी अपनी महत्ता भी है और सभी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के मिले जुले संसार से यह सृष्टि बनी हुई है। धरती ही नहीं, जल में भी एक विविध दुनिया बसती है जहाँ तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधों का सह अस्तित्व है। यह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत जरूरी भी है। हम मानव बस खुद को ही श्रेष्ठ समझने की भूल ना करें, क्योंकि सबके साथ मिलकर ही हमारा जीवन सुरक्षित भी होता है और प्रकृति सम्मत भी। हम वृक्षों को काट कर जीव जंतुओं को के प्राकृतिक आवास को छीन कर अपनी ही बर्बादी की तरफ अग्रसर होते हैं। इसीलिए बहनों, जरूरत यह है कि हम जैव विविधता का सम्मान करें, सृष्टि का सम्मान करें, प्रकृति का सम्मान करें, तभी हम जो है हमारी यह धरती खूबसूरत बनी रहेगी, सुंदर बनी रहेगी, है ना बहनों? बहनों, बातें बहुत सी है, पहले आइए कुछ संदेशों को सुने।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: Akashwadi at 90.
1: बहनों, विवाह दो आत्माओं का मिलन है, यह दो संस्कृतियों का मिलन भी है। नया जीवन, नई शुरुआत, सब कुछ कितना अच्छा लगता है ना बहनों। लेकिन बहनों, कुछ नासमझियों, कुछ कुरीतियों के कारण इस मधुर जीवन में जहर जैसा घुल जाता है। दहेज एक ऐसी ही कुप्रथा है जो वैवाहिक जीवन की मधुरता को बर्बाद कर देती है। आइए बहनों, इसी विषय पर एक वार्ता के माध्यम से विस्तार से जानते हैं।
2: एक अभिशाप है। प्राचीन काल में माता पिता अपनी बेटी को उपहार के रूप में धन, स्वर्णाभूषण और कीमती सामान देते थे, जो कि अब दहेज प्रथा ही बन गई है, जिसका अर्थ दूल्हे के परिवार द्वारा दूल्हे के लिए मांगा गया मूल्य। दहेज प्रथा हमारे समाज में एक कोड़ की तरह फैल गया है। जब किसी सामाजिक प्रथा का प्रचलन शुरू होता है, तब हमारा समाज उसकी अच्छाई बुराई को सोचे बिना ही स्वीकार कर लेता है। दहेज भी एक ऐसी ही प्रथा बन गई है, जिसकी अच्छाइयाँ तो नष्ट हो चुकी है, पर बुराई अपना असर दिखा रही है। दहेज वस्तुतः विवाह के अवसर पर लड़की पक्ष की ओर से स्वेच्छा से लड़के को दिया जाने वाला उपहार है। हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार भारत में दहेज प्रथा का प्रचलन था। प्राचीन काल में दहेज के पीछे लालच और सौदेबाजी की भावना नहीं थी, जैसा कि आधुनिक समाज में देखने को मिलती है। लड़की को विदाई के अवसर पर उसे स्वर्ण आभूषणों से सजाकर मंगल कामना प्रकट करना माना जा सकता था। धीरे धीरे यह प्रथा समाज में भ्रष्ट हो गई है। आज के समाज में दहेज की प्रथा सुयोग्य, सुंदर, सुशील, कर्मठ और गरीब सुशिक्षित लड़कियों की हत्या तथा आत्महत्या का कारण बन गई है। सामाजिक प्रथा का रंग चढ़ने पर इस प्रथा का रूप अधिक बिगड़ गया है। निर्धन माता पिता के लिए तो यह अभिशाप की तरह है। कहा जाता है कि जहाँ स्त्री का आदर होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन भारतीय संस्कृति की यह बात अब दहेज के कारण मिथ्या बना दी गई। अब हमारे समाज में लोग लड़की के जन्म से ही भयभीत हो जाते हैं। दहेज प्रथा से ही बाल विवाह, अमेल विवाह, वृद्ध विवाह की जड़ बन गई है। इस प्रथा ने समाज में अनाचार और वैश्यावृत्ति को जन्म दिया है। दहेज एक ऐसा अभिशाप है जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों, चाहे वो मानसिक हो या फिर शारीरिक हो, उसे बढ़ावा देता है। इस व्यवस्था ने समाज के सभी वर्गों को अपने चपेट में ले लिया है। अमीर और संपन्न परिवार जिस प्रथा का अनुसरण अपनी सामाजिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए करते हैं, वहीं निर्धन अभिभावकों के लिए बेटी के विवाह में दहेज देना उनके लिए व्यवस्था बन जाती है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर दहेज नहीं दिया गया तो यह उसके सम्मान को भी समाप्त कर देगा। साथ ही बेटी को बिना दहेज के विदा किया तो ससुराल में उसका जीना तक दुभर बन जाएगा। संपन्न परिवार बेटी की शादी में किए गए व्यय को अपने लिए एक निवेश मानते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बहुमूल्य उपहारों के साथ बेटी को विदा करेंगे तो यह सीधा उनकी अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। इसके अलावा उनकी बेटी को भी ससुराल में सम्मान और प्रेम मिलेगा। लड़की जितनी पढ़ेगी बढ़ेगी उतना ही योग्य वर तलाशना होगा और उसी के अनुसार दहेज जुटा पाना सबके बस की बात नहीं है। इसलिए कम उम्र की कम पढ़ी लिखी लड़की की शादी कर कन्यादान का पुण्य प्राप्त करना अधिकांश लोग अच्छा मान लेते हैं। दहेज के दानव के भय से पूरा देश में गैर कानूनी अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों में हर रोज हजारों लड़कियां मां की कोख में ही मार दी जा रही हैं। लड़कियों के पोषण से संबंधित एक अध्ययन का निष्कर्ष है कि प्रत्येक पैदा हुई हजार लड़कियों में से 966 लड़कियां ही समाज में जीवित रह पाती हैं। हमारा सामाजिक परिवेश कुछ इस प्रकार बन चुका है कि यहाँ व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसके आर्थिक हालतों पर ही निर्भर करती है। जिसके पास जितना धन होता है उसे समाज में उतनी ही महत्व और सम्मान दिया जाता है। ऐसे में लोगों का लालची होना और दहेज की आशा रखना स्वाभाविक है। आए दिन हमें दहेज हत्या

0: मजबूर किया जाता है। प्रतिदिन अखबार में दहेज उत्पीड़न के मामले पढ़ने को मिलते हैं। आज शादी के बंधन पवित्र बंधन का नहीं बल्कि सौदेबाजी का व्यापार बन गया है। आज दहेज का दानव पूरे देश, पूरे युवा पीढ़ी को निगल रहा है। आज बेरोजगारी और बेकार युवा की कीमत 2 लाख तक जाती है और नौकरी वालों की बोली जब लगती है तो जो सर्वाधिक दे उसी के हाथ बिकेगा। दहेज को डायन कहने का कोई प्रमाण है और सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब बहू घर में आती है तब दहेज का अभिमान अपने साथ ही लेकर आती है। नतीजा सुख चैन की समाप्ति हो जाती है। आज दहेज के औचित्य पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल यह है कि हम दहेज लेकर अपने शानो शौकत का जो दिखावा करते हैं क्या वह उचित है? इसके लिए केवल दहेज लेने वाला ही नहीं बल्कि दहेज देने वाला भी उतना ही दोषी है। आज चपरासी की नौकरी लगी नहीं कि उसे खरीदने वालों की लाइन लग जाती है और ना ही तो उसके संस्कार देखे जाते हैं ना ही उसका चरित्र। इसमें सबसे बड़ा दोषी हमारा युवा वर्ग है जिसके कंधे पर समाज को बदलने की जिम्मेवारी है। इस घृणित रोग से समाज का रोम रोम पीड़ित है। सरकार को चाहिए कि वो समाचार पत्रों, दूरदर्शन, नुक्कड़ नाटकों तथा साहित्य के माध्यम से यह संदेश जन जन तक पहुंचाए कि दहेज लेना और देना दोनों पाप और कानून अपराध है। दहेज लोभियों का पता लगने पर उन्हें दंडित किया जाए। दहेज एक सामाजिक कोड है। इससे छुटकारा पाने के लिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। लड़कियों को लड़कों के बराबर का दर्जा देना होगा। दहेज प्रथा की जड़ें बहुत गहरी है। यह केवल सरकार या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं रोकी जा सकती अपितु सामूहिक प्रयासों से ही हम इस बुराई को नष्ट कर सकते हैं। विशेष तौर पर युवा वर्गों का योगदान इसमें जरूरी है। उन्हें इसके दुष्प्रमाणों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक करना होगा। निःसंदेह ऐसे प्रयासों से आशा की किरण जागेगी और पुनः हम दहेज प्रथा विहीन समाज का निर्माण कर सकेंगे।
1: बहुत ही अच्छी बातें हमने इस वार्ता के जरिए पाई बहनों। एक सभ्य समाज में दहेज जैसी कुप्रथा के लिए कभी कोई जगह नहीं होनी चाहिए और बहनों हम सबों को यह शपथ भी लेनी चाहिए कि हम न तो दहेज लेंगे और न ही दहेज देंगे। दहेज का पूर्ण बहिष्कार करना होगा तभी विवाह जैसी पावन संस्कार की खूबसूरती बनी रहेगी। बहनों अब आगे बढ़ते हैं और एक सुनते हैं मधुर सा छमासा।

0: सुनो ना,
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है, हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: और इसी के साथ ही बहनों, हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में बहनों फिर से ढेर सारी बातों के साथ, जानकारियों के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दें, सबों को कमली का नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे बहनों को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन, आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार पटना केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों की निगरानी और समस्याओं के समाधान के लिए पटना में केंद्रीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की है। इसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी और अभिभावक विद्यालय से संबंधित अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर 14417 और 1800345417 पर कर सकते हैं। राज्य सरकार विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए यंग प्रोफेशनल चयन संबंधी नीति 2026 के तहत 3 श्रेणियों में यंग प्रोफेशनल की भर्ती करेगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि यंग प्रोफेशनल का प्रारंभिक चयन 2 वर्षों के लिए होगा। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग 5 तक की कक्षाओं के संचालन पर रोक लगा दी है। वहीं 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं सुबह 10:30 तक ही चलेंगी। यह आदेश सभी स्कूलों, प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर 26 मई तक लागू रहेगा। इधर बेगूसराय जिला प्रशासन ने भी 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 11 बजे के बाद पठन पाठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 25 मई तक लागू रहेगा। वहीं शेखपुरा जिला प्रशासन ने 23 मई से सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को 10:30 तक ही संचालित करने का आदेश जारी किया है। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ED कर रहा है और यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। ईडी का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए वर्ष 2004 से 2009 के बीच IRCTC होटलों के संचालन के ठेके देने में अनियमितताएं हुई। इस मामले में नामजद लोगों में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव आदि शामिल हैं। राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। एक ओर दक्षिण बिहार भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, वहीं उत्तर बिहार में अच्छी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार दक्षिण बिहार में अधिकांश स्थानों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर मौसम विभाग ने आज पटना, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, अरवल, भोजपुर और बक्सर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना जताई है। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान बांका और जमुई जिलों के विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी संभावना है। रोहतास जिले की ऐतिहासिक नगरी सासाराम में आज से 2 दिवसीय शेर शाह सूरी महोत्सव की भव्य शुरुआत हुई। इस महोत्सव का उद्घाटन जिलाधिकारी उदिता सिंह ने किया। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में शहर के न्यू स्टेडियम फैजलगंज में आयोजित इस महोत्सव में संस्कृति, विरासत और लोक परंपराओं की अद्भुत झलक देखने को मिली। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: सामईन आदाब, यह आकाशवाणी पटना है। अब आप मोहम्मद तनवीर अली से इलाकाई खबरें सुनिए। महकमा तालीम ने सरकारी स्कूलों की निगरानी और मसाइल के सद्देबाब के लिए पटना में सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का क्याम किया है। इसके तहत सरकारी स्कूलों के तुलबा और गार्जियन स्कूलों से मुतल्लिक अपनी शिकायतें टॉल फ्री नंबर 1-4-4-1-7 और 1-800-3-4-5-4-4-1-7 पर कर सकते हैं। रियासती हुकूमत साइंस व टेक्नोलॉजी प्रोग्रामों को मुअस्सर बनाने के लिए यंग प्रोफेशनल सिलेक्शन से मुतल्लिक पॉलिसी 2026 के तहत 3 जुमरों में यंग प्रोफेशनल की तकरीरी करेगी। साइंस टेक्नोलॉजी और तकनीकी तालीम की वजीर शीला कुमारी ने बताया कि यंग प्रोफेशनल का इब्तदाई सिलेक्शन 2 वर्षों के लिए होगा। शिद्दत की गर्मी और लू के पेश नज़र पटना जिला इंतजामिया ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में दर्जा 5 तक के क्लासेस के इनाकात पर रोक लगा दी है। वहीं 6 से 8 तक के क्लासेस सुबह 10:30 तक ही चलेंगे। ये हुक्म सभी स्कूलों, प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर 26 मई तक नाफिज रहेगा। इधर बेगूसराय जिला इंतजामिया ने भी 8 क्लास तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 11 बजे के बाद दरस व तदरीस पर पाबंदी

0: रियायत कर दी है। यह हुक्म 25 मई तक नाफिज रहेगा। वहीं शेखपुरा जिला इंतजामिया ने 23 मई से सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 10:30 तक ही चलाने का हुक्म जारी किया है। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन चलाने को निशाना बनाकर हाल ही में हुए हादसात के दरमियान वजारत रेल ने मुसाफिरों से सफर के दौरान मोहतात रहने और रेलवे अहाता में किसी भी मशकूक सरगर्मी या शख्स की इत्तला हेल्पलाइन नंबर 139 पर फौरी तौर पर देने की दरख्वास्त की है। कल नई दिल्ली के रेल भवन में वजीर रेल अश्वनी वैष्णव की सदारत में हुई आला सतही हिफाजती जायजा मीटिंग में यह फैसला लिया गया। दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC होटल घपला से मुतल्लिक मुबैना इमलाक जमा करने के मामले में राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव, उनके खानदान के अरकान और दीगर लोगों के खिलाफ इल्जाम तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED कर रहा है और यह मरकजी निगरानी ब्यूरो CBI के जरिए दर्ज एक बुनियादी जुर्म पर मबनी है। ED का इल्जाम है कि लालू प्रसाद यादव के वजीर रेल रहते हुए साल 2004 से 2009 के दरमियान IRCTC होटलों को चलाने के ठीके देने में बेजाबतगियां हुई। इस मामले में नामजद लोगों में लालू प्रसाद यादव, उनकी अहलिया राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव वगैरह शामिल हैं। रियासत के शुमाली और जुनूबी खित्तों में मौसम का अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहा है। एक तरफ जुनूबी बिहार जबरदस्त गर्मी और लू की जद में है, वहीं शुमाली बिहार में अच्छी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। महकमा मौसमियात से मौसूला इत्तला के मुताबिक जुनूबी बिहार में बेशतर मकामात का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ कर गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत के साथ रोहतास का डेहरी रियासत का सबसे गर्म मकाम रहा। राजधानी पटना का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर महकमा मौसमियात ने आज पटना, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, अरवल, भोजपुर और बक्सर में लू का अलर्ट जारी किया है। इधर महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 घंटों के दौरान बांका और जमुई जिला के मुख्तलिफ मकामात पर बादल गरजने, बिजली गिरने और औसतन बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी इम्कान है। IPL क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। रोहतास जिला के तारीखी शहर सहसराम में आज से 2 रोजा शेर शाह सूरी महोत्सव का शानदार आगाज हुआ। इस महोत्सव का इफ्तिताह जिला मजिस्ट्रेट उदिता सिंह ने किया। महकमा सयाहत और जिला इंतजामिया के मुश्तरका ज़ेरे एहतमाम शहर के न्यू स्टेडियम फैजलगंज में मुनक़िद इस महोत्सव में सकाफत, विरासत और अवामी रवायतों की बेमिसाल झलक देखने को मिली। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्स और FM बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्स पर। अगला कार्यक्रम इस अंतराल के बाद।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: जानते हैं इन वीरों की वीर गाथाएं लेकर कौन आ रहे हैं? हम यानी
5: क्रेश,
6: क्रेश
4: और बाल्टी बॉय।
7: फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे क्रेश, ट्रेश और बाल्टी बॉय।
8: सुनो ना।
2: हाँ?
8: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ,
8: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
8: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
8: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
8: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
8: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर बाद 2:15 होने ही वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: 35 का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठा

0: करते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
0: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
0: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। क्या एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनीत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
1: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
4: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपा कुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2 चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
5: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ

0: ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
1: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले ये छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोराइड्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए फिल्म नदिया के पार का ये गीत, जिसे गाया है हेमलता और जसपाल सिंह ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का है।

आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट से। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, कहीं जाइएगा नहीं, हम बस यूं गए और यूं आए, बने रहें आकाशवाणी भागलपुर के संग।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। श्रोताओं, अंतराल से पहले आपने सुना फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई का गीत हेमलता की आवाज में। और अब आइए चित्रपट से कार्यक्रम को जारी रखते हुए सुनते हैं फिल्म नया जमाना का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है SG बर्मन ने।

आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट से। लेते हैं एक छोटा सा अंतराल, कहीं जाइएगा नहीं, हम बस यूं गए और यूं आए, बने रहें आकाशवाणी भागलपुर के संग।

AIR at 90. आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी भागलपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए फिल्म नागिन से। गीत के बोल लिखे हैं वर्मा मलिक ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज़

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म मेरा गांव मेरा देश का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत के साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम चित्रपट से। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। मीडियम वेव 205.76 मीटर अर्थात 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 3 बजे हैं। संपन्न होती है आज की ये सभा। शाम 5 बजे युवा वर्ग को संबोधित कार्यक्रम युववाणी के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। अभी अनुमति दीजिए एफएम बैंड के 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम जारी रहें।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबा। हेलो सहेली।

हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आप जो मुकाम हासिल करना चाहती हैं, जिसका आपने कभी सपना देखा था, उसे पाने की कोशिश के लिए सपनों को पंख लगा दें, क्योंकि कोई भी काम छोटी सी शुरुआत से ही होता है। काम छोटा बड़ा नहीं होता। खुद पर भरोसा रखें, कभी हार नहीं माने। जीवन में सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो तेज दौड़ते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो दौड़ते रहते हैं और हमेशा गतिशील रहते हैं। और गतिशील रहने के लिए हमें प्रयास करना होता है, जैसा

0: कि हेलो सहेली कार्यक्रम में आप हमें कॉल लगाने के लिए बार बार प्रयास करती हैं और सफलता मिलने पर खुशी की बरसात होती है। तो चलिए देखते हैं आज किस शहर से और कौन सी सखी हमारी पहली कॉलर होती हैं। तो ये लीजिए, फोन की घंटी बज गई। हेलो सहेली।
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: और क्या करती हैं आप?
1: जी दीदी, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो घर के ही काम करती हूँ।
0: घर में भी तो बहुत सारे काम होते हैं, तो हाउस वाइफ की तो जो पूरी जिम्मेदारी होती है एक परिवार को पालने पोसने की, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिम्मेदारियों को अपनी बाखूबी से निभा रही हैं। तो रंजीता जी, आपके दिन की शुरुआत कैसी होती है और आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में भी हमें बताएं।
1: जी दीदी, मेरी दिन की शुरुआत तो सुबह ही हो जाती है। सुबह उठते हैं, फिर जैसे अभी तो गर्मी का सीजन है, तो चाय वगैरह तो अभी पीते नहीं है गर्मी का है तो, और सुबह उठते हैं, फिर फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रश वगैरह करने के बाद सीधा जैसे घर के काम है, नाश्ता वास्ता बनाना है, तो सुबह हम लोग रोटी सब्जी खाते हैं
0: जी।
1: तो फिर सुबह रोटी सब्जी बनाती हूँ, उसके बाद बाकी काम है जैसे झाड़ू पोछा बर्तन है, तीन बच्चे हैं तो उनको उठाना, फिर उन लोग का ब्रश वगैरह
0: जी।
1: उन लोग को नाश्ता कराना, ये सब।
0: लगता है आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, है ना?
1: जी, बेटा बड़ा है
0: जी
1: और गुड़िया है, वो छोटी है अभी।
0: अच्छा। और आपके क्या शौक रहे हैं बचपन में?
1: जी, मैं जैसे कि पढ़ाई करती थी तो उसके साथ साथ मुझे सिलाई बुनाई करने का शौक है, घूमना फिरना भी बहुत अच्छा लगता है।
0: तो आप सिलाई में क्या कर लेती हैं और बुनाई में आपको क्या पसंद है? आपने सबसे ज्यादा क्या चीज बुनाई करी है?
1: जी दीदी, मैं जैसे बुनाई में पर्दा वगैरह है या पैरदान है, थाली टोपने का जो होता है वो सब बनाती हूँ, और जैसे कि सिलाई में मुझे सब कुछ आता है, जैसे बच्चों के लिए फ्रॉक, अपने लिए ब्लाउज, ये सब।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा हुनर है जिसको आप आगे अपने घर में कर रही है। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपनी पसंद का कोई गाना बताइए हमें।
1: जी दीदी, मैं जीना है तो हंस के जियो,
0: जी
1: खानेदार फिल्म।
0: अच्छा, तो लीजिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: दीदी आदाब।
0: आदाब, अपना नाम बताइए।
1: जी दीदी, मैं जिला रामपुर ग्राम खड़िया एक मिनार वाली मस्जिद के पास से शबनम अब्बासी आपसे मुखातिब हूँ। दीदी दीदी मैं हेलो फरमाइश भी सुनती हूँ, हेलो सहेली भी सुनती हूँ, सही सहेली भी सुनती हूँ, सब कार्यक्रम सुनती हूँ और रेडियो मेरे पार्लर में चलता रहता है और कार्यक्रम सुनती रहती हूँ।
0: क्या बात है, यानी कि आपका काम है पार्लर में लोगों की खूबसूरती।
1: दीदी
0: ब्यूटिशियन है, बहुत अच्छी बात है ये। आप तो यानी कि बहुत सारी सखियों को आप बहुत सुंदर सुंदर बना करके तैयार करती है ना?
1: जी दीदी
0: ये जो आप ब्यूटी पार्लर का काम कर रही हैं, पार्लर चला रही हैं, तो कितने साल हो गए इसको चलाते हुए?
1: दीदी ये मम्मी करती थी, अब हम भी करने लगे हैं दीदी, इसे 10-12 साल से भी ज्यादा हो गए।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी सी बात है। और आपके शहर में क्या चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है?
1: दीदी हमारे शहर में तो मतलब जो रामपुर की जो मशहूर चीज है वो है चाकू।
0: अच्छा,
1: कहना चाहती हूँ दो लाइनें आपके लिए। हम वो नहीं जो मतलब से प्यार किया करते हैं, हम वो नहीं जो रिश्तों से प्यार किया करते हैं। दीदी आपका पैगाम आए ना, हम आपको दिल से याद किया करते हैं। दीदी
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी प्यारी सी लाइन कही और हम भी आप सभी को दिल से याद करते हैं। तो अब आप बताइए कि कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी फिल्म का नाम रहेगा जान और गाने के बोल हैं, तेरे सीने में मेरा दिल धड़की, मेरे सीने में तेरा दिल जान, ओ मेरी जान।
0: लीजिए शबनम जी आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना।

0: सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनते हैं अगली किस सखी ने हमें कॉल किया है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं संयोगिता बोल रही हूँ, चंडीगढ़ से।
0: संयोगिता जी, आप चंडीगढ़ से बोल रही हैं। चंडीगढ़ अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत शहर है
1: जी।
0: तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम बहुत अच्छा है, रहता है हमेशा, लेकिन अभी 2 दिन से बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन फिर भी शाम को अच्छा हो जाता है।
0: संयोगिता जी, अपने बारे में आप कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं, आपके शौक क्या क्या हैं और आपको किन चीजों में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, रुचि है आपकी?
1: दीदी, मेरा बहुत ज्यादा शौक है कुकिंग का। मैं कुकिंग और बेकिंग दोनों करती हूँ। बेकिंग के लिए मैं कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ ताकि वो अपना करियर अच्छे से कर सके बेकिंग में।
0: बेकिंग में आप क्या क्या बताती हैं?
1: बेकिंग में दीदी मेरा है, ब्रेड बनाना सिखाती हूँ। बहुत तरह की ब्रेड्स होती हैं, केक्स है, आइसिंग केक और बिस्किट्स हैं, और चॉकलेट की भी क्लासेस होती है। तो मेरे जो घर पे क्लासेस होती हैं वो हाउसवाइफ, रिटायर्ड लोग कोई भी कर सकते हैं
0: जी,
1: और कॉलेज में सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चे।
0: क्या बात है, यानी कि बहुत सारे बच्चे बड़े खुश होते होंगे जब आप तरह तरह की केक सिखाती होंगी। तो केक के लिए क्या खास जरूरी होता है ध्यान रखना कि हम जब केक बनाने चलते हैं तो हमें किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए?
1: केक के लिए दीदी सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका रेशियो
0: जी,
1: और जब हम ओवन में बनाते हैं तो भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है, और जब हम गैस से बनाते हैं तब भी टेम्परेचर इम्पोर्टेंट होता है
0: जी।
1: और उसका बेकिंग का एक ड्यूरेशन होता है 45 मिनट्स का
0: जी,
1: तो उसको ध्यान में रख करके किया जाता है। मेन है इसका कि जो भी इंग्रेडिएंट हम लें वो हमारा रूम टेम्परेचर के हो और उसका रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो,
0: बिल्कुल
1: केक बहुत अच्छा बनता है।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही बात कहा कि रेशियो, नाप तौल जिसे कहते हैं, नाप तौल बहुत अच्छी होनी चाहिए उसमें। उसके लिए तो मेजरमेंट कप्स भी आते हैं जिससे नापा जाता है
1: हाँ,
0: जी। तो जो आपने बताया गैस पर

0: केक बनाने का तरीका, तो उसको आप किन बर्तनों में इस्तेमाल करती हैं केक बनाने के लिए?
1: केक बनाने के लिए दीदी, जिसके पास अवन नहीं है वो हेवी पैन की कढ़ाई ले,
0: जी
1: चाहे कोई पतीला ले,
0: जी
1: उसके अंदर आप नमक डाल दीजिए, 1 किलो नमक।
0: जी
1: उसके ऊपर जो हम स्टैंड जिससे हम बर्तन रखते हैं वो स्टैंड हम उस पर रख सकते हैं। और उसके बाद जो बेकिंग डिश है, जो एल्युमिनियम की आती है
0: जी
1: बेकिंग ट्रे हमारी, उसमें हम केक के बैटर को रख करके हम उसमें रखेंगे और उसको ढक करके हमको 45 मिनट्स के लिए छोड़ देना होता है।
0: तो इसको संयोगिता जी, जब केक आपका 20 मिनट है या 45 मिनट्स के लिए आपने रखा है, तो उसको कैसे पता करेंगे कि केक आपका रेडी हो गया है, तैयार हो गया है?
1: एक टूथपिक की सहायता से दीदी उसको चेक करते हैं,
0: जी
1: अगर उसमें नहीं लगा है इट मीन्स कि केक आपका रेडी है, और
0: जी
1: अगर उसमें थोड़ा बहुत लगता है तो आप 5-7 मिनट के लिए और छोड़ दीजिए।
0: क्या बात है। और फिर जब इसको
1: जी
0: ठंडा हो जाएगा तब इसको निकालना रहता है ना?
1: इसको निकालिए, बिल्कुल अपने मन मुताबिक आइसिंग करिए और उसका मजा लीजिए।
0: क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छी चीज
1: जी
0: बताई है। और
1: जी
0: संयोगिता जी ये बताइए, हम ये भी जानना चाहते हैं कि और आपके क्या क्या शौक है, इसके अलावा बचपन में आप क्या क्या शौक रखती थी?
1: दीदी, बचपन से तो मुझे गाने का और डांस का बहुत ज्यादा शौक था,
0: हाँ जी,
1: लेकिन तब इतनी सुविधा नहीं थी और इतने स्कूल कॉलेजेस नहीं थे जहाँ ये सब चीजें सिखाई जाए।
0: जी
1: हम लोग रूटीन के जो कॉलेज में 15 अगस्त 26 जनवरी होता था, इन्हीं यही सब डांस करते थे। गाने का बहुत शौक था,
0: जी
1: शादी के बाद हस्बैंड भी बहुत गाने के शौकीन है, बिटिया भी मेरी कथक करती है, उसने ग्रेजुएशन किया है, तो गाने की परंपरा हमारे घर में बनी हुई है। मेरी मासियां, मेरी अम्मा, अम्मा अब नहीं है लेकिन वो विविध भारती बहुत सुनती थी और सखी सहेली उनका फेवरेट प्रोग्राम होता था,
0: क्या बात
1: तो
0: है,
1: उन्हीं के साथ सुनते सुनते मेरी सखी सहेली सुनने की आदत पड़ी।
0: क्या बात है, यानी हमारी विविध भारती के रेडियो के प्रोग्राम आप बहुत सारे सुनती आई हैं बचपन से।
1: बहुत बचपन से जी, हम घड़ी नहीं देखते थे, हम प्रोग्राम के हिसाब से सोचते थे कि अच्छा अब इतना बज गया अब ये आएगा।
0: हाँ ये बात आपने बिल्कुल सही की। आपने बोला कि आपको गाने का भी शौक है, तो आज
1: जी
0: आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज तो दीदी आप सुना दीजिए मुकद्दर का सिकंदर का गाना, सलामे इश्क मेरी जान।
0: ठीक है संयोगिता जी, आपको हम आपकी पसंद का गाना सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, कल्पना खरे।
0: जी कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। और बताइए, अपने बारे में बताइए।
1: आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो मैं बहुत दिन से फोन लगाती थी, कभी भी लगता ही नहीं है, हमेशा एंगेज जाता है
0: जी।
1: तो उसके लिए मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरा फोन लग गया।
0: क्या बात है, देखिए आज आपने इतनी कोशिश करी, आपने दिल से फोन लगाया तो आपका फोन लग गया, और ये बहुत अच्छी बात है। कोशिश करते हैं तो सफलता हमेशा मिलती है ना कल्पना जी।
1: और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आवाज सुनने के लिए हम तरस जाते हैं, इतनी मीठी इतनी अच्छी आवाज है आपकी।
0: क्या बात है। और बताइए कल्पना जी, आपके क्या क्या शौक हैं, आपका बचपन कैसा बीता?
1: एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स जो है हमेशा रेडियो पे ये कुछ कुछ प्रोग्राम सुनते ही रहते थे, तो हम लोगों को भी इन्हें बचपन में तो इतना समझ नहीं आता था
0: जी,
1: लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े हुए हम लोग को लगा कि नहीं नहीं अच्छा लगता है गाने सुनना है, यंग एज होती है तो ये सब चीजें अच्छी लगने लगती हैं अपने।
0: जी
1: तो हमारे घर में हमेशा हमारे पेरेंट्स हैं अम्मा बाबू जी,
0: जी
1: तो एक्चुअल में तो मैं झांसी की हूँ
0: जी,
1: और छाया गीत ये त्रिवेणी सभी मतलब हम लोग सखी सहेली ये सब सुनना पसंद करते हैं हम लोग।
0: क्या बात
1: और
0: है।
1: हाँ, रेडियो हमारा बहुत पुराना पहले जो चलता था, यानी नॉब जो घुमा के और वो नहीं आवाज कम ज्यादा का, तो बहुत मजा आता था उसमें। अब तो खैर बहुत इजी हो गया है सब कुछ।
0: हाँ, अब तो सब मोबाइल में भी रेडियो आ गया है,
1: हाँ,
0: अब कहीं भी बैठे
1: हाँ,
0: रेडियो सुन सकते हैं, तो सुविधा हो गई।
1: हाँ,
0: लेकिन वो जमाना, वो रेडियो का जो दौर था, वो जमाना जो रेडियो का दौर था वो बहुत ही अलग था। सबके घरों में बढ़िया बढ़िया रेडियो हुआ करते थे, सब सुबह से लेकर रात तक प्रोग्राम सुनते थे, तो कहना चाहिए मनोरंजन का एकमात्र वही साधन था, है ना कल्पना जी?
1: वही साधन था, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। हाँ
0: जी। और कल्पना जी, आपने अपनी पढ़ाई वगैरह कहाँ से करी?
1: मेरी झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मैंने एमए सोशियोलॉजी में किया हुआ है।
0: जी जी जी
1: हाँ,
0: और
1: मतलब बहुत अच्छे दिन निकले मेरे बचपन, बहुत ज्यादा अच्छा निकला।
0: सही
1: और
0: बात
1: उसके
0: है।
1: बाद ससुराल भी बहुत अच्छी मिली है सब कुछ, सभी लोग म्यूजिक के इतने शौकीन है। हमारे ससुर तो सहगल के गाने गाते थे
0: क्या
1: हमेशा।
0: बात है, गाने की महफिल लग
1: हाँ
0: जाती है यानी आपके घर में।
1: हाँ और सभी सिंगर है हमारे देवर वगैरह सब, अभी भी मतलब 60+ हो गए हैं,
0: जी
1: तब भी वो क्लास जाते हैं, ज्वाइन की हुई है।
0: क्या
1: मेरा
0: बात,
1: बेटा भी बॉम्बे में गिटारिस्ट है, वो भी गिटार बजाता है जॉब के साथ साथ,
0: क्या
1: तो
0: बात है।
1: सबको का। हाँ, और बेटी भी मेरी गुंजा बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा।
0: क्या बात है।
1: मैं तो एक्चुअल में 63 ईयर्स की हूँ अभी,
0: जी जी
1: और मतलब मुझे हर दिन जीने में मैं बहुत अच्छा लगता है कि हर दिन मेरा बहुत अच्छा निकले, इसे मतलब अच्छा समय मैं व्यतीत करती। बच्चों की मैरिज हो गई है,
0: जी
1: दोनों बच्चे उसके बच्चे भी हो गए हैं अभी,
0: क्या बात
1: मतलब
0: है।
1: फ्री है एकदम,
0: जी
1: तो मुझे मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं इस सबके लिए कि तुम्हें जो करना है अब करो अपने हिसाब से।
0: यानी कि जिंदगी में आप जो करना चाहती थी वो अपने शौक आप पूरे कर रही हैं, और इस उम्र में भी कर रही हैं, और बहुत एक्टिव हैं जैसा कि आपने बताया, तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुन करके। और आपके पतिदेव का बहुत सहयोग है, ये बहुत अच्छी सी बात है आपने बताई मुझे, बड़ा
1: हाँ,
0: अच्छा
1: ये
0: लगा।
1: तो मेरी बेटी की मैरिज डे है, वो अपने हस्बैंड को वो 7 दिन का गाना कंगना कंगना डेडिकेट करना चाहती है।
0: हमारी तरफ से भी उनको बधाई दीजिएगा। और कल्पना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम आपको आपकी पसंद का वो 7 दिन फिल्म का कंगना कंगना करके ये गाना आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हेलो सहेली लेकर हाजिर है आपकी सहेली मंजरी वर्मा। हेलो सहेली, कौन बोल रही हैं आप और कहां से बोल रही हैं?
1: मैं वैष्णवी मोरे बोल रही हूँ, नांदेड़ से।
0: वैष्णवी जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं घर पर रहती हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आप अपने मर्जी से कौन सा ही गाना सुनाएंगे?
0: ठीक है, तो मैं आपको अपनी पसंद का ये गीत सुनवाती हूँ।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अनु शर्मा बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: अनु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। और कैसी हैं आप, क्या करती हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हूँ। हेलो सहेली प्रोग्राम में कई दिनों से मैं कॉल लगा रही थी,
0: जी
1: आज जाके कॉल लगा।
0: देखिए क्या बात है, आज आपने कॉल लगाया और लग गया तो ये आपकी कोशिश रंग लाई है ना अनु जी।
1: बिल्कुल।
0: तो अनु जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो जॉब करती हैं इसके अलावा आपके और कौन कौन से शौक हैं?
1: मेरा सबसे ज्यादा जो पसंदीदा शौक है वो मेरा है गाना गाना और गाना सुनना।
0: क्या बात है। तो विविध भारती से आप कौन कौन से प्रोग्राम सुनना पसंद करती हैं, कौन कौन से रेडियो पर प्रोग्राम सुनती हैं?
1: विविध भारती से सबसे पसंदीदा तो सखी सहेली, हेलो फरमाइश,
0: जी जी
1: छाया गीत, ये सब बचपन से सुनते आए हैं तो बहुत अपना सा फील होता है। आज भी 6 बजे चालू हो जाता है।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और अच्छा ये बात बताइए कि आपको खेलना पसंद है?
1: बिल्कुल खेलती हूँ मैं।
0: और अभी भी खेलती हैं या बचपन में या स्कूल में आपके कौन से खेल पसंद के होते थे?
1: मैं बैडमिंटन, कैरम, चेस ये पसंद करती हूँ।
0: अच्छा, तो अभी भी आपको समय मिल जाता है जॉब के बाद?
1: निकालना पड़ता है थोड़ा
0: जी,
1: हेल्दी रहने के लिए ऐसा करना पड़ता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हम इंश्योरेंस में सब लोगों को यही सिखाते हैं कि अपना प्रोटेक्शन भी रखें और स्वस्थ भी रहें।
0: जी
1: हेलो सहेली सुन सुन के बहुत अच्छा फील होता है।
0: क्या बात है, आप हमारे विविध भारती के जितने भी प्रोग्राम हैं उनको भी आप सुनती रहिए इसी तरह। और आपको आज हम कौन सा गाना सुनवाएं?
1: आज आप मेरी पसंद का गाना सुनवाइए, नाम गुम जाएगा।
0: क्या बात,
1: किनारा फिल्म से है।
0: अनु जी, आपने इतना प्यारा गाना बताया है, नाम गुम जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि आपने कहा कि आपको गाना पसंद है, तो क्यों ना आप एक दो लाइन हमारे लिए गा दीजिए।
1: जी बिल्कुल।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं दरक्षा जहाँ बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: दरक्षा जहाँ, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: घर पर ही रहते हैं, अभी तो गर्मी की छुट्टी है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यहाँ पर।
0: जी
1: विविध भारती सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, ये लोग सहेली और ये लोग फरमाइश, ये सब ज्यादा अच्छे लगते।

0: गाना सुनो कभी, उनकी फरमाइश है आज
1: बिल्कुल बताइए अपने
0: ये
1: दादाजी की पसंद।
0: वादियां मेरा दामन अभिलाषा फिल्म का गाना है।
1: तो दरक्षा जी लीजिए सुनते हैं आपकी पसंद का, आपके दादाजी की पसंद का वादियां मेरा दामन ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र पुणे से शुभदा इनामदार बोल रही हूँ।
0: शुभदा जी, आपका हेलो सहेली में फोन लगा है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: मुझे बहुत खुशी हो रही है
0: जी
1: हेलो सहेली में आकर।
0: जी अपने बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करती हैं।
1: जी, मैं एक सेवानिवृत्त सीनियर सिटीजन हूँ और जूनियर कॉलेज में अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: तो आप किस क्लास के बच्चों को पढ़ाती थी?
1: मैं जूनियर कॉलेज में 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ाती थी। मराठी मेरा सब्जेक्ट था और ज्योग्राफी भी मैं सिखाती थी। अब मैं रिटायर होकर 15 साल हो गए हैं मुझे
0: जी।
1: तो अब मैं खाली वक्त मुझे बहुत मिलता है तो मैं विविध भारती सुनती हूँ, क्योंकि बच्चे सब काम पर चले जाते हैं तो अकेलापन विविध भारती के जरिए मेरा कम हो जाता है और बहुत खुशी मिलती है।
0: क्या बात है, तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम आप सुनती होंगी, तो आपको कौन कौन से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं?
1: मुझे पहले सखी सहेली और हेलो सहेली तो अच्छे लगते ही है, और साथ ही साथ भूले बिसरे गीत, वंदे मातरम,
0: जी
1: त्रिवेणी, छाया गीत,
0: जी
1: ये सभी प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आते हैं।
0: क्या बात है।
1: थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, ललित लेख, कथा,
0: जी
1: प्रासंगिक कविता
0: जी
1: मराठी में लिखती हूँ,
0: जी
1: जो कभी कभी न्यूज़पेपर और मासिक पत्रिका में छप भी जाता है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लिखती हैं। और
1: हाँ,
0: तो आप हमें आज कौन सी कविता की कुछ पंक्तियां सुना सकती हैं?
1: हे सखी हेलो सहेली, कभी उलझा तो कभी सुलझा देती हो जीवन की हर पहेली, तभी तो नित नई नवेली। किशोरी युवती से लेकर प्रौढ़ा वृद्धा की हर मुश्किल का हल यूं ही पल में कर देती हो सफल, तभी तो तुम लगती हो सबको प्यारी न्यारी दुलारी हेलो सहेली। ज्ञान विज्ञान साहित्य समाज उत्सव संस्कार से लेकर गीत संगीत कला क्रीड़ा तक करवाती हो सभी का दिलकश मनोरंजन, साथ ही साथ मिलता है उस बोधन का अंजन। मंजरी जी,
0: जी
1: अनुश्री प्रस्तुत हेलो सहेली में स्नेह का दीप, गुणों की आरती, वाणी में ममता,

0: आपस में मौज मस्ती और मंजूल सी सरलता।
1: क्या बात, आज आप कौन सा गाना पसंद करेंगी सुनना?
0: मिस मेरी फिल्म का सच्ची रे सुन बोले पपीहा उस पर।
1: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का मिस मेरी फिल्म का ये बहुत प्यारा सा गीत।

आज हेलो सहेली के सफर में सखियों से बातें करते पता ही नहीं चला बातों और गीतों ने समा बांध दिया। अब कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। चलते चलते आपको जानकारी दे दें, आपके कॉल की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 4002466 2, एसटीडी कोड 022। अब दूसरा नंबर भी नोट कीजिए, फोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 2867-0288, एसटीडी कोड है 022। तो बस मंगलवार को लगाइए इन्हीं नंबर्स पर कॉल और अपनी नई सहेली से कीजिएगा ढेर सारी बातें। हेलो सहेली प्रोग्राम प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो सुनना याद रखिएगा। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हमारे सखा भाइयों से विनती है कि वे हेलो सहेली में कॉल नहीं लगाएं क्योंकि लाइन व्यस्त हो जाती है। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग, हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने

0: संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। वाचन स्वर नेहा शर्मा का। राधा और पुष्पा दो गरीब माँ बाप की बेटियां थी। राधा की बड़ी बहन पुष्पा की शादी हो चुकी थी। राधा को माँ बाप स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो किसी न किसी तरह मैट्रिक तक पढ़ने में कामयाब हुई थी, लेकिन जैसे ही जवानी की मंजिल में कदम रखा तो उसके पिता रामलाल ने प्रकाश नाम के आदमी से उसकी शादी कर दी।

राधा के गरीब माँ बाप ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज भी दिया था, लेकिन दहेज को देखकर प्रकाश के रिश्तेदारों ने नाक भौं चढ़ाई और पूछा, बस इतना ही सामान मिला है? प्रकाश के माँ बाप ने इस बात पर सिर हिलाया, आप जैसे बड़े अफसर के लिए ये दहेज बहुत ही कम है। रिश्तेदारों ने नफरत भरे स्वर में कहा, ऐसे कंगाल घराने में रिश्ता क्यों किया? उस वक्त तो बात आई गई हो गई, मगर जिस जहरीले पौधे को प्रकाश के रिश्तेदारों ने इनके ख्यालात के आंगन में उगा दिया था, उसने धीरे धीरे एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसके कड़वे कसैले फल का अर्क प्रकाश और उसके माँ बाप के हलक से उतारा जाने लगा। इस अर्क ने बड़ी तेजी से अपना काम शुरू किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को यकीन हो गया कि रामलाल ने कम दहेज दिया। हमारे समाज में बुनियादी जरूरतों को हासिल करना मुश्किल हो जाए और इस पर पाबंदी लग जाए तो वहीं सामाजिक और नैतिक बुराइयां सर उठाना शुरू कर देती हैं। आज शैतानी वसवसे, नाजायज ख्वाहिशात और वाहियात रस्मों रिवाज ने शादी को बहुत मुश्किल और पेचीदा बना दिया है। दहेज की नाकाबिले बर्दाश्त फरमाइशें एक गरीब इंसान दहेज अदा नहीं कर सकता। दहेज की अदायगी न होने की सूरत में कितने ही गरीब खानदानों में शादियां रुक जाती हैं, बारातें दुल्हन की चौखट पर आकर रुक जाती हैं और कितने ही माँ बाप अपनी बदनामी के डर से आत्महत्या भी कर लेते हैं या फिर लड़कियां खुद को बोझ समझकर मौत के मुंह में चली जाती हैं।

आजकल हमारे समाज में रिश्ते बाप की हैसियत और समाज में उसकी ऊंचे और बुलंद मर्तबे को देखकर किए जा रहे हैं। लड़की की काबिलियत एक अलग ही चीज रह जाती है। वो कितनी ही अच्छी किरदार और नेक सीरत क्यों ना हो, अगर उसके बाप की हैसियत लड़के वालों से मेल नहीं खाती तो बात हजार बार भी बनाओ तो भी नहीं बनती, बल्कि बिगड़ जाती है। रिश्ते नातों के इस नीलाम घर में कोई भी बोली ऊंचे दहेज और माली तहफ्फुज के बिना नहीं लगाई जाती। दहेज कितना खूबसूरत और हसीन शब्द है, मगर इसका हुस्न तो दुल्हनों का लहू पीकर मुस्कुराता है। दहेज की लानत एक शोला है जो हसीन आंचल पर लहराता है। दहेज की लानत कभी सास के हाथों बहू को जहर पिलाती है, कभी ननद की चालें भाभी का गला घोटती हैं, कभी शौहर से तेल छिड़क कर आग लगवाई जाती है, तो कभी लड़की के पाक दामन पर दाग लगाए जाते हैं। इस तरह दहेज के लालची लोग औरतों का खात्मा करते हैं। प्रकाश अपनी बीवी राधा से खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। उसके रवैये को देखकर घर वालों को भी शह मिल गई। वे उठते बैठते सोते जागते राधा से दहेज की मांग करने लगे। शादी को एक साल का अरसा हुआ था, राधा बीमार रहने लगी। राधा के ससुराल वाले ठीक से उसका इलाज भी नहीं करवा रहे थे। बीमारी की हालत में ही राधा ने एक लड़की को जन्म दिया। दुख ये था कि बच्ची का एक पैर पोलियो का शिकार था। राधा की बड़ी बहन ने उस मासूम बच्ची की परवरिश करने की जिम्मेदारी ली और उस बच्ची का नाम रुक्मणी रखा गया, जो अपनी मौसी के साथ चली गई। राधा का रूप बड़ा दिलकश था, वो बहुत सुंदर थी। उसके संजीदा चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी रहती थी। वो ससुराल वालों से ठीक तरह से पेश आती थी। किसी गलती के एहसास पर उसने कभी बुरा नहीं माना। ना वो बहस करती थी ना तकरार, हंसकर अपनी गलती कबूल कर लेती थी। मगर उसकी कोई गलती ना भी हो तो भी वो उसे अपनी गलती समझकर स्वीकार कर लेती थी। इन्हीं बातों और खूबियों ने उसे एक खुश मिजाज औरत बना दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों की दहेज की मांग ने उसे उदास और निराश कर दिया था। राधा के चेहरे और होंठों पर मुस्कुराहट तो रहती थी, मगर दहेज के नासूर ने उसके सीने में गहरे जख्म कर दिए थे। अपने दुख को अपने तक ही रखने और दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने सामने मुस्कुराती रहती थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि इन हालातों में भी वो खुश है। हालात से समझौता करके वो खुश है।

मगर ऐसा नहीं था। वो रातों को रोती रहती थी, यहां तक कि उसके आंसुओं से उसका तकिया भीग जाता था कि कैसी नफरत थी जिसने एक औरत की आत्मा को मसल कर रख दिया था। राधा को दहेज का शब्द दीमक बनकर अंदर ही अंदर खा रहा था। दहेज की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राधा को मौजूदा समाज के नौजवानों की मानसिक गिरावट पर अफसोस हो रहा था। आज का हर नौजवान जैसे दहेज हासिल करने के लिए ही पैदा होता है। वो सोचती, अगर किसी के पास अच्छा दहेज देने की हैसियत नहीं है तो क्या वो अपनी बेटी की शादी करने के बारे में न सोचे। राधा के ससुराल वालों का दिमाग इस कदर बिगड़ चुका था कि उन्होंने राधा को मायके भेजने तक का मंसूबा बना लिया और 50,000 रुपए की मांग की। प्रकाश ने राधा से कहा, अगर तू 50,000 रुपए नहीं लाई तो अपनी मनहूस सूरत कभी मत दिखाना। एक दिन राधा रोती हुई अपने मायके चली गई। गरीब माँ बाप अपनी बेटी का यह सदमा बर्दाश्त न कर सके। फिर एक के बाद एक दोनों इस दुनिया को छोड़ गए और राधा दर बदर की ठोकरें खाने के लिए जिंदा रह गई। जिंदगी ने उसे नाकामियों और मजबूरियों के सिवा कुछ नहीं दिया था। वो खुद को धरती का बोझ समझने लगी। उठ जाए यहां से, मुझे दुकान खोलनी है। दुकानदार जेब से चाबियों का गुच्छा निकालकर ताले में लगाने लगा। दुकान के सामने लेटी राधा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर दूसरे ही पल उठ खड़ी हुई। उसने अपनी पोटली बगल में दबाई और एक तरफ घिसटने लगी। उसके दुबले पतले सूखे हुए जिस्म पर मैल की परत इतनी गहरी थी कि उसका असली रंग छुप गया था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थी और सिर के बालों में भी मैल जमा था। चलते हुए उसकी टांगे और पूरा शरीर कांप रहा था। दूर से देखने पर वो इंसान नहीं, कोई और ही मखलूक लगती थी। उसकी कोई मंजिल नहीं थी, कोई ठिकाना नहीं था। वो एक ऐसे मुसाफिर की तरह थी जिसे अपनी मंजिल तक नजर नहीं आती। राधा जिस इलाके में जाती वहां के भिखारी उसे अपने इलाके में जाने को कहते, क्योंकि वो उनके मुकाबले में कमजोर थी, इसलिए वो वहां से निकल जाना ही बेहतर समझती। दूसरे भिखारी शायद इस वजह से उससे जलते थे कि वो उनके मुकाबले में ज्यादा काबिले रहम लगती थी। दोपहर होने तक वो करीब 2 किलोमीटर का फासला तय कर चुकी थी। वो बांद्रा के इलाके में दाखिल हुई। रास्ते में कई जगह उसने आराम भी किया था, लेकिन अब तक किसी ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया था। वो सुबह से भूखी थी, अब उसकी भूख भड़क उठी थी। थक हार कर वो फुटपाथ के सायेदार हिस्से में बैठ गई। जब सब्र की हद खत्म हुई तो उसने मजबूरी में हाथ फैलाया। धीरे धीरे उसके हाथ उठाने की ताकत भी नहीं रही और उसका हाथ जमीन को छूने लगा। उसने अपने सामने एल्यूमिनियम का खाली कटोरा रख दिया। लोग अफरा तफरी में उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी को भी उसकी हालत पर रहम नहीं आया। सच तो यह है कि किसी ने उसकी तरफ देखा ही नहीं।

थोड़ी देर बाद एल्यूमिनियम के कटोरे में एक रुपए का सिक्का छन की आवाज के साथ गिरा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके तन बदन में खून की रफ्तार तेज हो गई हो। देखते ही देखते उसका कटोरा सिक्कों से भर गया। सभी अपने आप में गुम थे। एक साहब अपने कुत्ते के साथ उसके करीब से गुजरे। उन्होंने एक फुटपाथ पर बैठी हुई भिखारन को देखा और आगे बढ़ गए। अलबत्ता उसके कुत्ते ने उसे सूंघा और फिर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। तेजी से भागता हुआ अपने मालिक से जा मिला। उसी वक्त उसी इलाके का एक हट्टा कट्टा भिखारी आ गया। उसने जब राधा को देखा तो अपनी पूरी ताकत से उस पर चिल्ला पड़ा, तू यहां क्यों आई है? बेबसी के एहसास से राधा की आंखों में आंसू आ गए। मैं थोड़ी देर के लिए बैठी हूं, फिर चली जाऊंगी। आइंदा इस इलाके में भीख मांगेगी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा इलाका है। उस हट्टे कट्टे भिखारी ने सिक्के के कटोरे को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, तुम मेरे इलाके से रुपए नहीं ले जा सकती। तो राधा वैसे तो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला ना सकी। भूख और प्यास ने उसे निढाल कर दिया था। उसकी आवाज गले में ही फंस गई। हट्टा कट्टा भिखारी राधा का रुपयों से भरा कटोरा ले गया और राधा निढाल होकर जमीन पर लेट गई। भूख और प्यास ने उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। गाड़ी तेज रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रही थी। सीटी की आवाज फिजा में गूंज रही थी। गाड़ी लगातार सीटी बजा रही थी। अब गाड़ी लड़की के बिल्कुल करीब आने वाली थी। इससे पहले कि लड़की गाड़ी के जिद में आती, अचानक ही किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। लड़की ने देखा कि एक अजनबी शख्स जिसकी उम्र लगभग 50 साल होगी, उसने उसे खींचा है। लड़की ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, कौन हो तुम? मेरा नाम सुधीर पांडे है, वैसे लोग मुझे संत बाबा के नाम से जानते हैं। लड़की ने पूछा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? एक इंसान होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। तुम्हारे कर्तव्य और तुम्हारी इंसानियत से मुझे कोई लेना देना नहीं, लड़की ने ऊंची आवाज में कहा। मुझे जीने से कोई दिलचस्पी नहीं, मैं मरना चाहती हूं।

मरना क्यों चाहती हो? उस शख्स ने पूछा। ये मेरा अपना मामला है, तुम्हें यह पूछने का कोई अधिकार नहीं, लड़की ने जवाब दिया। बड़ों से इस तरह की बातें नहीं करते बेटी, संत बाबा ने प्यार भरे लहजे में कहा। ईश्वर ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिंदगी लेने का अधिकार भी उसी का है। तुम अपने आप को मौत के हवाले नहीं कर सकती। जिंदगी में दुख और परेशानियां आती ही रहती हैं, हालात से समझौता करना पड़ता है। आखिर वो कौन सी मजबूरी है कि तुम आत्महत्या करना चाहती हो? संत बाबा ने पूछा। मैंने कह दिया ना कि मैं आत्महत्या का कारण नहीं बताऊंगी। मैं जानता हूं हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, मगर मैं फिर भी जानना चाहता हूं कि वो कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर रही है, संत बाबा ने कहा। लड़की ने एक नजर संत बाबा के चेहरे पर डाली और दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों पर फिसल रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम रुक्मणी है, मैं एक अपाहिज अनाथ लड़की हूँ, बूढ़ी मौसी के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। चंद पल गुजरने के बाद रुक्मणी ने कहा, स्कूल में लड़के और लड़कियां मुझे सताते हैं, मुझे धरती का बोझ कहते हैं। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही हूँ कि सचमुच मैं धरती का बोझ बनती जा रही हूँ। अपनी बूढ़ी मौसी पर तो मैं पहले ही बोझ बन चुकी हूँ, अब उनके बूढ़े कंधों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए मैंने आत्महत्या का इरादा कर लिया है। नहीं रुक्मणी, नहीं, तुम आत्महत्या नहीं करोगी, संत बाबा ने कहा। जिंदगी एक खूबसूरत गीत है, इसे हर इंसान को आखिरी दम तक गाना पड़ता है। मैं जानता हूं तुम्हारा एक पैर पोलियो का शिकार है, लेकिन तुम्हारा जहन मफलूज नहीं हुआ है। तुम अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करो। अगर तुम्हारी मेहनत और लगन में सच्चाई है तो तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। तुम पढ़ने लिखने में जी लगाओ, तुम इल्म की रोशनी का मीनार बन जाओ। जब तुम्हें चढ़ाने वाले लोग इस मीनार को देखेंगे तो शर्मिंदा होंगे, उनकी हार होगी तुम्हारी जीत होगी और वो अपने आप में सर झुका लेंगे और तुमसे पीछे हो जाएंगे।

चंद पल गुजरने के बाद संत बाबा ने महसूस किया कि रुक्मणी की आंखें खुशी से चमक रही है। ठीक है, रुक्मणी ने कहा, मैं आपके इन ख्यालातों पर गौर करूंगी। उसके बाद रुक्मणी की जिंदगी में एक नया इंकलाब आया। वो रात दिन पढ़ाई में मशरूफ रहने लगी। स्कूल में वो बेचैन सी रहती। उसका दिल चाहता कि जल्दी से जल्दी छुट्टी हो और वो सड़क पर पहुंच जाए। सड़क के करीब अपनी मौसी को देखकर उसे सुकून मिलता और यूं महसूस होता जैसे शहर की हलचल भरी फिजा से निकलकर गांव के सुकून भरे माहौल में अपनी मौसी के पास पहुंच गई हो। स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसे वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। किताबों के दिलचस्प सबक उसका ध्यान बटाए रखते, लेकिन जैसे ही तफरीह का वक्फा होता वो अपने आप को अकेला महसूस करने लगती और ये अकेलेपन के पल बेहद परेशानी का सबब बनते। छुट्टी की घंटी बजते ही वह दूसरे बच्चों की तरह दौड़ते हुए बच्चों की तरह खेल कूद में हिस्सा लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। छुट्टी होने में कुछ देर बाकी थी कि टीचर ने उसे जाने की इजाजत दे दी, क्योंकि टीचर अच्छी तरह समझती थी कि छुट्टी के वक्त बच्चों के हुजूम में वो चल नहीं सकेगी। क्लासरूम से निकलकर वो कुछ ही दूर पहुंची थी कि छुट्टी का घंटा बज उठा और उसके साथ ही कमरों से बच्चों का सैलाब उमड़ पड़ा। तमाम बच्चे धक्का मुक्की करते और एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। रुक्मणी भी बच्चों के इस रेले में गिरती पड़ती अपनी बेजान टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। वो सड़क पर अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। सड़क पार करना भी उसके लिए एक मुश्किल काम था। सड़क पर ट्रैफिक था और इस भीड़ में वो सड़क पार नहीं कर सकती थी। इसी दौरान उसकी नजर अपनी मौसी पर पड़ी। रुक्मणी की मौसी उसके लिए फरिश्ते की हैसियत रखती थी। हर रोज वही उसे सड़क पार करवाया करती थी। आज भी उसने रुक्मणी को वहां खड़ा देखा तो करीब आते हुए बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। रुक्मणी की मौसी ने उसके दाएं कंधे पर अपना हाथ रखा और रुक्मणी ने उनके बाएं कंधे पर अपना हाथ रख दिया। सड़क की दूसरी तरफ पहुंचकर रुक्मणी और उसकी मौसी अलग हो जाती। रुक्मणी बैसाखियों के सहारे चलने लगती। रुक्मणी को उन लोगों से सख्त नफरत थी जो उसे लंगड़ाकर चलते हुए देखकर घूरते थे या रहम की निगाहों से देखते थे। उसके लिए एहसास बहुत दर्दनाक था। जब वो अपनी टांग को घसीटते हुए आगे बढ़ती तो लोग उसे देखते रहते। शुरू शुरू में जब वो स्कूल आती थी बच्चे उसके करीब आकर देखते थे कि उसकी टांग में क्या खराबी है। ऐसे मौकों पर वो जमीन में गिर जाती।

0: बाबा एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। रुक्मणी पढ़ने लिखने के बारे में संत बाबा से मशवरा लेने लगी। संत बाबा हर मोड़ पर रुक्मणी का हौसला बढ़ाते रहे। संत बाबा सिर्फ रुक्मणी का ही नहीं बल्कि गरीब बच्चों के दिलों में भी शिक्षा का दीप जलाते थे। उनकी दिली तमन्ना थी कि देहात, गांव और शहर का कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, गरीब बच्चों को भी शिक्षा हासिल करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लास शुरू की थी। अब रुक्मणी स्कूल के साथ साथ संत बाबा की कोचिंग में भी पढ़ने लगी। एक दिन संत बाबा ने क्लास के बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, पढ़ने लिखने में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ किताबों की मदद काफी नहीं होती, दिमाग से जितना काम लोगे उतनी ही उसकी ताकत बढ़ेगी और याददाश्त भी मजबूत होगी। हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी पैराग्राफ या विषय को खत्म करने के बाद उसे अपने शब्दों में बयान करे। पढ़ाई का मतलब समझना है। तोते की तरह रटना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि अगर कुछ लाइनें भूल जाओ तो पूरा सबक भूल जाओगे। प्यारे बच्चों, तुम्हें पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनना है। तुम अपने माँ बाप की तमन्नाओं का केंद्र हो, उनकी आंखों की ठंडक हो। देश और कौम की आशाएं तुमसे है। तुम पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। संत बाबा के इस बयान में माँ बाप का नाम सुनकर रुक्मणी रंजिदा हो गई। उसने महसूस किया, मेरे तो माँ बाप नहीं है, मैं किसका नाम रोशन करूं? मेरे बाप जिंदा है या नहीं मुझे मालूम नहीं। सुना है वो दहेज का तलबगार था, माँ पर जुल्म करता था और मेरी माँ वो जुल्म सहती थी। कहते हैं देश भर में यही हो रहा है। मेरी माँ भी जुल्म सहते सहते इस दुनिया से चली गई। माँ कितना प्यारा शब्द है। माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी मौसी की आंखों में अपनी माँ की तस्वीर देखी है। कितनी प्यारी है मेरी माँ, भोली भाली माँ।
1: तो कितनी

मौसी ही मेरी माँ है और वही मेरे बाप भी है। मैं पढ़ लिख कर अपनी मौसी का नाम रोशन करूंगी। अब रुक्मणी की पढ़ाई की हालत बहुत बेहतर हो गई थी। वो हर क्लास में अच्छे नंबरों से पास होती थी। एक दिन उसकी तस्वीर राज्य भर में छपने वाले अखबारों में छप गई, क्योंकि रुक्मणी ने SSC में टॉप किया था। रुक्मणी वो लड़की थी जो पूरे राज्य में अव्वल आई थी। शहर के एक अच्छे समाज सेवक ने एक अनाथ अपाहिज लड़की को गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया था, और फिर वो दिन भी आ गया। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। मेहमान खास के लिए बनी जगह के दाईं तरफ शहर की मशहूर हस्तियों की गैलरी थी। मुकर्रर वक्त पर अनाउंसर ने स्टेज पर आकर समाज सेवक से दरखास्त की कि वे विद्यार्थियों को अपने कीमती मशवरे दें। लोगों ने तालियों से समाज सेवक का स्वागत किया। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज के इस जलसे में शरीक होते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक अनाथ अपाहिज लड़की ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने ये साबित कर दिया कि एक अपाहिज इंसान भी अपनी मेहनत और लगन से तरक्की की मंजिलें तय कर सकता है। चंद पल रुककर उन्होंने कहा, लोग कहते हैं कि रुक्मणी सड़क पर रहती है, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। ये सड़क पर रहना या शहर में रहना क्या होता है, सब दुनिया के बनाए हुए उसूल हैं। ईश्वर ने तो सिर्फ दो ही प्रकार के लोग बनाए हैं, औरत और मर्द। जिनमें इंसानियत होती है वही लोग महान होते हैं। फिर उन्होंने कहा, अब मैं यहाँ मौजूद तमाम विद्यार्थियों को मशवरा देता हूँ कि पढ़ाई में दिलचस्पी लें और रुक्मणी की तरह कोशिश करें, कोशिश जरूर रंग लाएगी। अब मैं आखिर में रुक्मणी को माइक पर आने की दावत देता हूँ। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बैसाखियों का सहारा लिए हुए रुक्मणी स्टेज पर पहुंची।

रुक्मणी ने माइक संभालते ही कहा, प्यारे सज्जनों, प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये मेडल लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मैं इस गोल्ड मेडल की हकदार नहीं हूँ। हकदार तो वो महान हस्ती हैं जिन्होंने मुझे मौत के मुंह से निकाला, जीने का तरीका सिखाया और मेरे दिल में पढ़ने लिखने का दीप जलाया। मैं चाहती हूँ कि ये मेडल मेरे सुधीर को दिया जाए, जिन्हें हम संत बाबा कहते हैं। पूरा हॉल खामोश हो गया। बच्चे और बड़े एक दूसरे को देखने लगे। फिर रुक्मणी ने कहा, मैं अपने संत बाबा से विनती करती हूँ कि वे स्टेज पर आए और समाज सेवक से ये मेडल हासिल करें। तालियों की गूंज के बीच संत बाबा स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं रुक्मणी को बधाई देता हूँ कि उसने गोल्ड मेडल हासिल किया है। रुक्मणी एक होनहार लड़की है जिसने पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सिर्फ माँ बाप का ही नहीं बल्कि अपने स्कूल का नाम भी रोशन किया है। मैं तमाम बच्चों को मशवरा देता हूँ कि वे भी पढ़ने लिखने में दिलचस्पी लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। चंद पल बाद उन्होंने कहा, रुक्मणी एक मासूम भोली भाली लड़की है। उसने कहा कि ये मेडल उसके सुधीर को दिया जाए, लेकिन नादान बच्ची, मैं तो एक टीचर हूँ। एक टीचर अपने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देता है।

है ताकि वे पढ़ लिख कर अपना भविष्य संवार सकें। जब कोई बच्चा पढ़ लिख कर कामयाबी हासिल करता है तो बच्चे के माँ बाप के साथ साथ टीचर को भी खुशी होती है। मुझे बेहद खुशी है कि रुक्मणी पढ़ लिख कर इस मेडल के काबिल बनी है, इसलिए ये मेडल रुक्मणी को ही दिया जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मुस्कान फैल गई। दूसरे ही पल समाज सेवक माइक पर आए और बोले, मुझे खुशी होगी कि ये मेडल संत बाबा के पवित्र हाथों से ही रुक्मणी को दिया जाए। हॉल एक बार फिर तालियों से गूंज उठा। संत बाबा ने मुस्कुराते हुए रुक्मणी के सिर पर हाथ फेरा और अपने पवित्र हाथों से उसे मेडल दे दिया। एक बार फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।

गीतों भरी कहानी में आप सुन रहे थे इब्राहिम यादगिरी की कहानी गोल्ड मेडल। वाचक स्वर नेहा शर्मा, संपादन सहयोग काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। संध्या के 5 बज रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। आरंभ में प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार युवा श्रोताओं, आप सुन रहे हैं युवाणी। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त शालिनी। आशा करती हूं हमारी तरह बिल्कुल स्वस्थ और आनंदित होंगे आप, साथ ही अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी से जुड़ भी गए होंगे। अगले कुछ पलों तक इस शाम में होने वाली है थोड़ा ज्ञानवर्धक, थोड़ी सुरीली और ढेर सारी बातें। तो चाय की चुस्कियाँ तैयार रखिए, मुस्कुराहट चेहरे पर सजाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि अब बजेगा गानों का जादू और बातों का सिलसिला। आइए कार्यक्रम रूपरेखा को जान लेते हैं। आज के दिन विशेष में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर। उसके बाद होगा हमारा दैनिक अस्तम डेली ट्रिविया, फिर साप्ताहिक अस्तम। वार्ता में सुनेंगे अभिनव झा को। वार्ता का विषय होगा असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। उसके बाद साप्ताहिक अस्तम में ही सुनेंगे आर्थिक समाचार और फिर अंत में जानेंगे आज के फन फैक्ट और समसामयिक खबरों को। श्रोता मित्रों, हर शाम की अपनी एक अलग खूबसूरती होती है और जब चांदनी के साथ कोई प्यारा सा गीत जुड़ जाए तो माहौल और भी खास बन जाता है। तो आइए इस शाम की शुरुआत करते हैं एक बेहद खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले गीत के साथ, फिल्म जख्म का यह गीत अलका याग्निक की आवाज़ में।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: AIR at 90.
1: वेलकम बैक दोस्तों, उम्मीद है कि अभी अभी सुना गया गीत आपके दिल को ज़रूर छू गया होगा। बढ़ते हैं अब आज की चर्चा की ओर। विषय है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को जैव विविधता के महत्व के प्रति जागरूक करना और प्रकृति के संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीवों की विविधता। यही विविधता हमारे पर्यावरण को संतुलित बनाए रखती है। मनुष्य का जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। हमें भोजन, औषधियों, स्वच्छ वायु और जल सभी प्रकृति से प्राप्त होते हैं, लेकिन बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और अनियंत्रित शहरीकरण के कारण अनेक जीव जंतु विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। यह केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं बल्कि मानव जीवन के लिए भी गंभीर खतरा है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1993 में की गई थी। हर वर्ष इसकी एक विशेष थीम रखी जाती है ताकि लोग प्रकृति संरक्षण के विभिन्न पहलुओं को समझ सकें। विद्यालयों, महाविद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा इस अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अभियान चलाए जाते हैं। जैव विविधता की रक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है। हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, जल और ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए तथा प्लास्टिक और प्रदूषण को कम करने का प्रयास करना चाहिए। छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर हम सभी प्रकृति को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरा भरा एवं संतुलित पर्यावरण देने का संकल्प लें। दोस्तों, ये थी आज की चर्चा। विषय था अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अब आज के डेली ट्रिविया का प्रश्न क्या है जान लेते हैं। प्रश्न है, किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय अंकित है। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए दोस्तों, किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय अंकित है। आप इसका उत्तर सोचिए, हम शो में आगे सही उत्तर बताएंगे। दोस्तों, अब वक्त है एक प्यारे से गीत का, जिसे अपनी खूबसूरत आवाज दी है अरिजीत सिंह ने। फिल्म सैयारा का बेहद सुरीला गीत सुनिए और खो जाइए इस प्यारे से संगीत में।

0: प्यारे मित्रों, अब वक्त हो गया है हमारे साप्ताहिक विशेष खंड वार्ता की। आज की वार्ता का विषय है असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। वार्ताकार है अभिनव झा।
1: असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। जीवन एक लंबी यात्रा है। इस यात्रा में कभी समतल रास्ते मिलते हैं तो कभी कठिन पहाड़ियाँ, और कभी ऐसे मोड़ जहाँ रास्ता दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है। लेकिन क्या हम उस यात्री को सच्चा यात्री कह सकते हैं जो पहली कठिनाई आते ही घर वापस लौट जाए? नहीं, सच्चा यात्री वही है जो गिरे, उठे, थके, फिर चले और अपनी मंजिल तक पहुँच कर ही दम ले। आज हम बात करते हैं उस सच्चाई की जिसे हम सब जानते हैं लेकिन भूल जाते हैं। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। असफलता से हम क्यों डरते हैं? हमारे समाज ने असफलता को एक कलंक की तरह देखना सीखा है। बचपन से हमें सिखाया जाता है अव्वल आओ, पहले नंबर पर रहो, कभी हारो मत। लेकिन जब कोई बच्चा परीक्षा में कम अंक लाता है तो घर में मातम छा जाता है। जब कोई युवा किसी प्रतियोगिता में पीछे रह जाता है तो लोग उसे नाकाम समझने लगते हैं। यह सोच हमारे मन में असफलता का एक भयावह चित्र बना देती है। हम असफलता से इतना डरने लगते हैं कि कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, सपने देखना बंद कर देते हैं, और धीरे धीरे वह आग जो हमारे भीतर जल रही थी वह बुझ जाती है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर एक बच्चा पहली बार चलना सीखते वक्त गिर जाए और सोचे कि मुझसे नहीं होगा, तो क्या वह कभी चल पाएगा? नहीं, वह गिरता है, रोता है, फिर उठता है और एक दिन दौड़ने लगता है। यही जीवन का नियम है। असफलता एक शिक्षक है। असफलता कोई दुश्मन नहीं है, वह हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। जब हम किसी काम में असफल होते हैं तो वह असफलता हमें बताती है कि हमारी कमी कहाँ है, हमें और क्या सीखना है, हमारा रास्ता कहाँ से होकर जाता है। जो व्यक्ति कभी असफल नहीं हुआ उसने दरअसल कोई बड़ा जोखिम नहीं उठाया, उसने अपनी सीमाओं को कभी परखा ही नहीं। वह एक बंद कमरे में बैठा रहा, सुरक्षित लेकिन बेजान। इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे महान लोग वही हैं जो सबसे ज़्यादा बार गिरे और उठे। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता देखी, उन्होंने कहा था, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही सोच उन्हें महान बनाती है। उन्होंने असफलता को हार नहीं माना बल्कि उसे ज्ञान की एक परत समझा। हमारे महापुरुष और उनकी असफलताएं। महात्मा गांधी को पहली बार न्यायालय में बोलते वक्त इतनी घबराहट हुई कि वे बिना कुछ बोले ही बैठ गए। वही व्यक्ति आगे चलकर लाखों लोगों की आवाज़ बना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक साधारण परिवार से निकले, वायुसेना में चयन नहीं हुआ, फिर भी वह भारत के मिसाइल कार्यक्रम के चाणक बने। उन्होंने कहा था, यदि तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। इन महापुरुषों की असफलताएं उनकी कमजोरी नहीं थी, वह उनकी नींव थी। गिरना पाप नहीं है, रुक जाना पाप। जीवन में गिरना कोई पाप नहीं, पाप है गिरकर वहीं बैठे रहना। युवाओं से मेरी बात है, आज जो परीक्षा में कम अंक आए, आज जो नौकरी नहीं मिली, आज जो सपना अधूरा रह गया, वह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। हर अच्छी कहानी में संघर्ष का एक अध्याय ज़रूर होता है। जो आज तुम्हारी आँखों में आंसू है, कल वही आंखें गर्व से चमकेंगी। बस हिम्मत मत हारो। असफलता से सीखने का तरीका। असफल होना काफ़ी नहीं है, असफलता से सीखना ज़रूरी है। हर बार तुम किसी काम में पीछे रहो तो खुद से यह सवाल पूछो। पहला, मैं कहाँ चूका? किस जगह मेरी तैयारी कमज़ोर थी? दूसरा, मैंने इस बार क्या नया सीखा जो पहले नहीं जानता था? तीसरा, अगली बार मैं क्या अलग करूँगा? जो व्यक्ति यह तीन सवाल खुद से पूछता है वह कभी वास्तव में असफल नहीं होता है, क्योंकि हर असफलता उसे एक कदम और आगे ले जाती है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजरकर महान बनता है। समाज की परवाह और अपनी राह हमारे समाज में एक बड़ी बीमारी है। लोग क्या कहेंगे? जब कोई युवा असफल होता है तो उसे खुद के दर्द से ज़्यादा इस बात की चिंता रहती है कि पड़ोसी क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जो लोग आज तुम्हारी असफलता पर उंगली उठा रहे हैं वे तुम्हारी सफलता का श्रेय लेने आएंगे। इसलिए उनकी बातों को अपना ईंधन बनाओ, अपनी बाधा नहीं। जब संसार तुम्हें कमज़ोर समझे तब अपने भीतर की आवाज़ सुनो, वह आवाज़ कभी झूठ नहीं बोलती। दूसरों से तुलना मत करो। अक्सर हम लोग रुक जाते हैं, डर जाते हैं यह सोचकर कि हम सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमें वहाँ रुकना नहीं है। आजकल हम बस दूसरों से प्रतियोगिता करने में लग गए हैं। हमें अपने कार्य से ज़्यादा दूसरों में रुचि है। इसके कारण हम अपनी छोटी जीत को भी हार मान लेते हैं, क्योंकि हम दूसरे से खुद की तुलना करने लगते हैं। इसके कारण हम खुद को असफल मानने लगते हैं। हमें कभी भी दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई हमसे आगे रहेगा, बेहतर कर रहा होगा। तो अगर हम तुलना ही करते रहेंगे तो शायद हम हमेशा असफल

0: सफल रहेंगे। इसलिए हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों पर। जिंदगी ने अगर ठोकर दी है तो समझो जिंदगी तुम पर ध्यान दे रही है। जो पेड़ तूफान में सबसे ज़्यादा झुकता है वही सबसे गहरी जड़ों वाला होता है। तुम्हारी हर तकलीफ तुम्हारी जड़ों को गहरा कर रही है। बस एक काम करो, हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी सफलता की कहानी अभी लिखी जा रही है। और सबसे अच्छे अध्याय हमेशा सबसे कठिन संघर्ष के बाद आते हैं। असफलता तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, वह तुम्हें गढ़ने आई है। इसलिए गिरो पर उठो, थको पर रुको मत।
1: जीवन हमें असफलताएं रुकना नहीं बल्कि सीखकर आगे बढ़ना सिखाती है। हर ठोकर हमें और मजबूत बनाती है और सफलता की ओर एक नया रास्ता दिखाती है। इसी पर अपने विचार साझा कर रहे थे वार्ताकार अभिनव झा। वार्ता का विषय था असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। दोस्तों, अब बात करते हैं देश दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ खास और महत्वपूर्ण खबरों की। समय हो चला है साप्ताहिक स्तंभ आर्थिक समाचार का। देश में अप्रैल महीने में जीएसटी संग्रह ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सरकार को लगभग 2.43 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 8.7% अधिक है। नीति आयोग ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े सामानों पर जीएसटी दर को कम करने का सुझाव दिया है। इससे वैज्ञानिक अनुसंधान और नई तकनीकों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार देश की जीडीपी वृद्धि दर लगभग 7.8% दर्ज की गई है। इसी के साथ समाप्त होते हैं आज के आर्थिक समाचार। अब आज के फन फैक्ट में क्या है जान लेते हैं। मित्रों, क्या आपको पता है आकाशवाणी की होम सेवा आज देश भर में स्थित 479 स्टेशन शामिल है, जो देश के लगभग 92% तक पहुंचता है और यह क्षेत्रफल एवं कुल जनसंख्या का 99.19% है। डेली ट्रिविया का भी उत्तर जान लेते हैं। प्रश्न था, किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? इसका सही उत्तर है आकाशवाणी के प्रतीक चिन्ह में। अब चलते हैं आज के समसामयिक खबरों की तरफ। भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा और फीचर वॉल का उद्घाटन रांची एयरपोर्ट पर किया गया। अरुणाचल कीवी द यूएसपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिशन का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किया। हाल ही में यूरोप की अंतरिक्ष एजेंसी ने चीन के सहयोग से इस्माइल मिशन लॉन्च किया। आज के समसामयिक खबरों में इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ ये खबरें आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुमूल्य साबित होंगे। हर खूबसूरत सफर की तरह आज के हमारे ये सुरीले शाम भी अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रही है। विदा लेने से पहले सुनते हैं एक ऐसा गीत जो प्यार दोस्ती और खूबसूरत यादों की मिठास से भरा हुआ है। फिल्म डुप्लीकेट का यह गीत, जिसे अपनी शानदार आवाज़ दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। संध्या के 5:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म औरों में कहां दम था, इस फिल्म के गीत के साथ। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है अमला शेबुलू और ऋषभ चतुर्वेदी ने। गीत के बोल लिखे हैं मनोज मुंतशिर ने, वहीं संगीत दिया है MM करीम ने।

अमला शबुलू और ऋषभ चतुर्वेदी की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत। आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म का नाम है दर्द। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है मोहम्मद इरफान और रुबाई ने, वहीं गीत के बोल और साथ में संगीत दिया है अराफात महमूद ने।

0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में अगला गीत सुने फिल्म जननेता से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है श्री कृष्ण और विशाल मिश्रा ने। संगीत दिया अनिरुद्ध रविचंद्र ने और गीत के बोल लिखे हैं रितेश राव ने।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आई सुनते हैं अगला गीत फिल्म ओ रोमियो से। विशाल भारद्वाज की आवाज़ में है ये गीत, संगीत भी विशाल भारद्वाज ने दिया है, वहीं इस गीत को लिखा है गुलजार साहब ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। संध्या के 5:55 हो रहे हैं। आइए अब एक नज़र डालते हैं आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर अजय कुमार घोष से वार्ता। वार्ता का विषय होगा सुरक्षित प्रसव एवं नवजात की देखभाल। 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर लहरी। कलाकार होंगे गोपाल कृष्ण मिश्र। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे रेडियो साहित्यिक पत्रिका शतदल। रात्रि 10:00 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्री एल के पंडित का शास्त्रीय संगीत गायन। और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। कल प्रातः 5:50 पर आरंभ होगी हमारी कल की सभा। 5:55 पर आप सुनेंगे कृषि पर आधारित कार्यक्रम खेत खलिहान। 6:05 पर आप सुनेंगे चिंतन मनन। 6:10 पर प्रसारित होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे संजय ब्रह्मचारी से वार्ता। वार्ता का विषय होगा हृदय रोग एवं समाधान। 6:40 पर प्रसारित होगा रामचरितमानस गान। सुबह 7:00 आप सुनेंगे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। 7:20 पर आप सुनेंगे कानून की बातें। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पीवी राज से वार्ता। वार्ता का विषय होगा साइबर अपराध से संबंधित वर्तमान कानून। फिल्म संगीत के कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल सुबह 9:06 पर, सुबह 10:00, दिन के 11:00, दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम चित्रपट से के तहत, संध्या 5:30 पर और रात्रि 8:00 कार्यक्रम रजनीगंधा में। कल सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार होंगी डॉक्टर स्मिता सिन्हा। 10:30 पर आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम। कलाकार होंगे विशेश्वर प्रसाद शर्मा। दिन के 12:00 प्रसारित होगा शहरी महिला कार्यक्रम नारी लोक। 12:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। कलाकार होंगे पंडित भजन सुपोरी। दिन के 1:00 आप सुनेंगे लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। कलाकार होंगे विनय कुमार शुक्ला। 1:30 पर आप सुनेंगे संताली कार्यक्रम जीवन झरना। दिन के 3:00 प्रसारित होगा प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार होंगे डूंगर राम भाटी एवं साथी। 3:25 पर आप सुनेंगे समूह स्वर में देशभक्ति गीत। कल संध्या 5:00 आप सुनेंगे युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी। संध्या 6:00 आप सुनेंगे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम। कलाकार होंगे बसंत कुमार। 7:52 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर लहरी। कलाकार होंगे ज्ञानी लक्ष्मण सिंह बेदी। और रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान भारती। वहीं रात्रि 10:00 हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। ये था आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। संध्या के 6:00 को है। प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी।

0: ग्राम जगत खेती गृह हस्ती कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को शंकर का नमस्कार
1: और सबों को कमली का भी नमस्कार। शंकर भाई आपको भी मेरा हार्दिक नमस्कार।
0: नमस्कार कमली बहन, कहिए कैसी हैं आप?
1: जी शंकर भाई, हालचाल मेरा सब बढ़िया है। मलमास का पवित्र महीना चल रहा है और सभी तरफ देखिए कि अधिक मास तो ऐसे भी पूजा पाठ का और दान धर्म का महीना माना जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ मौसम में तब्दीलियां आती है तो वो थोड़ा सा ठीक है। आप कैसे हैं शंकर भाई?
0: मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं कमली बहन, पर मौसम की बात आप कर रहे हैं तो मौसम के बार बार बदलने से जनमानस को जो परेशानी हो रही है कमली बहन, इस बात से थोड़ा मैं भी परेशान
1: जी
0: हूं। प्रकृति का ये रूप देखकर खासकर हम किसान भाइयों को ज्यादा ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
1: निश्चित तौर पे
0: कमली बहन, असमय आंधी तूफान वो वर्षा के कारण किसान भाइयों के रबी फसलों को जहां नुकसान पहुंचा है, वहीं केला आम लीची जैसे फसलों के उपज में भी लगभग 60% कमी दिख रही है।
1: जी जी शंकर भाई, और उसके साथ साथ जो ये कमी दिख रही है उसे उपज में तो कमी आई ही है, फलों का आकार भी आप देखेंगे कि छोटा रह जाता है, या उसमें मिठास वो नहीं हो पाती है जो सही तापमान और सही मौसम के रहने पर होती है। तो वो एक देखिए मौसम का एक चक्र होता है और अगर सही ढंग से वो चक्र हो तो ही मौसमी सब्जियां, फल और जो भी आप अनाज देखते हैं तो उन सब की बढ़वार होती है, पैदावार होती है और वो एक फायदा पहुंचता है किसानों को भी और आमजनों को भी।
0: बिल्कुल,
1: है ना।
0: आमतौर पे सभी जीव जंतु पेड़ पौधे सभी तभी सुरक्षित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं जब प्रकृति का मिजाज सही हो।
1: जी,
0: प्रकृति के साथ सब मिलके ही चलते हैं और प्रकृति के साथ सारे जीवों का एक अन्योन्याश्रय संबंध है।
1: जी, और ये सभी बीज जो है कहीं ना कहीं देखेंगे शंकर भाई तो हम सबके के ही जो है गलतियों का परिणाम है।
0: बिल्कुल,
1: हम लोगों ने क्या किया है कि पशु पक्षियों का जो प्राकृतिक आवास है वो छीन लिया है। हमने अपने एक तरह से कहा जाए तो फायदे के लिए, जरूरत नहीं हम उसको लालच के लिए कह सकते हैं कि हमने जो है आवासों को खत्म कर दिया है, जंगलों को काट दिया है, नदियों को प्रदूषित कर दिया है और इस तरह से जो है उनके प्राकृतिक आवास पौधे आप देखिए कि कई सारे जड़ी बूटियां नष्ट होती जा रही हैं, कई सारे आप देखिए कि पेड़ जो अच्छी अच्छी प्रजातियां खत्म होते जा रहे हैं, जीव जंतु नष्ट होते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, बिल्कुल,
1: तो ये सारी जो है गलतियां हमारी ही हैं।
0: बिल्कुल, इसलिए तो कमली बहन इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता के संरक्षण एवं इसके महत्व के प्रति दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए आज के दिन यानी 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाने के लिए चुना।
1: क्या बात है,
0: जिसका मुख्य उद्देश्य पेड़ पौधे और जानवरों की प्रजातियों में घटती विविधता, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण व भंडारण, प्रदूषण से लड़ने, जलवायु को स्थिर बनाए रखने, जल संसाधनों की रक्षा करने, मिट्टी का निर्माण और संरक्षण जैसे पारिस्थितिकी तंत्र के नुकसान को रोकने के लिए ही आह्वान चलाया।
1: बहुत जरूरी है शंकर भाई, बहुत जरूरी है। अब आप देखिए कि हमारी ये जो प्रकृति है, हमारी जो सृष्टि है वो एक विशाल आप उसका आकार देखते हैं तो तरह तरह के जीव हैं। आप देखिए कि कितना बड़ा हाथी होता है और शेर बाघ बड़े बड़े जीव हैं और छोटी सी चींटी है, छोटे छोटे जीव है, कई तो ऐसे भी सूक्ष्म जीव है जिन्हें हम आंखों से देख भी नहीं पाते हैं। वैसे ही आप देखिए कि पेड़ पौधों की दुनिया एकदम विशाल सी पेड़ पौधों की दुनिया है। हर एक पत्ती को देखिए, हर एक बूटों को देखिए, अलग अलग आकार, अलग अलग उनकी कटिंग पत्तियों की और फल और फूल, आप मोहित हो जाएंगे सृष्टि को देखकर। और ये जो ऐसे जल थल सब में आप देखेंगे और ये सारे जो जीव हैं अलग अलग तरीके, इन्हें ही हम कहते हैं विविधता। तो ये जैव विविधता है जो भी इस इन्होंने इस पृथ्वी को सजा रखा है। एक तरह से देखा जाए तो ये एक पारिस्थितिकी तंत्र जो है सबसे मिलकर बना है।
0: बिल्कुल,
1: है ना? और सबका अपना महत्व है,

0: सबका अपने अपना स्थान है। हम ऐसा नहीं समझ सकते हैं कि किस कोई एक चीज बहुत अच्छी है, फायदे वाली है और कोई एक निकृष्ट है।
1: हम यदि भारत की बात करें कमलीबन, तो भारत दुनिया के सिर्फ 2.4% भूभाग पर अवस्थित है
0: जी,
1: पर यहाँ दुनिया भर की 8% जैव विविधताएं निवास करती
0: जी,
1: हैं।
0: जी जी जी जी
1: और 36 यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में से 12 भारत में ही हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि ये कारण है, यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत का भौगोलिक स्थिति भी जो है वो भी विविधता से भरी हुई है। कहीं आप देखेंगे कि रेगिस्तान है, तो फिर कहीं आप देखेंगे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं कहीं लद्दाख वगैरह जैसी जगहों में बर्फ से घिरी हुई पहाड़ियां हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ भी विविधता मौसम में भी है, भौगोलिक स्थिति में भी है, और इसी कारण यहाँ पे विविध प्रकार के जनजाति तो मैं मानवों की बात कर रही हूँ, जानवरों की प्रजातियां और पेड़ पौधों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं,
1: खास करके हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा, सुंडा लैंड, इसके अलावा कहें आप नंदा देवी, नीलगिरी, सुंदरवन, कच्छ केरन, जैसे कई स्थान है हमारे यहाँ। और जैसा कि आपने कहा कि कहीं ना कहीं हम लोग ही नुकसान के जिम्मेदार हैं, तो जरूरत से ज्यादा पेड़ पौधे कट रहे हैं, जरूरत से ज्यादा शिकार के माध्यम से हमारे पशु पक्षी मछली जड़ी बूटी समाप्त हो रहे हैं, हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशक दवाई, प्लास्टिक रसायन हमारे नदी तालाब झरने समुद्र के पानी को जहरीला बना रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जिस पानी को पीकर प्रकृति में रहने वाले सभी जैव जो है अपने प्रजनन क्षमता को खो रहे हैं।
0: अब आप देखिए कि हमारे आसपास की हम जीवों को देखें तो कुछ जीव ऐसे हैं कि जैसे आप समझ लीजिए कि गोरैया है, कितनी मतलब हमने देखी बचपनों में कि हमारे आंगन में बहुत ज्यादा फुदक्का करती थी, लेकिन अब आप देखिए कि आप तरस जाएंगे, अपने बच्चों को हम शायद पता ही दिखा नहीं पाते हैं कि ये देखिए ये गोरैया है।
1: ऐसे गिद्धराज,
0: गिद्धराज बिल्कुल कम होते जा रहे हैं। अब आप देखिए गिद्धराज है या कौवे है, अब आप सोचिए कि वो क्या स्थान है उनका, वो जैसे कि कुछ जो मृत जानवर है या कोई ऐसे अवशिष्ट पदार्थ है उनको खाकर बहुत अच्छे से वो परिस्थितिकी को और या हमारी पृथ्वी को साफ सुथरा करते
1: हैं। देखिए कमलीबन, हमारी 75% खाने जो फसलें जो है ना
0: जी,
1: मधुमक्खी तितली जैसे परागणकर्ताओं पर ही निर्भर करती
0: है। बिल्कुल,
1: और ये मरे तो समझिए हमारी थाली
0: खाली। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ ये सारे कुछ जीव ऐसे भी हैं जो हमारे हमारे खेतों में रसायन की कमी को भी पूरा करते हैं, क्योंकि वो जो है जो हानिकारक कीट है उनको वो खाकर और फसलों की सुरक्षा भी किया करते हैं।
1: बिल्कुल। और पेड़ पौधे की बात करें तो 70% कैंसर की दवाएं हमारे गंध सर्पगंधा, अश्वगंधा, नीम जैसे पेड़ पौधे से ही बनती है।
0: जी जी जी। और ये एक पूरा प्रमाणित विज्ञान है।
1: बिल्कुल।
0: जड़ी बूटियों का अगर आप इनको शोध करें और बहुत बहुत मतलब बिना नुकसान पहुंचाए शरीर को, ये शरीर को आप मतलब तरोताजा निरोग बनाने में मददगार हैं।
1: तो और जलवायु को जहाँ तक संरक्षित करने की बात है तो जंगल बादल को ही आकर्षित करते हैं, वर्षा कराती है, पेड़ पौधे हमारे दलदली इलाकों के पानी को साफ करती है,
0: और साथ ही बड़े वृक्ष जो हैं ये आप देखिए कि पानी के कटाव को रोकते हैं, जैसे हमारे जो नदियों का किनारे जो
1: भूस्खलन को रोकते हैं,
0: भूस्खलन को रोकते हैं, क्योंकि वो जो है जहाँ जहाँ ये है वहाँ कटाव नदियों में नहीं हो पाता।
1: बिल्कुल।
0: इस तरह से मतलब पृथ्वी की प्रकृति की एक सुरक्षा के ये तंत्र है और इन्हें हमें जो है बचाना और अपनी पीढ़ियों तक इस ज्ञान को पहुंचाना बहुत ही जरूरी है शंकर भाई।
1: बिल्कुल, इसलिए तो हम अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कमली बहन कि आपने गांव घर के आसपास देसी पेड़ पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, जामुन, आम का पेड़ अवश्य लगावे,
0: और लगाए ही नहीं और उनको इस बारे में समझाएं भी हमारे कि किस काम ये आते हैं। अभी पीपल बरगद की आपने बात की कुछ दिन पहले, अभी आप देखिए बड़े वृक्ष की हमारी बहनों ने पूजा की, तो वो जो है अधिक से अधिक प्रदूषण को सोखते हैं और
1: ऑक्सीजन
0: पहुंचाते हैं,
1: निष्कासित करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है ना कि ये सैकड़ों जीव जो है, जीव जंतु, पक्षी, ये सबको घर देते हैं, उनका आवास स्थान होता है, और पानी का यथासंभव दुरुपयोग हम लोगों को रोकना चाहिए।
0: बहुत जरूरी
1: नदी
0: है।
1: तालाब झरना गंदा ना करें, क्योंकि जैव विविधता का 90% हिस्सा मीठे पानी पर ही निर्भर करती है कमलीबन।
0: बिल्कुल बिल्कुल। पानी की कमी के कारण भी
1: अपने घर के बच्चों एवं समाज के लोगों को इसके बारे में समय समय पर याद दिलाते रहें कि प्रकृति निहित सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे हमारे जीवन सहयोगी है, इसे बेवजह नुकसान ना पहुंचावे, तभी हमारी सभ्यता अपनी संस्कृति का गुणगान करते हुए स्वस्थ सुखी संपन्न रह सकती है।
0: निश्चित तौर पे हमें इस बात को जरूर सोचना है कि ये जो हमारा पूरी सृष्टि है और इसमें विविध जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, आप देखिए कि सबका अलग अलग स्वरूप है और आप देखिए कितना वो कारीगर है, वो विधाता जिसने इन सबको रचा है, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। सारे वृक्ष पौधे जीव जंतु सबको बचाए रखने में अपना सहयोग देना चाहिए। और शंकर भाई, अधिक मास चल रहा है और बात हो रही विधाता पर, तो अधिक मास के इस पावन महीने में आइए एक बढ़िया सा हम लोग शिव भजन सुने और फिर आगे बढ़े।
1: जरूर।

0: हाँ, अभी आप अधिक मास की बात कर रही
1: हाँ
0: थी,
1: हाँ हाँ
0: जो कि
1: अभी देखिए, अभी अधिक मास का जो है महीना है ना, अभी जेठ के महीने में अधिक मास का महीना आया है, तो इस बार हम लोग क्योंकि दो जेठ के महीने गहरे आएंगे, और ये माना जाता है कि इस मास में हालांकि विवाह ये सब कार्य तो नहीं होते हैं, लेकिन जो है पूजा पाठ या दान पुण्य के काम बहुत हुआ करते हैं, है ना शंकर भाई? तो इस मास में हम लोग जो है बहुत सारे दान पुण्य वगैरह काम किया करते हैं, और इसमें मलमास का मेला जो है राजगीर स्थान पे लगा करता है हर मास,
0: बिल्कुल
1: और उसके साथ साथ ये मुंगेर के पास जो क्षेत्र है वहां पर भी इस मेले का आयोजन बहुत धूमधाम से किया हुआ
0: देखिए,
1: करता है।
0: हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है कमली बहन, कि इस जो अधिक मास है, इस अधिक मास में क्या होता है ना, कि आप कुछ नए कार्य को नहीं कर सकते
1: जी,
0: हैं।
1: नए कार्यों को नहीं करते
0: हाँ,
1: हैं।
0: नए कार्य का वर्जन है।
1: हाँ
0: हाँ,
1: हाँ
0: लेकिन पूजा पाठ जितना भी हो,
1: हाँ
0: अधिक करें
1: हाँ
0: तो हमारे पूर्वजों को वो प्राप्त
1: और
0: होता है।
1: इसीलिए विष्णु, मतलब ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने इस मास को अपने नाम दिया, पुरुषोत्तम
0: जी
1: मास, है ना?
0: बिल्कुल,
1: और
0: पुरुषों में उत्तम मास, यानी पुरुषों में
1: हाँ
0: उत्तम कौन थे? श्री राम,
1: हाँ हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना?
1: तो
0: श्री राम
1: इसलिए
0: कौन थे? तो वो विष्णु के अवतार
1: जी
0: थे।
1: जी जी तो इसमें आइए सुनते हैं।
0: हाँ,
2: संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी ही मात्र एक ग्रह है जहाँ जीवन व्यापक है। यहाँ सूक्ष्म से लेकर विशाल वृक्ष विद्यमान है, तो सूक्ष्म से लेकर व्हेल जैसी विशाल प्राणी भी हैं। पृथ्वी पर लगभग 10 लाख जीवधारी रहते हैं। इन जीवधारियों में मनुष्य का स्थान सर्वप्रमुख है। जीवन का रूप पृथ्वी की सतह पर एक पतली परत में सीमित है। जैव विविधता के अंतर्गत पौधों, पशुओं और सूक्ष्म जीवों की सभी प्रजातियों तथा पारिस्थितिक की भी समस्त प्रक्रियाएं सम्मिलित है। यह पृथ्वी पर जीवन का आधार है। जैव विविधता का संरक्षण सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। विभिन्न रूपों में पृथ्वी प्रकृति का विकास करोड़ों वर्ष की लंबी प्रक्रिया के बाद हुआ है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के साथ ही जंतुओं की परजागत विविधता भी विद्यमान है। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जाति की उत्पत्ति हुई और इनमें से कई जीवन समय समय पर विलुप्त हो गए, जैसे डायनासोर, और इनकी प्रजातियां आज से लगभग 750 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी से सदा के लिए विलुप्त हो गई। जैव विविधता का संरक्षण पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा है। यह जीवों में पाए जाने वाले समस्त जीन, जाति तथा परितंत्र को अपने में समहित करता है। पूरे भारतवर्ष में आनुवांशिक विविधता के अंतर्गत 50,000 से अधिक आनुवांशिक रूप से भिन्न धान की तथा 1,000 से अधिक आम की जातियां पाई जाती है। पारिस्थितिक तंत्र के सभी जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य संतुलन स्थापित करना संकटग्रस्त तथा विलुप्त होते दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा करना, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना इत्यादि के लिए जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है। हमें मानव को प्राकृतिक से खाद्यान्न, फल, जूट, कपास, कच्चे माल, औद्योगिक उत्पादन जैसे रेजिन, टैनिन, इत्र, रंजक इत्यादि लाभदायक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे भी प्राप्त होते हैं। इसका पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। जंगलों से वायुमंडल को 20% ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसी प्रकार पक्षियों, मधुमक्खियों तथा चमगादड़ों इत्यादि की परागण क्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होती है। यदि परागण करने वाले इन जीवों का या वायुमंडल को ऑक्सीजन प्राप्त करने वाले पौधों को समाप्त कर दिया जाए अथवा कम कर दिया जाए तो हम मानवों पर इसका अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ेगा। हमें खाद्यान्न की कमी एवं प्राणदायी ऑक्सीजन युक्त वायु की कमी हो जाएगी। मानव हमेशा भोजन तथा आवास के लिए प्राकृतिक पर निर्भर रहा है, लेकिन जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है तब इस प्राकृतिक संपदा का अधिक दोहन शुरू हो जाता है। आजकल मनुष्य की बढ़ती आबादी की वजह से उनके रहने के लिए तथा अनेकों सुख सुविधा के लिए जंगलों की कटाई होती आ रही है, जिसका सीधा असर हमारे जैविक संरक्षण पर हो रहा है। जंगलों में जानवरों की जातियों का विलुप्त हो जाना तथा हमें प्राकृतिक से शुद्ध वातावरण नहीं मिल पाता है, मानव द्वारा अति दोहन से पिछले 500 वर्षों में बहुत सी जातियां विलुप्त हुई है। आज बहुत सारी समुद्री मछलियां आदि की जनसंख्या शिकार के कारण कम होती जा रही है, जिसके कारण व्यावसायिक महत्व की जातियां खतरे में हैं। पर्यावरण परिवर्तनों का सामना करने के लिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए आवश्यक शर्त के रूप में कार्य करता है। इसी के कारण हम जैव जगत से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अनेकों लाभ प्राप्त करते आ रहे हैं, जैसे भोजन, औषधि, रेशे, रबर इत्यादि हैं। साथ ही साथ जैविक संरक्षण हमारे लिए लाभकारी जैविक संसाधन भी है, जो अनेकों पारिस्थितिक कार्यों को करते हुए परितंत्र को स्वस्थ बनाए रखकर हमें दूषित जनित रोगों से बचाता है। इसका सौंदर्य पर भी काफी योगदान रहा है, जैसे पर्यटन, पक्षी निरीक्षण, वन्य जीवन, पालतू जीवन की देखभाल, बागवानी, इसके सौंदर्य मूल्य हैं। हमें इससे सांस्कृतिक लाभ भी हैं। आज भी घरों में या आसपास तुलसी, पीपल, वट, अशोक इत्यादि पादपों एवं अन्य वृक्षों को लगाकर पूजा की जाती है। आज भी पादपों एवं जंतुओं को राष्ट्र गौरव एवं सांस्कृतिक धरोहर का सूचक माना जाता है। आज हमारे पास चावल के अनेकों किस्में हैं, वह इस जैविक संरक्षण से और भी सुधारा और बचाया जा सकता है। आनुवांशिक जैविक संरक्षण पर ही हमारी दुनिया टिकी रह सकती है, इसलिए किसी भी प्राणी को समग्र उन्मूलन से तभी बचाया जा सकता है जब मनुष्य अपने सराहक प्रवृत्ति का त्याग कर संरक्षण का दृष्टिकोण अपनाए। जैव विविधता का संरक्षण एक चिंता का विषय बन गया है। मानव अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए जैव विविधता के संरक्षण को भी ध्यान दें, ताकि हमें जीवन संरक्षण से मिलने वाले लाभ के बारे में पता चल सके। मानव को समझना होगा कि संरक्षण विशेषज्ञों का मानना है कि पृथ्वी का पर्यावरण पर जैव विविधता की सुरक्षा का मानव के लिए यह अंतिम अवसर है। यदि वह समय रहते सचेत नहीं हुए तो प्राकृतिक में विमुख होने उसके लिए अत्यंत आत्मघाती सिद्ध होगा।
1: बहुत ही अच्छी अच्छी बात है। देखिए अभी हम लोग बात कर रहे थे, आज जैव विविधता दिवस भी है, और कितनी अच्छी इन्होंने बातें बताई कि अगर हम विविधता का सम्मान नहीं करेंगे तो हम अपनी प्रकृति को उसके मूल स्वरूप में कभी नहीं बचा पाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये बहुत जरूरी है कि जितने भी पेड़ पौधे, वृक्ष, जीव जंतु हैं, हमें सबका, उनके जीवन का एक तरह से देखा जाए तो उनके लिए हम उत्तरदायी हैं। हमको उनका संरक्षण करना जरूरी है।
0: हम उनका संरक्षण करेंगे तो हम खुद
1: संरक्षित हो पाएंगे। नहीं तो ये आपदाएं आप देख रहे हैं, ये विभिन्न प्रकार की आप देख रहे हैं, आकस्मिक घटनाएं, बादल का फटना, पृथ्वी का दरकना, तो ये सारी चीजें जो है, फिर हम इसके
0: अभी कुछ दिन से हम लोग देख ही रहे हैं
1: जी।
0: ये समय जो है एक महीने से लगभग जो लगातार चल रहा है, दो दिन
1: जी,
0: चार
1: जी,
0: दिन
1: जी,
0: पे आंधी तूफान बारिश, ऐसा तो कभी नहीं देखा,
1: कभी होता नहीं था।
0: ये क्यों हो रहा है?
1: बिल्कुल
0: उसका
1: उसी
0: कारण वही
1: है जी।
0: अंधाधुंध जंगल कट रहे हैं, फर्राटे भर रही है, हजारों लाखों गाड़ियां रोड पे, प्रदूषण फैला रही है
1: जी जी। और अभी आप एक चीज और भी देखते हैं कि देखिए आप जो वानर राज बंदर है, तो पहले घरों में इतने नहीं दिखा करते थे, और आजकल देखिए क्योंकि उनका प्राकृतिक आवास छिन गया है।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: जंगल ही कट गया भाई, वो कहाँ जाएगा, आपके घर में ही तो आएगा,
1: तो वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये एक चीज हमें ध्यान देने की है, सोचने की है, विचारने की है।
0: बिल्कुल।
1: तो आगे बढ़ते हैं शंकर भाई, और पहले कुछ संदेशों को सुन ले, फिर आगे बढ़ते हैं।
0: जरूर।
3: ¶¶ It's raining offers on the new age Baleno this season. Upgrade to the bold and techie new age Baleno and get amazing benefits, easy finance options and incredible exchange deals. Rush to your nearest Nexa showroom today and take home the new age Baleno with amazing offers and a 1 lakh kilometer or 3-year warranty. TNC apply.
4: Nexa.
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: Akashvani at 90.
1: जी शंकर भाई, अंतराल के बाद एक बार फिर से हमारे सभी श्रोता भाई बहनों का स्वागत है। और शंकर भाई, हम लोग जो है गीत संगीत की दुनिया हमारे जो है मनोरंजन करती ही है, और साथ ही साथ हमें हमारी संस्कृति से जोड़े भी रखती है।
2: बिल्कुल, और देखिए अब इतना ही तक सीमित नहीं है भाई।
1: हाँ हाँ,
2: संगीत हमारा इलाज भी करने
1: लगा। हाँ, बहुत ही अच्छी बात कही आपने। और कई कई जगह पे कई शोधों से ये प्रकट भी होता है कि कई डॉक्टरों चिकित्सकों ने इसे आजमाया भी है कि एक तरफ वे ऑपरेशन कर रहे हैं और वो उसे धीमा संगीत चलाकर, और वहाँ जो मरीज है उसकी बहुत अच्छी तरंगे वो महसूस करता है और उसे दर्द निवारक दवा की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आइए क्यों ना हम लोक संस्कृति से जुड़ी एक अच्छी सी अच्छा सा गीत सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं, पूर्वी सुनते हैं।

0: वाह क्या बात है, बहुत ही मधुर सा ये पूर्वी हम लोगों ने सुना ना, जो वो पिया का इंतजार कर रही है और कौवे की
1: ओ,
0: बोली के अनुसार कि
1: बिल्कुल उसको
0: सगुन अच्छा उचारो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ताकि
1: बिल्कुल
0: हमारे पिया जो है
1: गांव
0: घर
1: घर में
0: आए।
1: कहा जाता है ना कि मुंडेर पे कौवा यदि काग रहा है वो तो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है,
0: संदेशा
1: कोई
0: देता
1: आने
0: रहा है,
1: वाला
0: कोई
1: है
0: आने
1: ना,
0: वाला है।
1: ये भाव इस गीत के
0: जी जी
1: माध्यम
0: जी
1: से।
0: गांव घर में हमारे जो है माहौल जो है और हमारी संस्कृति अजीब बहुत ही खुशनुमा है।
1: हर
0: और
1: जीवों को हर प्राणियों को
0: जी
1: इज्जत,
0: महत्ता दी जाती है।
1: हाँ,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और यही कारण है कि देखिए काग ऐसे पक्षी को
0: हाँ
1: जहाँ
0: हाँ
1: संदेश वाहक बनाया जाता है
0: हाँ
1: वहीं पे जो है जब पिंड दान होता है
0: जी
1: तो वो अन्न जब खाते हैं
0: हाँ
1: तो उनको
0: हाँ
1: माना जाता है कि वो ईश्वर के रूप में है,
0: जी जी जी जी
1: जिनको
0: बिल्कुल
1: प्रदान, यानी कि वो आत्मा जो शरीर छोड़कर चली गई, हाँ, उनको वो जाके मिल जाता है,
0: बिल्कुल
1: यानी
0: बिल्कुल
1: पूर्वजों को प्राप्त
0: क्या
1: होता
0: बात
1: है।
0: है क्या बात
1: तो
0: है।
1: इस तरह से हम लोग देखते हैं।
0: हमारी संस्कृति में हर एक चीज को
1: बिल्कुल
0: उनका एक महत्व दिया गया है।
1: बिल्कुल
0: अब शंकर भाई कुछ मौसम से संबंधी जानकारी हम लोग आगे लेंगे, कुछ खेती गृहस्थी के लिए संदेश हमारे जो है किसान भाई बहन उन्हें जरा आप बताइए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल कमली बहन, तो किसान भाइयों को हम कहना चाहेंगे कि आज के कृषि चर्चा में हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं किसान भाइयों कि मई माह का अंतिम चरण चल रहा है
0: जी
1: और खरीफ फसल यानी कि धान के बीज बोने का समय आ चला है। कुछ ही दिनों बाद रोहिणी नक्षत्र का प्रवेश होने जा रहा है।
0: जी
1: आपको कमली बहन पता होना चाहिए
0: हाँ
1: कि जब
0: हाँ
1: रोहिणी नक्षत्र आता है तो हमारे किसान भाई जो खेत में बीज बोते हैं धान
0: जी
1: का, बोलते हैं कि इस नक्षत्र में बोया गया बीज उपज अच्छा देता है,
0: अच्छा
1: इसकी उपज अच्छी होती है,
0: जी
1: इसलिए रोहिणी नक्षत्र का मैंने जिक्र किया। ये रोहिणी नक्षत्र प्रवेश होने जा रहा है कुछ ही दिनों बाद, इसलिए धान के लंबी अवधि की किस्में जैसे राजेंद्र मंसूरी,
0: जी
1: नाटी मंसूरी, MTU जिनको 7029 के नाम से जानते हैं, बीजों को खेत में बोने के लिए अपने अपने पौधशाला की तैयारी शुरू कर दें।
0: जी
1: जैविक खाद, गोबर, राख आदि इन चीज़ों को मिट्टी में मिलाकर खेत को पूरी तरह से तैयार कर दें
0: जी
1: और बीज गिराने से पूर्व बीजोपचार के लिए कार्बेंडाजिम 50%, WP 2 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से बीज को उपचारित अवश्य करें
0: जी
1: और खेतों की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें तथा खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके धूप लगने के लिए खुला छोड़ दें।
0: जी
1: कहने का मतलब है उस पर चौकी ना, पाटा ना
0: हाँ
1: चलवाएं।
0: हाँ हाँ तो उससे क्या होगा कि जो अंदर में जो
1: हाँ
0: कीड़े मकोड़े हैं वो
1: बिल्कुल,
0: सारे जो हानिकारक कीड़े मकोड़े
1: हाँ,
0: वो तेज धूप से वो नष्ट हो जाएंगे।
1: नष्ट हो जाएंगे और मिट्टी जब पकेगी तो वो हल्की भी हो जाएगी और उपजाऊ हो जाएगी। और बसंतकालीन मक्के की कटाई, सुखाई वो भंडारण समय पर कर लें, क्या बरसात अब आने को है और बीच बीच में वर्षा हो भी रही है, और पालतू पशुओं को पेट के कीड़े से बचाव हेतु उचित दवा अवश्य खिलाएं। और जो किसान भाई तिल की खेती करना चाहते हैं वो यथाशीघ्र अपने खेतों में तिल की बुआई कर लें क्योंकि उसका समय बिल्कुल चल रहा है और अंत अब होने को है, अंतिम चरण में चल रहा है। और जो किसान भाई मूंग शुरू शुरू में बो लिए हैं तो उसमें फली आने लगा, कुछ फली अब सूखने भी लगा यानी पकने भी लगा है,
0: जी
1: तो उसको भी तोड़ने
0: फली
1: का
0: की
1: काम
0: तोड़ाई कर
1: वर्षा
0: लें।
1: से पहले आप कर लें। और तिल की खेती के लिए 4 से 6 किलो प्रति हेक्टेयर बीज का व्यवहार करें और बुआई से पूर्व PSB कल्चर से बीज का उपचार करना ना भूलें।
0: जी बहुत अच्छी
1: और
0: जानकारी।
1: तिल के उन्नत प्रभेदों जैसे सबौर तिल 1, कृष्णा, कांके सफेद, प्रगति प्रभेदों में से कोई भी प्रभेद आप अपने खेतों में लगाकर एवं उचित फल फसल प्रबंधन कर 5 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी
1: और बात आती है मौसम सूचना की कमली बहन, तो मेरी इच्छा है कि यदि आप थोड़ा सा सुना दें
0: बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने
1: तो अच्छा
0: श्रोता भाई
1: रहेगा।
0: बहनों को बताते हैं कि मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3-4 दिनों के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में अगले 2 दिन मौसम शुष्क और उसके बाद फिर जिलों में एक दो स्थान पर गरज और चमक के साथ आंधी और तेज हवा चलने के अनुमान है और हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है। हालांकि अरवल, जहानाबाद, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय जिलों में अगले 2 दिनों तक लू यानी कि जिसे हीट वेव कहते हैं उसको चलने की संभावना है और अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75%, दोपहर में 20 से 25% रहने की संभावना है और इस अवधि में 10 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। लू की स्थिति को देखते हुए फसलों में नमी की कमी, पत्तियों का झुलसना, फूल फल का गिरना और पशुओं में दूध उत्पादन में इसके कारण कम हो सकता है। तो सुबह शाम हल्की सिंचाई करें, मल्चिंग अपनाएं और दिन में उर्वरक या कीटनाशी का छिड़काव नहीं करें और पशुओं को छायादार स्थान में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएं।
1: बिल्कुल
0: जरूरी है ये। और
1: साग सब्जी कुछ,
0: हाँ हाँ, भिंडी में माइट और फल तना छेदक और कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के प्रकोप की नियमित निगरानी करने की सलाह दी जाती है। माइट का प्रकोप दिखाई देने पर एथियान 1.5 से 2 मिलीलीटर पानी का छिड़काव करें। भिंडी में फल और तना छेदक के प्रबंधन के लिए मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर, डाइमेथोएट 30 EC 1.5 मिलीलीटर पानी का छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय फसलों में फल मक्खी के नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट 30 EC प्रति 2 मिलीलीटर 10 ग्राम चीनी प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर दें। आम के बगानों में कीट प्रकोप की नियमित निगरानी करते रहने की सलाह दी जाती है। यदि रेड बेंडेड कैटरपिलर का प्रकोप दिखाई दे तो तुरंत इमामेक्टिन बेंजोएट प्रति 2 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी या लेमडा साइलेहेलोथ्रिन प्रति 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव कर दें। बागानों में पर्याप्त और निरंतर नमी बनाए रखने की भी सलाह दी जाती है। लीची की तुड़ाई फलों की परिपक्वता के आधार पर करने की सलाह दी जाती है। शाही किस्म में तुड़ाई निकट होने के कारण किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं करने की सलाह दी जाती है, यानी तोड़ना है तो छिड़काव किसी तरह का नहीं करना है।
1: बिल्कुल।
0: चाइना किस्म में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए लेमडा साइहेलोथ्रीन प्रति 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है और साथ ही ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए खनिज मिश्रण 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन दें और दूध देने वाले पशुओं को खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध की दर से दें। गाय को 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के हिसाब से और भैंस का 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन की दर से दें और हरा चारा 20 से 25 किलोग्राम प्रति पशु जरूर खिलाएं। ये बहुत जरूरी है और ये सब कुछ सलाह हैं और ये फसलों में नमी की कमी या फूल का झड़ना ये देखें तो हमें नमी का जो है वो बनाए रखें।
1: चलिए, मौसम सूचना आपने दे दी और हम अपने किसान भाइयों से आज कुछ ऐसी बातें करना चाहेंगे कि देखिए कुछ ऐसे फसल हैं जो हम सालों भर लगा सकते हैं और उससे फसल प्राप्त कर सकते हैं, जैसे केला, पपीता है ना
0: जी।
1: हम अपने बागवानी में 2-4 पौधा यदि लगा लें, पपीते का और केले का,
0: अमरूद भी जी ना,
1: अमरूद भी साल में
0: दो बार फल दिया करता है,
1: तो इससे हम तो तृप्त होंगे ही, हमारा परिवार तो उसको खाएगा ही, हम उससे तो पौष्टिक आहार प्राप्त करेंगे ही। अधिकता यदि हो जाए तो थोड़ा बेच के मुनाफा भी कमा सकते हैं।
0: ये भी बात है कि ये इनको इनके उत्पादन के लिए लेने के लिए हमें बहुत वर्षों इंतजार नहीं करना पड़ता। ये एक वर्षीय फसल है।
1: बिल्कुल।
0: आपने केला लगाया और फिर कुछ दिनों बाद उसका फल तैयार हो जाता है। पपीते में भी यही बात है।
1: पपीते का आप एक बार पौधा लगा दें, सालों भर आप खाते रहें।
0: और साथ ही एक बात और भी, आपको ये भी पता है शंकर भाई, पपीता पेट के लिए रामबाण इलाज है। आप ये देखिए कि जिनकी लीवर काम का मतलब थोड़ा कमजोर है या किसी तरह का उनमें समस्या है, तो हमारे चिकित्सक भाई हमें सलाह देते हैं कि कच्चे पपीते का या पक्के पपीते का सेवन कर, ये तो दोनों तरह से उपयोग में लाया जा सकता है।
1: कहा ही गया है कि पेट सफा तो हर रोग दफा,
0: जी
1: यानी तो, जब आपका आंत ही सही हो गया हाँ, तो फिर रोग कहां से उत्पन्न होगा।
0: तो आप देखिए कि कच्चे पपीते का आप और मतलब उसके सब्जी बना के खाएं, उसके रायता रतुआ ये सब भी बना के खाया जा सकता है, और साथ ही उसके कच्चे पपीते का अगर आप रस का भी दूध निकाल कर भी अगर दिया जाए तो लीवर में बहुत अच्छा उपाय करता है, है ना। और अब आगे बढ़ने से पहले शंकर भाई कुछ संदेशों को सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल।
2: Some cars are designed to blend in, others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design, already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just Rs. 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now. Nexa.

0: AIR at 90.
1: जी
2: तो जरूरी संदेशों के बाद
1: एक बार फिर से स्वागत है।
2: और हम लोग एक आज कहानी सुनते हैं।
1: जी, कहानी तो अपने आप में बहुत कुछ कहती है।
2: हाँ,
1: और बहुत सारे संदेशों को भी देती है। तो
2: बिल्कुल,
1: आइए सुनते
2: बिल्कुल,
1: हैं एक अच्छी सी
2: कहानी। बहुत सारी चीजों को अपने अंदर समेट के रखती है कमला बहन, है ना।
1: और कहानी से उसमें तो कुछ संदेश होता ही है। कहानीकार की जो भाषा होती है, उसका जो लहजा होता है, वो भी अपने आप में कुछ कहता है।
2: बिल्कुल,
1: तो आइए सुनते हैं।
3: अश्विन मास का पहला सप्ताह था। दिन भर धूप रहती थी। देर रात कुछ ठंडक का एहसास होता था। धान के हरे भरे पौधे खेतों की सुंदरता बढ़ा रहे थे। कम अवधि वाले धान की किस्मों में कहीं कहीं बालियां भी निकलने लगी थी। समरेश दशहरे की छुट्टी में शहर से गांव आया था। काफी लंबे अरसे के बाद वह गांव आया था। उसके मन में हुआ कि कुछ देर अपने खेतों की ओर घूम लिया जाए। सूर्य अब डूबने को था। चारवाहे अपने अपने पशुओं को लेकर घरों की ओर लौट रहे थे। कुल मिलाकर गांव में चहल पहल का वातावरण था। ऐसा वातावरण समरेश को काफी मनमोहक लग रहा था। समरेश गांव के ही विश्वनाथ बाबू का इकलौता पुत्र था। वह शुरू से ही पढ़ने लिखने में काफी तेज था। विश्वनाथ बाबू भी सिंचाई विभाग में एक अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने समरेश को अच्छी शिक्षा दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। समरेश की मेहनत का ही परिणाम था कि पहली बार ही प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेकर उसने बैंक में असिस्टेंट मैनेजर पद का हासिल कर लिया। फिलहाल उसकी पोस्टिंग गांव से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक शहर में हुई थी। दशहरे की छुट्टी में वह कल ही घर आया था। गांव की सुंदरता को देखते हुए वह धीमी धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। अचानक उसने देखा सभी लोग पश्चिम टोले की तरफ जा रहे थे। समरेश को काफी आश्चर्य हुआ, जानने की भी उत्सुकता हुई, लेकिन पूछने पर कोई कुछ बता भी नहीं रहा था। इसी बीच उसका एक पुराना मित्र सुभाष मिल गया। सुभाष को समरेश ने बड़े प्रेम से गले लगाया। सुभाष भी समरेश से मिलकर काफी प्रसन्न हुआ। सुभाष से पूछने पर उसने बताया कि पश्चिम टोले के हरिप्रसाद को पुलिस पकड़ कर ले गई। यह सुनते ही समरेश को काफी दुख हुआ। हरिप्रसाद को वह बचपन से ही जानता था। उसके पिताजी भी उन्हें काफी मानते थे। हरिप्रसाद थे तो काफी गरीब, लेकिन अपने परिश्रम के बल पर वह अपने परिवार की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे थे। पुलिस ने उन्हें किस मामले में गिरफ्तार किया, यह पूछने पर सुभाष ने बताया कि यह गांव के ही विक्रम का किया धरा है। उसने बताया कि विक्रम गांव का बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है। कुछ असामाजिक तत्वों के साथ भी उसकी संगति है। कई बार वह जेल की हवा खा चुका है। लूटपाट कर उसने कम ही दिनों में काफी संपत्ति अर्जित कर चुका है। गांव वालों के पत्नी के साथ भी उसने छेड़खानी की थी। इसी बीच हरिप्रसाद वहां पहुंच गया। विरोध करने पर वह हरिप्रसाद से ही भिड़ गया। हरिप्रसाद उसके मामले में अधिक ताकतवर था। उसने विक्रम को पटक कर उसकी खूब धुनाई की। इसी बीच गांव के कुछ लोग वहां आ गए। बीच बचाव कर लोगों ने दोनों को अलग किया। मार खाकर विक्रम जब वहां से जाने लगा तो उसने हरिप्रसाद को सबक सिखाने की धमकी दी। हरिप्रसाद फिर उसे पकड़ने के लिए झपटे तो वहां खड़े लोगों ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद से विक्रम हमेशा हरिप्रसाद को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहने लगा। इसी बीच उस क्षेत्र के थाने में एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी

में एक कपड़े की दुकान में चोरी हुई। उस पुलिस अधिकारी ने हरि प्रसाद को चोरी के मामले में फंसा दिया। पुलिस आई और उन्हें अपने साथ ले गई। यह जानकर समरेश को काफी दुख हुआ। वह सुहास से विदा लेकर खेत की तरफ बढ़ गया। आगे जाकर उसने देखा कि पुलिस हरि प्रसाद को लेकर जा रही थी। समरेश को देखकर वे फूट फूट कर रोने लगे। समरेश ने कहा, हरि भैया धीरज रखिए, आप जल्द ही छूट जाएंगे। पुलिस हरि प्रसाद को लेकर आगे बढ़ गई। समरेश कुछ देर तक खेतों की ओर टहलने के बाद घर आया। हरि प्रसाद की गिरफ्तारी की खबर समरेश के पिता विश्वनाथ बाबू को भी लग चुकी थी। यह जानकर उन्हें भी दुख के साथ साथ गुस्सा भी आ रहा था। समरेश ने इस संबंध में अपने पिता के साथ विस्तार से चर्चा की। उसने कहा कि यदि गांव के सभी लोग किनारा कर लेंगे तो विक्रम जैसे अपराधियों का मनोबल और बढ़ेगा। विश्वनाथ बाबू ने गांव के अपने बुजुर्ग मित्रों को बुलाया और सलाह मशवरा किया। इसी बीच हरि प्रसाद की पत्नी अपने दोनों बच्चों के साथ वहां पहुंच गई और फूट फूट कर रोने लगी। विश्वनाथ बाबू ने उन्हें धीरज बंधाया और आश्वासन दिया कि हरि प्रसाद सकुशल वापस लौट आएंगे। अगले दिन हरि प्रसाद को जेल भेज दिया गया। एक दिन बाद ही विश्वनाथ बाबू अपने कुछ मित्रों के साथ कचहरी गए। एक वरिष्ठ वकील से उन्होंने हरि प्रसाद के केस की पैरवी कराई। अगले ही दिन हरि प्रसाद जमानत पर छूटकर

को जेल भेज दिया गया। एक दिन बाद ही विश्वनाथ बाबू अपने कुछ मित्रों के साथ कचहरी गए। एक वरिष्ठ वकील से उन्होंने हरिप्रसाद के केस की पैरवी कराई। अगले ही दिन हरिप्रसाद जमानत पर छूटकर

0: जी रामू भाई, शंकर भाई, और बहुत ही अच्छी सा हम लोगों ने पूर्वी संगीत सुना। और शंकर भाई, इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में फिर से ढेर सारी बातों और जानकारियों के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए विदा दे सबको कमली का नमस्कार।
1: हाँ, सबों को शंकर का भी नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत खेती गृहस्थी। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, संध्या के 7 बजने को है। थोड़ी देर में हमारे रांची केंद्र से प्रसारित होंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची होगी प्रकाशित। झारखंड समावेशी आजीविका योजना से अति गरीब परिवारों को मिलेगा सशक्तिकरण। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, राज्य का समावेशी विकास मॉडल बना राष्ट्रीय उदाहरण। जेटेट की क्षेत्रीय भाषा सूची में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को शामिल करने के मुद्दे पर उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लंबी चर्चा, नहीं बन सकी सहमति। राज्य की खराब बिजली व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जताई चिंता। हजारीबाग में लंबे शटडाउन के विरोध में बिजली कार्यालय पहुंचे विधायक। और जापान में आयोजित होने वाले महिला अंडर 18 एशिया कप के लिए घोषित भारतीय हॉकी टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ियों का हुआ चयन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बैठक की। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त 2026 को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के साथ एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ एवं डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भी जारी की जाएगी, जिसे सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 23 मई से 2 सप्ताह तक अनमैप्ड मतदाताओं की सूची सभी मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित की जाएगी और संबंधित मतदाता बीएलओ से संपर्क कर मैपिंग करा सकते हैं।
1: वर्तमान 2024 का मतदाता सूची में जिनकी मतदाता का नाम है उनका SAR तथा 2003 का मतदाता सूची का नाम से मैपिंग करना एक महत्वपूर्ण विषय है। SAR प्रोसेस में कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट उनका डिक्लेरेशन फॉर्म का साथ में देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। झारखंड में अभी तक लगभग 75% मतदाता का मैपिंग हो गया। सभी अनमैप्ड मतदाता का सूची 23 तारीख से सभी झारखंड में सभी बूथों पर वो प्रकाशित होगा। किसी का नाम अनमैप्ड होगा तो तुरंत आपको DLO से संपर्क करते हुए उनका नाम का मैप करेंगे सुनिश्चित करें।
0: ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि राज्य में अति गरीब एवं वंचित परिवारों के सशक्तिकरण के लिए झारखंड समावेशी आजीविका योजना की शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि झारखंड का समावेशी विकास मॉडल अब पूरे देश के लिए उदाहरण बन चुका है और भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने का निर्णय लिया है। योजना के तहत अगले चरणों में राज्य के हजारों अति गरीब परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल करने के

0: मुद्दे पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। इस मामले को लेकर आज हुई 5 मंत्रियों की हाई लेवल कमेटी की बैठक में फैसला नहीं हो सका है। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं के मौजूदा भाषा पैटर्न, विशेषकर पार्ट 2 के नियमों पर गंभीर चर्चा हुई। अब इस पूरे भाषाई विवाद पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले पर निर्भर माना जा रहा है। झारखंड में उच्च शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने को लेकर आयोजित 2 दिवसीय कुलपति सम्मेलन में शोध, रोजगार उन्मुखी शिक्षा, तकनीकी बदलाव और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान शिक्षा विभाग के सचिव राहुल पुरवार ने कहा कि स्टूडेंट्स के लिए राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके।
1: राजकीय विश्वविद्यालय विधेयक पास हुआ है, उसको आगे इम्प्लीमेंट करना है अपने अपने विश्वविद्यालयों में। राज्य सरकार की वेलफेयर की स्कीम्स हैं जो हमारे छात्रों के लिए हैं, उन सब के बारे में बताना है, सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी क्षमता वृद्धि हो सके, वो कम्पीट कर सके देश के अन्य अच्छे कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों के कंपेरिजन में।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रांची में इस्कॉन द्वारा आयोजित श्री कृष्ण उत्सव में शामिल हुए और कीर्तन श्रवण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस्कॉन से उनका गहरा जुड़ाव रहा है और संस्था समाज हित में सराहनीय कार्य कर रही है। राज्यपाल ने इस्कॉन से जनजातीय समाज को भी अधिक से अधिक जोड़कर उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ऊर्जा विभाग को पत्र लिखकर राज्य की खराब बिजली व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी के बीच जनता अनियमित बिजली आपूर्ति, लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर खराब होने की समस्या से परेशान है तथा सरकार से तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है। इधर हजारीबाग में 10 घंटे से अधिक बिजली कटौती से नाराज हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि लगातार बिजली कटने से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
2: शटडाउन का जो इनका टाइम पीरियड रहता है, उन्होंने सिर्फ 1 से 1.5 घंटा 24 घंटा में शटडाउन लेने का बात कहे हैं कि 22 घंटा हम लोग बिजली देंगे। कहीं कहीं मेंटेनेंस के नाम पे बहुत सारा कमियां है, पेड़ उड़ का उसको भी ध्यान में देने को कहा गया है। तो हर तरह का आश्वासन नहीं मिला है, नहीं तो रोज हम आएंगे। अगर रात में आज लाइट कटेगा तो हम DM साहब के घर में हम जाने वाले हैं, ये भी बता दे रहे हैं। जब लाइट कटेगा उनके घर के बाहर बैठा मिलेंगे, उनको ये भी बोल के आया।
0: जमशेदपुर में पर्वत और नदी संरक्षण विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर के पर्यावरणविद, जल विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कहा कि पर्वत भारत की पहली आधारभूत संरचना है और इनके बिना नदियों तथा पर्यावरण का अस्तित्व संभव नहीं है।
3: आज का दिन जैव विविधता दिवस है। पहाड़ और नदियाँ दोनों जैव विविधता का स्रोत है। जलीय जीवों की रक्षा नदियाँ करती हैं और पहाड़ों पर अन्य जीवों की रक्षा पहाड़ करते हैं। और आज तक नदियों की सुरक्षा संरक्षण के लिए कोई कानून नहीं है, पहाड़ों के सुरक्षा संरक्षण के लिए कोई कानून नहीं है। तो ये सम्मेलन आज उसी कानून बनाने के प्रारूप पर विचार करेगा।
0: हीट वेव को देखते हुए रांची सदर अस्पताल में विशेष हीट स्ट्रोक वार्ड बनाया गया है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर विमलेश कुमार सिंह ने कहा कि फिलहाल हीट स्ट्रोक के मामले कम हैं, लेकिन अस्पताल पूरी तरह तैयार है।
4: कल थोड़ा टेम्परेचर निश्चित रूप से ज्यादा था, अभी जो देख रहे हैं उसमें हीट स्ट्रोक वाली संख्या काफी कम है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जहां तक तैयारी की बात है, उससे संबंधित जो भी जिस चीज की जरूरत है वो सारी व्यवस्था सदर अस्पताल में कर दी गई, इसलिए मरीजों को किसी भी तरह का हीट स्ट्रोक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
0: और अब मौसम का हाल। मौसम केंद्र रांची ने पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, कोडरमा और सरायकेला खरसावां जिलों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 से 3 घंटों

0: के भीतर इन क्षेत्रों में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात और बारिश होने की संभावना है। साथ ही 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। रांची के धुरवा स्थित बंगिया सांस्कृतिक परिषद विद्यालय में 15 दिवसीय रांची जिला ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। शिविर में मलखंभ, योग, खो खो, कबड्डी, आत्यापात्य और बैडमिंटन के बेसिक कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जापान में होने वाले महिला अंडर 18 एशिया कप के लिए घोषित भारतीय हॉकी टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। हॉकी झारखंड ने इसे राज्य की हॉकी परंपरा और सरकारी प्रशिक्षण व्यवस्था की बड़ी उपलब्धि बताया है। गौरतलब है कि भारत अपना पहला मुकाबला 30 मई को मलेशिया के खिलाफ खेलेगा, जबकि टूर्नामेंट 29 मई से 6 जून तक जापान में आयोजित होगा। नोएडा में आयोजित 11वीं नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ी रुद्रांश शर्मा ने स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रुद्रांश को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची होगी प्रकाशित। झारखंड समावेशी आजीविका योजना से अति गरीब परिवारों को मिलेगा सशक्तिकरण। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, राज्य का समावेशी विकास मॉडल बना राष्ट्रीय उदाहरण। जेटेट की क्षेत्रीय भाषा सूची में भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को शामिल करने के मुद्दे पर उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लंबी चर्चा, नहीं बन सकी सहमति। राज्य की खराब बिजली व्यवस्था पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जताई चिंता। हजारीबाग में लंबे शटडाउन के विरोध में बिजली कार्यालय पहुंचे विधायक। और जापान में आयोजित होने वाले महिला अंडर 18 एशिया कप के लिए घोषित भारतीय हॉकी टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ियों का हुआ चयन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। संध्या के 7:12 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य। आज के कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर अजय कुमार घोष से वार्ता। वार्ता का विषय है सुरक्षित प्रसव एवं नवजात की देखभाल। प्रस्तुत करता है
2: भारत की जनसंख्या का 40% 14 साल से कम के बच्चों का है। उनमें हर 100 बच्चों में से लगभग 12 बच्चे असल में 5 साल से कम उम्र के हैं। करीब 40% भारतीय बच्चों की वृद्धि ठीक नहीं होती है और वह कुपोषित रहते हैं। तो इसी पर और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अजय कुमार घोष, जो कि सेवानिवृत्त ACMO हैं, असिस्टेंट चीफ मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, और वह एक पेडियाट्रिशियन है यानी कि शिशु रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: पहला प्रश्न तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि शिशु के प्रसव में यानी कि डिलीवरी में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
3: मेरा सुझाव होगा या मेरा समूह से आग्रह होगा कि हमें संस्थागत प्रसव पर जोर देना चाहिए। अधिकतर देखा गया है, अभी भी अधिकतर बच्चे घर में जन्म लेते हैं जहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं होती है। स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के अभाव में लोग जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो नहीं ले पाते हैं, जिसके चलते बच्चे के प्रसव में असुविधा होती है, बच्चे में बीमारी आती है, विकलांग हो जाते हैं और बच्चों का डेथ भी हो जाता है। हमारा सबों से अनुरोध होता है कि बच्चों का प्रसव संस्था में होना चाहिए, संस्थागत होना चाहिए
2: जी।
3: वहाँ हर तरह की सुविधा है। संस्थागत प्रसव में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चे में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो, बच्चा अगर समय पर नहीं रोए तो उसको रिससिटेट करने की क्या व्यवस्था है। हमारे हर संस्थागत प्रसव में हॉस्पिटल सेटअप में कॉर्नर होता है, इसको रेडियंट कॉर्नर का वार्म कॉर्नर कहते हैं, जहाँ पर कि बच्चे को कॉम्प्लिकेशन होने के बाद वहाँ रखकर उसका इलाज किया जाता है। संस्थागत प्रसव में डॉक्टर के देखरेख में कुशल नर्सों के द्वारा प्रसव कराया जाता है। बच्चा अगर समय पर नहीं रोया तो उसे कॉर्नर में ले जा करके रेडियंट बार्बर के पास ले जा करके हम लोग रीसस्टेट करते हैं ताकि वो समय पर रो सके।
2: हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि स्वस्थ शिशु को अस्पताल में प्रसव के बाद कितने दिनों तक रखा जा सकता है?
3: अस्पताल में प्रसव के बाद बच्चे को 48 से 72 घंटे तक रखा जाना चाहिए।
2: अगर उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो?
3: अगर कॉम्प्लिकेशन हो, जब तक उसका निदान नहीं होता तब तक तो हम नहीं छोड़ते हैं, लेकिन 48 से 72 घंटा रखने का एक ही मकसद होता है कि बच्चा माँ का दूध पीने लायक हो जाए, ब्रेस्ट फीडिंग कर सके। बच्चे में अगर कोई बीमारी हो जैसे जॉन्डिस वगैरह जो 2 दिन के बाद अपीयर होता है, अगर वो उसके लक्षण दिखाई पड़े तो बच्चे को हम रख सकें। और 72 घंटे तक बच्चा अगर स्वस्थ है तो उसे कुछ निर्देश के साथ हम अस्पताल से छुट्टी देते हैं।
2: श्रोता जानना चाहेंगे कि वो निर्देश क्या क्या होते हैं।
3: पहला तो हम लोग ये बताते हैं कि बच्चे को आप 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध दीजिए। माँ का दूध ही बच्चे का सर्वोत्तम दूध है, वही दूध को 6 माह तक मिलना चाहिए। दूसरा सलाह होता है कि बच्चे को अनावश्यक मालिश सेक साक नहीं करें। बच्चे को ठंड से बचाने के लिए उसको प्रॉपर परिधान पहनाना आवश्यक कहते हैं। 3 लेयर में कपड़ा पहनाने कहते हैं कि 3 लेयर में कपड़ा पहनाइए, माँ का दूध पिलाइए और समय पर टीकाकरण करवाइए। टीकाकरण का जो शेड्यूल है उसको फॉलो करें। एक विटामिन डी का ड्रॉप आता है 400 mg वाला, वो 1 ml प्रतिदिन एक साल तक दें। और बच्चे को में क्या क्या डेंजर साइन आप देखें कि तुरंत अस्पताल लाएं, उनके बारे में बताया जाता है कि ये डेंजर साइन है।
2: जी, बच्चे सामान्य हैं या असामान्य, एबनॉर्मल या नॉर्मल, तो इसका आकलन आप कैसे करते हैं?
3: बच्चा जब घर में आता है तो कुछ माइलस्टोन्स होते हैं जिन पर हम निगाह रखते हैं। जैसे बच्चा जन्म के बाद अपना हाथ पांव चलाता है, लाइट सामने में लाने पर सर को घुमाता है। बच्चे को जब यदि पेट के बल लेटा देते हैं तो वो सर को उठा लेता है। 5 महीने में वो करवट ले लेता है। 6 महीने में पकड़ कर बैठाने पर बैठने लगता है। 7 महीने में खुद ही बैठता है। 8 महीने में वो खिसकने लगता है, क्रीप एंड क्रॉल करता है। और 10 महीने में वो मामा बाबा टाटा करने लगता है। 1 साल में पकड़ के खड़ा होता है। 15 महीने में चलने लगता है। अगर इसमें कोई चीज डिले होता है, बच्चा करवट नहीं ले रहा है, बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, बच्चा स्माइल नहीं कर रहा है, बच्चा लाइट को देख कर सर नहीं घुमा रहा है, तो हमको समझ में आता है कि कुछ इसमें कमी है।
2: जी,
3: ये कमी को डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम जान पाते हैं कि बच्चा मेंटल रिटार्डेशन की ओर जा रहा है या इसमें क्या खामी हो रहा है, उसको देख करके समुचित इलाज के लिए समय पर हम भेज सकते हैं।
2: कभी कभी समस्या ये भी आती है, खासकर माताओं के साथ जब शिशु का जन्म होता है तो वो समान तौर पे वो स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाती है, तो इस स्थिति में क्या किया जा सकता है?
3: ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि बच्चों के लिए 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाए। तो पहले तो हम लोग माँ को शिक्षित करते हैं कि स्तनपान आप कैसे कराइए। स्तनपान के लिए बच्चे को उक्त ढंग से पकड़ा जाए, उसका ब्रेस्ट के साथ अटैचमेंट कैसा हो ये बताते हैं, फिर माँ का खान पान कैसा हो। अगर इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए तो प्रायः स्तनपान की समस्या नहीं रहती है। लेकिन किसी कारणवश अगर स्तनपान नहीं हो पा रहा है तो बच्चे को हम लोग बाहर का दूध देते हैं, ऊपरी दूध देते हैं। बाहर के दूध में बहुत सारे मिल्क पाउडर आए हैं जो कि जिनका कंपोजिशन ऑलमोस्ट मदर्स मिल्क की तरह बनाया गया है, लेकिन ये तभी दिया जाता है जब माँ का दूध असंभव नहीं हो रहा है। उन दूधों को बनाने का तरीका है, उन दूधों को जो फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ द्वारा दूध बनाई गई हैं उनको बनाने का तरीका है। तरीका में 1 औंस पानी में 1 चम्मच दूध घोलते हैं, कटोरा में दूध तैयार करते हैं और चम्मच से पिलाते हैं। कभी भी बॉटल फीडिंग नहीं करवाते हैं। बच्चे को जब भी फीड करवाते हैं इसको कंधे में थपथपाकर ढकार दिलवाया जाता है और दाहिने करोड़ सुला दिया जाता है। तो माँ के दूध नहीं होने की कंडीशन में बच्चे को पाउडर का दूध दिया जाता है।
2: अगला प्रश्न हमारा आपसे ये होगा कि शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं?
3: सबसे पहला जो है वो है कि उनका टीकाकरण समय पर हो।
2: कितने दिनों के बाद शिशु को लगता है पहला टीका?
3: जन्म के बाद ही बच्चे को हम टीका देते हैं। वो 3 तरह का टीका है। जन्म के 48 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है, ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है और साथ ही उसे बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ये सभी टीके संस्थागत प्रसव के दौरान अस्पताल में ही दिए जाते हैं
2: जी,
3: और साथ ही एक विटामिन के की सुई दी जाती है। ये सभी चीज़ें बच्चे को अस्पताल में जहाँ संस्थागत प्रसव हुआ है छुट्टी देने के पहले दे दी जाती है।
2: क्या ये सब सुविधा हमारे सरकारी अस्पताल में मौजूद हैं?
3: हाँ, एकदम मौजूद हैं
2: जी।
3: और हम ये बताना चाहेंगे कि टीकाकरण का एक शेड्यूल होता है, ये तो जन्म के बाद का था, डेढ़ महीने के बाद, अढ़ाई महीने के बाद, साढ़े तीन महीने के बाद हम 6-7 तरह के टीका देते हैं बच्चों को। उसमें पोलियो है, डीपीटी है, पोलियो, डीपीटी, हुपिंग पर्टुसिस की टीके हैं
2: जी,
3: हेपेटाइटिस बी के टीके हैं, इन निमोनिया के टीके हैं, रोटा वायरस का टीका है। ये 7 तरह के टीके बच्चे को एक एक माह के अंतराल पर डेढ़ महीने के बाद दिए जाते हैं। इससे बच्चों का 7 तरह के जो बीमारियां हैं उनसे बचाव होता है।
2: शिशुओं में कौन सी बीमारियां अधिक देखने को मिलती है? अक्सर तो देखा गया है कि जॉन्डिस भी हो जाता है उनको।
3: बच्चों में एक तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है जो जन्म के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर 10वां दिन खत्म हो जाता है
2: जी।
3: इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, ये लीवर की कमजोरी के चलते होता है जो मैच्योरिटी पाके 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है। इसमें हमें कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ बच्चे को आधे घंटे तक धूप दिखाना पड़ता है। लेकिन जो दूसरा जॉन्डिस है जो यूजुअली हेपेटाइटिस ए के चलते होता है, ये खान पान के दोष, दूषित पानी का व्यवहार, इसके चलते होता है। तो इस पर जो जॉन्डिस का प्रिकॉशन में वो लेते हैं, क्या खाना है नहीं खाना है इसकी व्यवस्था करते हैं। बच्चे को हम लोग कहते हैं कि तुम तेल, घी, मिर्च मसाला मत खाओ, दूध भात चीनी, दही भात चीनी, फल फल का रस, मार भात आलू चोखा, ये खाने की सलाह देते हैं। लीवर को जितने अच्छे मात्रा में ग्लूकोज मिलेगा वो जल्दी हील होगा, और जितना वसा युक्त सामान का हम ये प्रिकॉशन लेंगे, नहीं देंगे, उसके लीवर में स्ट्रेन कम पड़ेगा, बच्चा जल्दी स्वस्थ हो जाएगा।
2: जॉन्डिस के अलावा और कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिलती है
3: इन दिनों? तो काफ़ी कॉमन है सर्दी जुकाम की बीमारियां। अधिकतर बच्चों में देखिएगा कि जो शिशु के उम्र के बच्चे भी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो सर्दी जुकाम, पसली फेंकने का शिकायत, ये प्रायः लगा रहता है और ये वायरल होता है।
2: इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
3: मेनली वायरल ही है। वायरल फीवर में मौसम में जिसमें ये सीजन में ये लोड वायरस का बढ़ जाता है, प्रायः बच्चों को वायरस इन्फेक्शन के चलते सर्दी जुकाम हो जाता है, निमोनिया की शिकायत हो जाती है, पसली फेंकने लगता है, तेज बुखार आ जाता है।
2: आजकल ये देखा गया है बच्चों में, खासकर गर्मी के मौसम में, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण की भी समस्या हो जाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
3: शिशुओं में तो ये उतना कम मिलता है। शिशु जो माँ का दूध पी रहा है, माँ के दूध में तो 80% वाटर ही है। अगर बच्चे को फ्रीक्वेंट माँ का दूध मिलता रहे छोटे बच्चों में, तो उनको इसकी शिकायत नहीं होती है। शिकायत तब होती है जबकि उन्हें दस्त की शिकायत हो जाए और पानी काफ़ी निकलने लगे देह से
2: जी,
3: तो पानी निकलेगा अधिक तो निर्जलीकरण हो ही जाएगा। और ये जो पानी निकलता है या जो डायरिया होता है, ये जनरली वायरल इन्फेक्शन से ये भी होता है, इसको रोटा वायरस कहते हैं। तो इस पर इलाज प्रथमतः तो हम लोग सिर्फ ORS का घोल पिला के करते हैं। ORS का घोल नमक, पानी और ऑल मिनरल्स के घोल है, जो सामान्यतः जो छोटे सैचेट आते हैं 200 ml के ग्लास में पानी, ग्लास पानी में एक सैचेट मिलाया जाता है और उसे घूंट घूंट कर पिलाया जाता है बच्चों को।
2: बच्चों में एक और बीमारी देखने को मिलती है, वो है निमोनिया। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए।
3: निमोनिया का तो हुआ कि श्वसन तंत्र का संक्रमण हुआ, फेफड़े का संक्रमण हुआ, इसमें फेफड़ा काम नहीं करता है, कफ बैठ जाता है, निमोनिक हो जाता है। तो वैसे कंडीशन में पता लगाते हैं कि किस कारण से हुआ है, रक्त जांच, छाती का फोटो, बलगम की जांच की जाती है और जो कारण है उसका इलाज किया जाता है
2: जी।
3: अगर ये बैक्टीरियल है तो हम लोग जांच करवाते हैं खून का, अगर मिलता है कि सिम्टम्स हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो जो कॉमन बैक्टीरिया प्रेजेंट है सांस की नली में वो जो सेंसिटिव जिस दवा से है, बगैर ब्लड कल्चर किए हुए हम लोग वो एम्पिसिलिन का इंजेक्शन लगाते हैं या गोली या सिरप खिलाते हैं।
2: चिकन पॉक्स छोटी माता भी एक वायरस है जो कि बच्चों में आमतौर पे आ जाता है, तो इसके बारे में आप बताइए।
3: बहुत सारी बीमारियां हैं जो वैक्सीन से प्रिवेंट की जाती हैं, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ कहलाती हैं, और जिनमें रैशेस निकलता है वायरस इन्फेक्शन के चलते, उसमें 3-4 बीमारियां हैं तो रैशेस निकलता है।
1: हमारा स्वास्थ्य इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अजय कुमार घोष से वार्ता।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। राजस्व कार्यों की अब प्रतिदिन होगी समीक्षा। 25 मई से 11 जून तक सभी जिलों का मॉनिटरिंग करेगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। राज्य में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर के अधिकारियों का तबादला। दीपक कुमार सिंह को राज्यपाल का प्रधान सचिव बनाया गया। और मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान बांका, जमुई, लखीसराय, नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिले के विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवनियुक्त युवाओं को संबोधित भी करेंगे। रोजगार मेला देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत रेल, गृह, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवा और उच्च शिक्षा समेत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों में चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आगामी 25 मई से राज्य के सभी जिलों में राजस्व कार्यों की प्रतिदिन समीक्षा शुरू करेगा। अभियान की शुरुआत पश्चिम चंपारण, सहरसा और वैशाली जिले से होगी। 11 जून तक चलने वाली समीक्षा बैठक की मॉनिटरिंग विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे। बैठकें शाम 4 बजे से 7 बजे के बीच 3 पालियों में आयोजित होंगी। इस दौरान ऑनलाइन दाखिल खारिज के लंबित मामलों, परिमार्जन प्लस के तहत डिजिटल जमाबंदी के शुद्धिकरण, ई मापी और सरकारी भूमि सत्यापन की प्रगति की जांच की जाएगी। इसके अलावा लोक भूमि अतिक्रमण से जुड़े मामलों में कार्रवाई, जन शिकायत पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निष्पादन, सहयोग शिविरों में मिले आवेदनों और फार्मर रजिस्ट्री अभियान की स्थिति की भी समीक्षा होगी। बिहार को स्किल हब बनाने की दिशा में आज पटना में उद्योगों के साथ सहभागिता सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। युवा, रोजगार और कौशल विकास विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद और सचिव डॉ. कौशल किशोर ने सम्मेलन का उद्घाटन संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप कुशल और सक्षम बनाने के लिए लगातार काम कर रही है।
1: पीएम सेतु योजना, उसके तहत 75 ITI को क्लस्टर में बांटकर उसको उन्नत करना है और उद्योग और उद्योग समूह के साथ बैठकर इस पर चर्चा की जाए कि हम किस प्रकार से, किस तकनीक से उसको करें, कैसे करें ताकि वो रोजगार से सीधे जुड़ सके। तभी आदरणीय सम्राट चौधरी और बिहार की सरकार ने जो संकल्प लिया है कि 1 करोड़ युवाओं को हम 25 से 30 में रोजगार देंगे तो उसमें एक ठोस पहल हो सकेगी।
0: राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका दीदियों को मिल रही सहायता राशि की अगली किस्त की घोषणा की है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसी महीने लाभार्थी महिलाओं के खाते में 20,000 रुपये की सहायता राशि भेजी जाएगी। श्री कुमार ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
2: महिलाओं को 10,000 रुपया रोजगार करने के लिए दिया गया, रोजगार भी उन लोगों ने शुरू किया। और जहां तक 2 लाख देने का सवाल है,

0: उसकी प्रक्रिया चल रही है और ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी महीने में उनको 2-2 लाख रुपया का जो सेकंड राशि, वो सेकंड राशि उनको भुगतान किया जाएगा और पहला किस्त गया तो दूसरा किस्त भी जाएगा 20,000 रुपए का, तीसरा किस्त जाएगा 40,000 रुपए का और चौथा किस्त जाएगा 60,000 का और पांचवा किस्त जाएगा 80,000 का, यानी 5 किस्तों में 2,10,000 रुपया।
1: राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार दीपक कुमार सिंह को राज्यपाल का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है, कुंदन कुमार को गृह विभाग का सचिव बनाया गया है, जबकि डॉक्टर बी राजेंद्र को निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। नीलेश रामचंद्र देवरे को बिहार राज्य आवास बोर्ड का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अरविंद कुमार चौधरी को मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का अपर मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार श्रीवास्तव को वित्त विभाग का अपर सचिव बनाया गया है। सीमा त्रिपाठी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अरविंद कुमार वर्मा को उद्योग विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि इनायत खान को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। राज्य में आईपीएल टीम बनाने की उद्योगपति अनिल अग्रवाल की पहल को सरकार का समर्थन भी मिलने लगा है। श्री अग्रवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बिहार की क्रिकेट प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देने की बात कही है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार क्रिकेट को लेकर स्पष्ट विजन और मिशन मोड में काम कर रही है। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि राज्य का खेल विभाग इस पहल के साथ मजबूती से खड़ा है और बिहार की आईपीएल टीम बनाने में हर संभव सहयोग देना चाहता है।
2: हमारे मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने इसका स्वागत किया है, इस सोच को आगे बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। मैं खेल मंत्री और एक खिलाड़ी होने के नाते इसका पूर्णतः स्वागत करती हूँ और मैं पूरा आश्वास उन्हें भी देना चाहती कि यदि आप इस तरह की आईपीएल टीम को लेकर बिहार के नाम से आगे बढ़ाते हैं, बिहार के बच्चों को खेलने का एक अवसर, एक मौका देते हैं, बिहार सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी और हर संभव प्रयास करेगी कि बिहार में हर खेल, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई और खेल, उसके खिलाड़ियों को आगे बढ़ाते रहे और बिहार का नाम गर्व से ऊंचा।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: इधर आइए, इधर
4: इधर,
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभवाणी,
5: आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक सैंडल AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में मौसम के अलग अलग मिजाज देखने को मिल रहे हैं। एक ओर जहां दक्षिण बिहार भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, वहीं उत्तर बिहार में अच्छी बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व जिलों में कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की संभावना जताई है।
6: दिनांक 23 मई राज्य के उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
1: इधर विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 44.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान बांका, जमुई, लखीसराय, नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिले के विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग 5 तक की कक्षाओं के संचालन पर रोक लगा दी है। वहीं 6 से 8 तक की कक्षाएं सुबह 10:30 तक ही चलेंगी। यह आदेश सभी स्कूलों, प्री स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों पर 26 मई तक लागू रहेगा। इधर बेगूसराय जिला प्रशासन ने भी 8 कक्षा तक के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में सुबह 11 के बाद पठन पाठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 25 मई तक लागू रहेगा। वहीं शेखपुरा जिला प्रशासन ने 23 मई से सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन को 10:30 तक ही संचालित करने का आदेश जारी किया है। कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी रेलखंड पर रेल लाइन दोहरीकरण कार्य के कारण कई ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। कटिहार रेल मंडल के प्रवर मंडल रेल प्रबंधक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि 10 जून से 14 जून तक 13 जोड़ी से अधिक एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें रद्द रहेंगी। वहीं 12 जोड़ी ट्रेनों का मार्ग 7 जून से 13 जून तक बदला गया है। रेल प्रबंधक ने बताया कि जून के बाद ट्रेन सेवाएं सामान्य होने की उम्मीद है।
7: कि कटिहार मनिया और कटिहार दनखोड़ा सेक्शन में हमारे यहाँ पे NI वर्क किए जा रहे हैं। ये कार्य जो अभी सिंगल लाइन सेक्शन है उनको डबल करने के लिए किया जा रहा है। जहाँ अभी एक लाइन है वहाँ पे दूसरी लाइन भी आ जाएगी। कटिहार मंडल में 13 पेयर गाड़ियों का कैंसिलेशन किया गया है और एक पेयर गाड़ी का पार्शियल कैंसिलेशन या शॉर्ट टर्मिनेशन किया गया है और 60 ट्रेनों को रिशेड्यूल किया गया है, जिससे कि इस कार्य को पूरा किया जा सके। इसमें जो हमारी एक ट्रेन है शॉर्ट टर्मिनेट हुई वो कोलकाता जोगबनी ट्रेन है, जो कि पहले जोगबनी तक जाती थी, अभी इसको कटिहार तक शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। ये गाड़ी यहीं से कोलकाता के लिए भी जाएगी और वापस जोगबनी न जा करके यहीं से चलाई जाएगी।
1: आज महान समाज सुधारक और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय की जयंती पर राष्ट्र उन्हें याद कर रहा है। राजा राम मोहन राय ने समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाकर जाति व्यवस्था, छुआछूत और अंधविश्वास का व्यापक विरोध किया। उनका सामाजिक सुधार, सती प्रथा के खिलाफ अभियान, बाल विवाह का विरोध और ब्रह्म समाज की स्थापना जैसी उल्लेखनीय पहल अविस्मरणीय योगदान का प्रतीक है। उनके जयंती पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। दिल्ली की एक अदालत ने IRCTC होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। जिलाधिकारी और सिवान सह द्वितीय अपीलीय प्राधिकार ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत कुल 7 मामलों की सुनवाई कर सभी मामलों का निष्पादन कर दिया। जिला प्रशासन ने बताया कि लोक शिकायत निवारण प्रणाली के तहत नियमित रूप से सुनवाई की जा रही है ताकि लोगों को समयबद्ध न्याय और राहत मिल सके। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने रोहतास जिले में अलग अलग कार्रवाई करते हुए सासाराम CO आकाश कुमार रोनियार और उनके सहयोगी सोनू कुमार के साथ साथ सदर अस्पताल सासाराम के एक कर्मी सतीश कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड के हरिणय सीमा के समीप सरकारी भूमि पर अवैध रूप से दुकान निर्माण कर वर्षों से रंगदारी और अवैध वसूली करने वाले 2 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। श्रम संसाधन विभाग के तत्वावधान में गठित जिला धावा दल की टीम ने कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड क्षेत्र से बाल श्रमिकों को मुक्त कराया और नियोजक पर प्राथमिकी दर्ज की। अररिया जिले में परमान नदी पर बने झमटा महिषाकोल पुल का मुख्य पाया धंस जाने के बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच शुरू की गई है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा निर्मित वर्ष 2022 के इस पुल में दरारें आने

0: की सूचना है। हालांकि वाहनों की आवाजाही जारी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। राजस्व कार्यों की अब प्रतिदिन होगी समीक्षा। 25 मई से 11 जून तक सभी जिलों का मॉनिटरिंग करेगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। राज्य में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर के अधिकारियों का तबादला। दीपक कुमार सिंह को राज्यपाल का प्रधान सचिव बनाया गया। और मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों के दौरान बांका, जमुई, लखीसराय, नालंदा, नवादा और शेखपुरा जिले के विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
5: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है गोपालगंज जिले की हलचल। गोपालगंज जिले की हलचल को पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता मदेश कुमार तिवारी।
6: गोपालगंज जिला भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। जिले के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए जिले की सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर 26 मई तक प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के अंतर्गत प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे। वहीं जिला प्रशासन की ओर से लोगों को लू और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। राज्य सरकार ने गंगा और नारायणी पथवे परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत सारण जिले के दरिहरा से गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट तक अत्याधुनिक नारायणी पथवे 4-लेन ग्रीनफील्ड सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसकी लंबाई करीब 73 किलोमीटर होगी। राज्य सरकार से इस परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद बैकुंठपुर विधायक सह शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से बैकुंठपुर सहित गोपालगंज जिले के विकास को नई दिशा मिलेगी। जिले में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह अभियान 2 मई से शुरू हुआ है, जो आगामी 31 मई तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में मकान सूचीकरण का कार्य लगातार प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जनगणना के तहत नियुक्त प्रगणक घर घर जाकर मकानों से संबंधित आवश्यक जानकारियां एकत्र कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील की है कि प्रगणक उनके घर पहुंचे तो सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि जनगणना कार्य को सफलतापूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके। आर्केस्ट्रा संचालकों के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। जिले के विभिन्न इलाकों में चलाए गए विशेष अभियान के तहत पुलिस ने छापेमारी कर 44 नाबालिग लड़कियों को आर्केस्ट्रा से मुक्त कराया है। वहीं मामले में संलिप्त 21 संचालकों को गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज पुलिस महिलाओं के शोषण और मानव तस्करी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आवाज दो मुहिम चला रही है, जिसके तहत लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है। साथ ही शिकायत और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, ताकि पीड़ित को समय पर मदद उपलब्ध कराई जा सके। ऑपरेशन मुस्कान के तीसरे चरण के तहत गोपालगंज पुलिस ने चोरी हुई 20 बाइक और 62 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वहीं बरामद बाइक और मोबाइल फोन को उनके धारकों को सौंप दिया गया। बैकुंठपुर से विधायक मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार गोपालगंज पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। जिले के राजापट्टी, बैकुंठपुर और मोहम्मदपुर में कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा उन पर फूल बरसाए गए। वहीं शहर के एक निजी मैरिज हॉल में शिक्षा मंत्री का अभिनंदन समारोह किया गया, जिसमें सदर विधायक सुभाष सिंह, जिलाध्यक्ष मंटू गिरी सहित एनडीए के कई नेता मौजूद

0: उस बच्चे को खोज करके स्कूल में लाएगा और उसके सारी व्यवस्था बिहार सरकार करेगी, लेकिन हर हाल में बच्चे को शिक्षा दिया जाएगा, इसका पूरा इंतजाम हम करेंगे।
1: बीते दिनों शहर के अंबेडकर भवन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में एडीप योजना के तहत राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। शिविर का उद्घाटन डॉक्टर आलोक कुमार सुमन और जिला पदाधिकारी पवन सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर संबंधित विभागों के कई अधिकारी मौजूद रहे। गोपालगंज के लामीचौर गांव में सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में 9 जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चारण और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे लिए, वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। इस अवसर पर ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह जैसे आयोजन सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होते हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे गोपालगंज जिले की हलचल। गोपालगंज जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मदेश कुमार तिवारी।
3: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 110.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। संध्या के 7:52 हो रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम सुरलहरी। आज के कार्यक्रम में सुनिए गोपाल कृष्ण मिश्र से सुगम संगीत। आरंभ में प्रस्तुत है रामनाथ वारसी का लिखा ये गीत।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर लहरी। कलाकार थे गोपाल कृष्ण मिश्र। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, रात्रि के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं फिल्म तेरे इश्क में के इस गीत के साथ, जिसे अपनी आवाज़ दी है AR रहमान ने। संगीत से सजाया है इसे AR रहमान ने ही, और गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम में अगला गीत सुने फिल्म आयशा से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है अनुषा मणि ने, गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अगला गीत फिल्म एजेंट विनोद से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने, संगीत दिया है प्रीतम चक्रवर्ती ने और गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने।

आकाशवाणी एट 90। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में फिर से स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं रजनीगंधा। कार्यक्रम में अगला गीत सुने फिल्म आशिकी 2 से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है अरिजीत सिंह ने। गीत के बोल के हैं इरशाद कामिल ने। वहीं संगीत से सजाया है इस गीत को जीत गांगुली ने।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए, फिल्म रहना है तेरे दिल में से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है के ने। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, वहीं संगीत दिया है हरिश जयराज ने।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म रांझणा से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है शिराज उपल और जसविंदर सिंह ने। संगीत से सजाया है इस गीत को ए आर रहमान ने। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने।

और अब कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म रॉकस्टार से मोहित चौहान A.R. रहमान की आवाज़ में ये गीत। संगीत दिया है A.R. रहमान ने और गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा यहीं पर संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, रात्रि के 8:45 होने को है। अब हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे समाचार। 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9:00 न्यूज़ @9 और 9:15 पर आप सुनेंगे उर्दू में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन

0: महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
0: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
4: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। ये देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1 लाख इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्रिशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्रिशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वाग देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान

0: के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
1: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
0: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत और कुब्रुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तेफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकत दारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बनाया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडिलाइट्स ने आज

0: दहशतगर्दी की तमाम किस्मों और सरहद पार की दहशतगर्दी समेत तमाम मजाहिर से मुकाबला आरई के अपने अज़्म का इरादा किया। दोनों लीडरों ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज एक बाहमी मीटिंग की। दोनों लीडरों के दरमियान मुजाकरात के बाद मुख्तलिफ माहदे तय पाए, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी के लिए एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम करने से मुतालिक एक मफाहमतनामा और सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट बराए खारजी खिदमात और कुब्रुस की सिफारती अकेडमी के दरमियान सिफारतकारी के शोबे में तरबियत से मुतालिक एक मफाहमतनामा शामिल है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल और खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री इस मीटिंग में मौजूद थे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और कुब्रुस कनेक्टिविटी से मुतालिक स्कीमों पर मिलकर काम करेंगे, जैसे भारत बहरुल काहिल समंदरों से मुतालिक स्कीम और भारत मशरक वस्ता यूरोप इकतसादी राहदारी दिफा और सलामती के शोबे में तआवुन के बारे में जनाब मोदी ने बताया कि दोनों मुल्कों ने साइबर सिक्योरिटी, समंदरी सरहदों की सलामती और इंसदाद दहशतगर्दी में शिरकत दारी को मजीद मुस्तकम करने से इत्तेफाक किया है।
1: रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: भारत और कुब्रुस ने अपने ताल्लुकात को बढ़ाकर उन्हें कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचाने का भी फैसला किया है और एक मुश्तरक टास्क फोर्स का आगाज किया है ताकि बुनियादी ढांचे और जहाजरानी समेत मुख्तलिफ शोबों में तआवुन को मुस्तहकम किया जा सके। इस फैसले की सताइश करते हुए वजीर आजम ने कहा कि भारत और कुब्रुस के दरमियान रिश्ता हर अहद में बेहद मजबूत रहा है।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: बाद में मीडिया से बात करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर से मुतालिक सेक्रेटरी सिब्बी जॉर्ज ने बताया कि दोनों लीडरों ने वसीतर मामलात पर तबादला ख्याल किया, जिनमें तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, समंदरी सरहदों की सिक्योरिटी, मालियाती कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी और इख्तराआत, आमोदरफ्त, तालीम, सकाफत और भारत यूरोपीय यूनियन के दरमियान रिश्तों के मामलात में तआवुन को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज की गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में 51,000 से ज्यादा नौ तकरर शुदा नौजवानों को तकरूरी के खत तकसीम करेंगे। इस मौके पर मौजूद अफराद से बातचीत भी करेंगे। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि रोजगार मेला एक अहम पहल है जिससे वजीर आजम के रोजगार के मौके पैदा करने को आला तरीन तरजीह देने और इस ख्वाब को ताबीर अता करने के अज़्म का इजहार होता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: रोजगार मेला वजीर आजम के रोजगार के मौके पैदा करने को अवलीन तरजीह देने के अज़्म की तकमील की जानिब एक कदम है। रोजगार मेला नौजवानों को बामाने मौके फराहम करने में अहम रोल अदा कर रहा है ताकि वो बाख्तियार हो सकें और मुल्क की तामीर में हिस्सा ले सकें। अपने आगाज के वक्त से मुल्क भर में मुनक्किदा 18 रोजगार मेलों के जरिए तकरीबन 20 लाख तकरूरियों के खतूत जारी किए जा चुके हैं। 19वां रोजगार मेला मुल्क भर में 47 मकामात पर मुनक्किद होगा। 9 तकरूर शुदा उम्मीदवार, जिन्हें मुल्क भर से मुंतखब किया गया है, मुख्तलिफ वजारतों और महकमों को ज्वाइन करेंगे, जिनमें रेलवे, दाखिली उमूर, सेहत और खानदानी बहबूद और आला तालीम के महकमे के अलावा दीगर कई दूसरे महकमे शामिल होंगे। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी और बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बना देगी जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। जनाब शाह नई दिल्ली में आज सरहदी हिफाजती फोर्स BSF के इन्वेस्टिचर तकरीब और रुस्तम जी मेमोरियल लेक्चर से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने बताया कि स्मार्ट बॉर्डर तसव्वुर के तहत तमाम नौयत की टेक्नोलॉजियों को मरबूत करके अगले बरस तक सरहदों की सिक्योरिटी का एक ऐसा ग्रिड तामीर करने की जानिब काम जारी है जिस पर हमला करके कामयाबी हासिल कर पाना नामुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि वजारत जल्द ही स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट मुतारिफ कराएगी जो ड्रोन्स, रेडार्स, जदीद तरीन कैमरों और दीगर नई टेक्नोलॉजियों से लैस होगा। वजीर दाखिला ने बताया कि जैसे ही इस स्कीम का आगाज़ होगा, सरहदी हिफाजती फोर्स का काम खातिर खा हद तक आसान और मजबूत हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को साइबर खतरात, हाइब्रिड नौयत के जंगी सामान और ड्रोन से मुतालिक चैलेंजों से निमटने के लिए नई हिकमत अमली को अपनाना लाजमी है।
3: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: वजीर दाखला ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत का यह अज्म है कि वो न सिर्फ दरानंदाजी को रोके बल्कि दरानंदाजी करने वाले फर्द वाहिद की भी शनाख्त करे और उसे निकाल बाहर करे और आबादी में गैर फितरी तब्दीली किसी हाल में भी मुमकिन न होने दे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा के चांदीपुर में आज मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि एक की कामयाबी के साथ आजमाइश की गई। वजारत दिफा ने बताया कि ये आजमाइश तमाम कार्रवाई जाती और तकनीकी पैमानों पर खरी उतरी। ये आजमाइश स्ट्रेटेजिक फोर्स कमान के तहत की गई। ये कामयाब आजमाइश भारत की कलीदी दिफाई तैयारी में एक और संगे मील की अलामत है और मुल्क की कम अज कम भरोसेमंद दिफाई सलाहियत पर एतमाद को मजीद तकवीत देती है। अग्नि एक मुख्तसर दूरी का सतह से सतह पर वार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जो भारत के कलीदी मिसाइल प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मुल्क में ही तैयार किया गया है। भारत ने अफगानिस्तान में बच्चों के टीकाकारी प्रोग्राम को फरोग देने के लिए काबुल को बीसीजी, टेटनिस और डिफ्थेरिया वैक्सीन से मुतालिक 20 टन अहम साजो सामान फराहम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने कहा कि इस साजो सामान की मजीद खेप भेजी जाएगी। नई दिल्ली ने सेहत के शोबे में अफगानिस्तान के अवाम की मदद करने के अपने अज्म का इरादा किया है। भारत की कौमी शाहराओं से मुतालिक अथॉरिटी NHAI ने टनल इंजीनियरिंग, स्लोप स्टेबिलिटी और सलाहियत साजी में जदीद कंसल्टेंसी मदद के लिए नॉर्वे के नॉर्वेजियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट NGI के साथ मफाहमत नामे पर दस्तखत किए हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराओं की वजारत ने अपने बयान में बताया कि ये इश्तराक भारत की कौमी शाहराओं के आलमी पैमानों के मुताबिक रख रखाव और फरोग के तई NHAI के अहद की अक्कासी करता है जहाँ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और कुदरती आफात के जोखिम से निमटने की NGAI की बैन अवी सतह पर तस्लीम शुदा महारत को बरूए कार लाया जाएगा। मफाहमत नामे के तहत दोनों इदारे कुदरती आफात के खतरे को कम करने से मुतालिक तहकीक और तरक्की के इकदाम में एक दूसरे का तावुन करेंगे। क्वाड वजरा खारजा की मीटिंग 26 मई को नई दिल्ली में होगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दावत पर ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पेनी वोंग, जापान के वजीर खारजा तोशिमित्सु मोटेगी और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि वजराए खारजा गुज़िश्ता साल 1 जुलाई को वाशिंगटन DC में हुए तबादला ख्याल की बुनियाद पर खुले और आज़ाद भारत बहरुल काहल के क्वाड विजन पर गौर खोज करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल नूरलान यर्मबेकाइव के साथ मुलाकात की। इस मौके पर दोनों रहनुमाओं ने शंघाई ताउन तंजीम के इकदाम और सरगर्मियों के साथ साथ आलमी और इलाकाई मामलों पर भी बातचीत की। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ब्रिक्स यंग डिप्लोमेटिक फोरम और सिफारती इदारों के सरबराहान के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उन्होंने इस्तेहकाम, इख्तिरा, तावुन, पायदारी और आलमी पेशरफ में शराकत दारी के ब्रिक्स के मौजूदात पर अपने ख्याल का तबादला किया। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने आज NEET UG 2026 पेपर लीक मामले में एक और अहम मुलजिम को गिरफ्तार किया है। मुलजिम का नाम मनीषा संजय हवलदार है और ये महाराष्ट्र के शहर पुणे के सेठ हीरालाल सराफ प्रशाला में काम कर रही है। CBI ने बताया कि ये NEET UG 2026 इम्तिहान के अमल में शामिल रही है और इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक एक्सपर्ट के तौर पर मुकर्रर किया था। जांच एजेंसी ने बताया कि मुलजिम को फिजिक्स के सवालनामे तक मुकम्मल रसाई हासिल थी। CBI ने इत्तला दी है कि उन्होंने NEET UG 2026 इम्तिहान के फिजिक्स मजमून से मुतालिक कुछ सवालात साथी मुलजिम मनीषा मंधारे को शेयर किए थे जिसे इस महीने के 16 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے 12ویں جماعت

0: ये बोर्ड इम्तिहानात के जवाबी पर्चों की स्कैंड कॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसी करते हुए इसे 24 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले जवाबी पर्चों की कॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख कल तक थी। हुकूमत ने कहा है कि गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते दर्जे हरारत की वजह से बिजली की खपत अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई, जो कि एक रिकॉर्ड है। बिजली की वजारत ने कहा कि कल दिन के वक्त बिजली की सबसे ज़्यादा खपत 270.82 गीगावाट रही, जिसने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने अहम वजारतों और सरकर्दा सनती एसोसिएशनों के अहलकारों के साथ आज एक मीटिंग की सदारत की, जिसका मकसद मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने की गरज से हिकमत अमली तय करना था। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में जनाब गोयल ने बताया कि हुकूमत सनत के साथ गहरे रवाबित के साथ काम करने के तई पुरज़्म है। भारत के दो कोहे पैमा अरुण कुमार तिवारी और संदीप माउंट एवरेस्ट पहाड़ की चढ़ाई से उतरते वक्त अपनी जान गंवा बैठे। नेपाल के सयाहत के महकमे के हकाम ने बताया कि ये दोनों दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी सर करने के बाद नीचे उतर रहे थे। बताया जाता है कि अरुण और संदीप चोटी से नीचे आते वक्त बहुत थक चुके थे और गाइड की हर मुमकिन कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। मणिपुर में आसाम राइफल्स ने कल और आज बिरादरियों तक रसाई की सिलसिलेवार आउटरीच पहल का इनेकाद किया। इन सरगर्मियों का मकसद नौजवानों को तालीम को अपनाने, करियर के इंतखाब से मुतालिक पूरी वाकफियत हासिल करने और सभी शुरका को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने की तहरीक देना था। हैदराबाद के राजीव गांधी बैनुल अक्वामी स्टेडियम में जारी आईपीएल क्रिकेट मैच में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 256 रन का निशाना दिया है। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत और कुब्रुस ने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए मुश्तरका फोर्स तश्कील देने से इत्तफाक किया है। दोनों मुल्कों ने बाहमी ताल्लुकात को कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया है। दोनों मुल्कों ने इक्तसादी तआवुन को फरोग देने की गरज से कई माहिदों पर दस्तखत भी किए हैं। हुकूमत स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगी ताकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तमाम सरहदों को ऐसा बना दिया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 की कामयाबी के साथ आजमाइश की है। भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन साजो सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम को मजबूत बनाया जा सके। क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दरमियान मैच जारी है। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने 256 रन का निशाना दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 205.76 मीटर यानी 1458 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 110.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम रेडियो साहित्यिक पत्रिका शतदल। प्रस्तुत करता है अतुल कुमार प्रियदर्शन। स्वर सहयोग है सुप्रभात कुमार का।

0: श्रोता मित्रों नमस्कार, उपस्थित हैं हम शतदल के इस अंक के साथ श्रोताओं साहित्य मानवीय मूल्यों को स्थापित करने और संवर्धित करने का एक सशक्त माध्यम है। यह मनुष्य को समाज से जोड़ता है, चरित्र निर्माण करता है और विपरीत परिस्थितियों में जीने की प्रेरणा प्रदान करता है। साहित्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन दर्शन को संवारने वाली एक रचनात्मक प्रक्रिया है। साहित्य हमें दूसरे के दुख को समझने और भावनात्मक रूप से जुड़ने की क्षमता देता है, जिससे समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। सूफी काव्य से लेकर आधुनिक साहित्य तक प्रेम को सर्वोच्च मूल्य माना गया है। ये समाज को निस्वार्थ भाव से जीना सिखाता है। तुलसीदास के अनुसार, जो साहित्य गंगा की तरह सबका हित करे वही सच्चा साहित्य है। कबीर जैसे संतों ने बाह्य आडंबरों को छोड़कर भीतर के सत्य को खोजने और मानव मात्र में एक ही सत्ता को देखने का संदेश दिया है। तो श्रोताओं, आज के शतदल में अब आइए सुनते हैं एक पूर्व प्रसारित वार्ता, साहित्य और मानवीय मूल्य। वार्ताकार हैं डॉक्टर तपेश्वर नाथ।
1: साहित्य का मानवता से सनातन संबंध रहा है। लेखन हो या मूल्य, दोनों मानवीय संवेदना से प्रसूत हैं। अहं का संप्रसारण इनका लक्षण है। मानवीय संवेदना एवं अनुभूतियाँ वैयक्तिक होती हैं, पर जब उनका सामान्यीकरण कर साहित्यिक रूप दिया जाता है तब साहित्य का जन्म होता है। फिर साहित्य शब्द में ही साहित्यस्य भाव सन्निहित है। हिंदी लेखन यद्यपि साहित्य से भी व्यापक पद है, तथापि यहाँ इससे हमें साहित्य तथा इसकी विधाओं के लेखन का तात्पर्य ही ग्रहण करना है। निजी अनुभूतियों को साधारणीकृत करने में लेखक को सामाजिक परिस्थितियों, मूल्यों, मान्यताओं को भी दृष्टिपथ में रखकर फिर उसे साहित्यिक रूप विधान एवं तदनुकूल भाषा शैली का माध्यम देकर व्यक्त करना होता है। सृजन की यह एक मानसिक प्रक्रिया है, जिस कारण व्यक्ति की अनुभूति सामाजिक अनुभूति बनकर साहित्य में प्रकट होती है। तभी वह सामान्य जनों के हृदय बुद्धि बोधित हो पाती है। जागतिक अनुभूति और मानसिक साहित्यानुभूति में उत्तरोत्तर निजता का निखार हो जाता है और फलतः वह साहित्यिक कृति बनकर लोक हृदय संवेद्य बन जाती है। तुलसी ने इसी से अपनी अद्वितीय कृति रामायण को सुरसरी सम सबकह हित होई कहा। शुक्ल जी ने इसी काव्य निर्माण प्रक्रिया को कविता क्या है शीर्षक निबंध में विवेचित करते हुए कहा कि व्यक्ति हृदय को लोक हृदय में विलय की महत प्रक्रिया ही कवि कर्म है। इसी से इन्हें मूल्यवादी आलोचक कहा गया। एक शब्द में लेखन विशेष का सामान्यीकरण है। इसे ही काव्य शास्त्र में साधारणीकरण कहा गया और नाट्य शास्त्र में दर्शकों श्रोताओं को सामाजिक कहा गया। अनुभूति को रूप साहित्यकार की प्रतिभा, संस्कार और स्वाध्याय से मिलता है। उक्त पृष्ठभूमि से यह सिद्ध है कि हिंदी या निखिल साहित्य लेखन निजता का लोक हृदयता में विलय है। लोक हृदयता से तात्पर्य मानव मूल्यों से, लेखन से अविच्छिन्न संबंध से है। अंग्रेज आलोचक डॉक्टर रिचर्ड्स ने वृत्तियों के सामंजस्य को मूल्य मानकर काव्य के केंद्र में रखा। यह मानवीय मूल्य भी सदियों के सामाजिक संबंधों के पारस्परिक घात प्रतिघात से प्रसूत कुछ मान्यताओं से बना है। मानव मानव में वैभिन्न के बावजूद सहभाव के कुछ बुनियादी वसूल होते हैं, जिनके पालन से ही ये मूल्य विकसित हुए। तो इससे परिणाम यह निकला कि समाज में शांतिपूर्ण सहजीवन स्थापन हेतु ही आपस में मिल बैठकर ये नियम या मूल्य बनाए गए होंगे, तथा व्यवहार में सौमनस्य लाने हेतु ही इन सिद्धांतों को आचरणगत किया गया होगा। इसी से सामाजिक जीवन में संगठन पंचायत, प्रांत, राष्ट्र या राष्ट्र संघ तक बने तथा उनकी कुछ आचार संहिताएँ बनी। संहिता शब्द में ही सहित या समहित सन्निहित है। यह समाज शास्त्र का विषय है, तथापि देश काल से संपृक्त समानुभूति संपन्न साहित्यकार इसका रचना प्रक्रिया में आवश्यक ध्यान रखता है या उसे रखना चाहिए। यदि कोई इस चिराचरित सामाजिक मूल्य मान्यता का ध्यान नहीं रखता तो उसकी रचना बहुजन सुखाय नहीं हो पाती और क्षययुक्त हो जाती है। माइकेल का मेघनाद वध इसका दृष्टांत है, और जो सर्जक इसका ध्यान रखता है उसकी रचना सर्वजन सुखाय होकर अमर हो जाती है, जैसे रामायण का लक्ष्मण संजीवनी प्रसंग। हिंदी काव्य में आदि कवि विद्यापति ने इसे सबजन मिठा कहा तो कबीर ने भाखा बहता लिए। बंगीय कवि चंडीदास ने सवार ऊपर मानुष सत्य तहार ऊपर नाई कहा। मीरा ने इस प्रेम बेलू को आंसुओं से सींचा तो भारतेंदु ने आंग्ल शासन के कहर को झेलने के लिए सब मिली के रो बहु भारत भाई की गुहार लगाई। गुप्त जी ने हम हों समष्टि के लिए व्यष्टि बलिदानी कहा। प्रसाद जी ने अपनी कामायनी में श्रद्धा से कहलाया, औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो सबको सुखी बनाओ। राष्ट्रकवि दिनकर ने कुरुक्षेत्र में भीष्म से कहलाया, शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम हो। सच पूछिए तो समाज राष्ट्र या विश्व में इसी कारण अनेक महायुद्ध हुए और होंगे। साहित्य का सहितस्य भाव रोता भी लगता रहा, पर यह निरंकुश मूल्यहीन जगती या उपभोक्ता संस्कृति मानवीय मूल्यों को ध्वस्त कर अबाध सुख लूटती रही। अब तो मूल्य अर्थात बाजार मूल्य, मानव मूल्य का तो पतन हो चुका। दुर्भाग्यवश जनभावना साहित्य नहीं राजनीति की चेरी हो गई है। पुराने सर्व और आज के स्व

0: करुणा से प्रसूत है। महाभारत के दो ही वचनोद्घोष हैं, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, और परोपकार प्रधान मानव मूल्य है। परपीड़ा को व्यास और तुलसी दोनों ने मानवता विरोधी अधम मूल्य माना। इसी को लक्ष्य कर गीता के योगेश्वर कृष्ण ने तामसी प्रवृत्ति को अधम और सात्विक प्रवृत्ति को श्रेष्ठ मूल्य माना। जब तक अधम मूल्य कुंठित नहीं होगा, श्रेष्ठ मूल्यों की प्रतिष्ठा संभव नहीं है। संत लक्षणों में मानव मूल्य ही तो हैं, इसलिए साहित्य और समाज में शील सौंदर्य के साथ शौर्य भी मान्य हुआ। आदिकाल में उग्रता, भक्ति में नति, रीति में रति और आधुनिक साहित्य में कहीं यति तो कहीं गति है। सूर तुलसी मीरा नानक भारतेंदु गुप्त जी प्रसाद जी निराला दिनकर धर्मवीर भारती आदि महान कवियों तथा रेणु नागार्जुन केदारनाथ अग्रवाल आदि आधुनिक रचनाकारों की कृतियों में ये गुण लक्षणीय हैं। आदि से आधुनिक साहित्य तक की हजार वर्ष व्यापी भावधारा में रक्षा और रंजन, वान और वेणु संस्कृति दर्शनीय है। कभी पहला बली तो कभी दूसरा वर्चस्वी। प्रगतिशील साहित्य में भी आम आदमी की पीड़ा का बड़ा मोल है। विदेशी साहित्य में यह त्रैत दुर्लभ है, वहाँ व्यक्तिवाद अधिक बलवत्तर है, हमारे यहाँ साधारणीकरण है। यही साहित्य में मानव मूल्य है, यही पर प्रत्यक्ष है, यही अंग्रेज कवि आलोचक इलियट का अहम का विसर्जन और निसंगता, इम्पर्सनैलिटी एंड डिटैचमेंट है। साधु पुरुषों में ये गुण अति सुलभ हैं। संत सज्जन आदि के लक्षणों में यही मूल्य गीता मानस विनय पत्रिका आदि में व्यंजित हैं। यही निराला के भिक्षुक, भारती के अंधायुग और कनुप्रिया का फलितार्थ है। यही पंत का सत्यकाम और दुष्यंत कुमार का सर्वहत चरितार्थ करता है। सूचनार्थ, हिंदी लेखन में कुछ वर्ष पूर्व एक नया अवदान मानव मूल्य विश्वकोश का लेखन प्रकाशन रहा। इसे एक गौरव ग्रंथ कह सकते हैं। इसमें 850 चरित्र, सदाचार, सत्य, अहिंसा आदि मूल्य परक शब्दावलियों की बिंदुवार क्रमागत व्याख्याएं सारे देश के विभिन्न हिंदी संस्कृत विद्वानों से लिखवाई गईं। 5 खंडों में इन्हें सम्मार्जित कर 2200 पृष्ठों के बड़े आकार में सुघर प्रकाशन दिल्ली से कराया गया। शब्दों के अंत में काव्य व सूक्ति दृष्टांत पिरोए गए। इस वक्ता को भी इस सारस्वती यज्ञ में लेखन संपादन आदि का सुयोग मिला। इसे सकल हिंदी संसार को, विशेषतः नेताओं को अवश्य देखना चाहिए। खेद है कि इसमें मेरे द्वारा लिखित प्रेषित एक सशक्त शब्द समता आने से क्यों छूट गया। यह एक आकस्मिक दुर्योग है। प्रासंगिक होने से उक्त विश्व को उसकी चर्चा कर दी, जिसे गीता ने योग कहा, रामायण ने राम राज्य का निचोड़ कहा। उस समता शब्द का छूट जाना कोश की स्यात अपूर्णीय क्षति ही है। सचमुच मेरे मत से जीवन और लेखन में समता और प्रेम ही तो चरम मानव मूल्य के कारण कार्य हैं। इनकी बाहों में ही समस्त चराचर आलिंगनबद्ध है। अभी अभी जापान में आए खंड प्रलय ने एक बड़ी आबादी को ध्वस्त कर दिया। समस्त मानवता आहत, देश दुनिया शोक मग्न है। जिस प्रलय को हमने प्रसाद की कामायनी में पढ़ा गुना, उसे आँखों से अप्रत्यक्ष देख रहा हूँ। देव सभ्यता का दंभ मिनटों में डूब गया तो यह मानव सभ्यता कितने पानी में है। हिंदी और अन्य भाषा साहित्य इसी मानवीय संवेदना व मूल्यों का तो प्रहरी है। जिस दिन यह नहीं रहेगा, साहित्य मर जाएगा, और यदि साहित्य मर गया तो मानवता भी नहीं बचेगी। ऐसे में पंत जी का इस पीड़ित मानवता के प्रति उच्छ्वास याद आता है। वह नस्ल जिसे कहते मानव, जीरों से आज गई बीती, बुझ जाती तो आश्चर्य नहीं, हैरत है वह कैसे जी।
1: अभी हम डॉक्टर तपेश्वर नाथ से पूर्व प्रसारित वार्ता साहित्य और मानवीय मूल्य सुन रहे थे। शतदल में अब आइए सुनते हैं एक पूर्व प्रसारित कहानी, चौराहे की मिट्टी। रचनाकार हैं डॉक्टर जितेश कुमार।
2: सविता काकी आज फिर काम पर देर से आई थी। खुद के देर से आने का एहसास उसे भी था। तभी तो आते ही मालकिन को हाथ जोड़ लिए। मालकिन तुरंत डपट पर, यदि साबो तुम्हें काम करना है तो समय पर आया करो, तेरे भरोसे घर का हर काम समय पर नहीं हो पा रहा है। सविता बस धीमी आवाज में बोली, कल से समय पर आऊंगा दीदी। वो मेरा पति है ना, उनके कल्हे में चोट लग गई है। 3 दिनों से वे सही से चल फिर नहीं पा रहे हैं। चाय की दुकान लगाने भी नहीं जा पा रहे हैं। उनके दवाई के वास्ते ही सरकारी अस्पताल गई थी, बस यहाँ आने में देर हो गई। अरे छोरो, तेरा तो रोज पति ही बीमार रहता है, अगर उनकी ही सेवा करनी है तो काम छोड़ क्यों नहीं देती। तेज आवाज में मालकिन झिरक पड़ी। इस बार सविता कुछ भी ना बोल सकी। आंखों में आए आंसू बस आंखों में ही रह गए। रह रह कर वह सिसक पड़ती, लेकिन उसकी इस सिसक में मजबूरी की ऐसी चाशनी मिली थी कि उसका प्रभाव बस उसके मन को गाढ़ा ही कर रही थी। रही सही शीर्षक की आवाज़ बासन

मलने की ध्वनि में खो जा रही थी। सविता की उम्र कहने को 44-45 बरस की हो रही थी, लेकिन शरीर का दुबलापन उसे उतनी उम्र का नहीं ठहराता। उसकी आंखें छोटी छोटी और धसी हुई होने के कारण वह बार बार इसे मिचाती रहती। उजले काले केसों ने उसके रूप सज्जा को बदरंग कर दिया था। सविता अपने घर का तमाम काम करने के बाद 3 घरों के पूरे काम भी निपटा आती थी। झाड़ू पोछा से लेकर बर्तन बासन और खाना बनाने का काम वो भी 3 घरों में और एक अपने घर में करने की वह आदी हो चुकी थी। लोग कहते थे उसके पास कोई जिन्न है जो फुर्र फुर्र उसका काम कर देता है। तमाम उम्र हो जाने के बाद भी सविता काकी तेजी से हर काम निपटा देती थी। ऐसा भी नहीं था कि उसके काम में कोई गड़बड़ी हो जाती थी, लेकिन कुछ काम न चाहते हुए भी बिगड़ जाते। कभी कभार की गड़बड़ियां तो इंसान से प्रायः हो ही जाती हैं। सविता का पति भी अधेर हो चुका था। चाय की दुकान लगाता था 100 फीटा रोड के चौराहे पर। उसे सब लोग चांदी काका के नाम से जानते थे। ऐसा नहीं था कि वह चांदी रंग के थे। चांदी वाली बात तो बस उसके दांतों में थी, जो चांदी काका की जरा सी मुस्कुराहट में चांदी सी चमक जाती। सुबह सुबह ही वह रोज चाय की अपनी दुकान लगा लेता, जहां दिन भर चाय उबालता, उसे छानता और चाय पीने वाले लोगों के सामने गर्मा गर्म परोस देता। चाय की चुस्कियों की आवाज में वह इतना मस्त रहता कि उनकी आंखें दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान उसे ठहरा जाती। चांदी काका की चाय खूब कड़क होती, इतनी कड़क कि निमोछों के मूंछ की अदृश्य धारियों में भी कड़क आ जाती। उससे अपने ढकेल के चारों ओर उसने बेंच लगा दिए थे। वह बेंच भी क्या था, जुगाड़ के ईंटों पर लकड़ी की पट्टी डालकर बेंच बना ली गई थी। लोग भी उसे बड़े आराम से उन जुगाड़ू बेंचों पर बैठे बैठे चाय पीते थे। चाय पीने के लिए आने वाले लोगों को वह उन जुगाड़ू बेंचों पर बैठने के लिए इस कदर उत्साहित होकर कहता कि जैसे उसने सोफे लगा रखे हों और प्रेम से कह रहा हो, तशरीफ रखिए ना। चांदी काका की चाय की चुस्कियां रिक्शे वाले से लेकर खुद को संभ्रांत समझने वाले लोग भी खूब मजे से ठाकुर जी के प्रसाद की तरह ग्रहण करते थे। बगल में ही राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय भी था। वहां बाबुओं के लिए भी दिन भर में 20-25 चाय की प्यालियां चांदी काका खुद ही पहुंचा आते। बाबुओं को भी उनकी चाय की आदत लग गई थी। अपने लिए बनाए गए अघोषित पर्याय को चांदी काका भी खूब समझते थे। लोग, चौराहे के लोग, चाय का मतलब चांदी काका और चांदी काका का मतलब चाय समझते थे। इधर 3 दिन से चांदी काका अपनी चाय की ढकेल नहीं लगा पा रहे थे। अभी पिछले दिनों ही जब वे रात को ढकेल लगाकर अपने घर वापस आ रहे थे, तभी 2-4 किस्म के लड़कों ने तेजी से चलाते हुए मोटरसाइकिल उस पर चढ़ा दी थी। किसी तरह चांदी काका उठकर बैठे, लेकिन उसके कुल्हे में तेज दर्द हो रही थी। ढकेली ठेले को ठेल ठेल कर वह घर पहुंच गए। बस उसी रात से खाट से चिपके थे, न उठना न बैठना, बस सोए सोए हुए कराहते। न जाने कौन सी मुहूर्त ने उसे ऐसा बना दिया। चांदी काका के 2 लड़के थे। एक तो 20-22 साल का था, जो शहर की ही एक ताला फैक्ट्री में काम करता था। अभी अभी वह नौसिखिया मजदूर के रूप में काम पर लगा था, तो पगारी भी कुल 3500 ही रुपए मिलते थे। संस्कार ही उसे इतना अच्छा मिला था कि इन रुपयों को किसी गलत कार्य में खर्च नहीं करता, सभी रुपए पिताजी को लाकर दे देता। छोटा बेटा पास के ही एक सरकारी विद्यालय में 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था। पढ़ाई के बाद दिन भर में जो समय बचता था, वह कभी कभार पिताजी की ढकेली दुकान पर चला जाता और चाय की जूठी प्यालियों को साफ करने में पिताजी की मदद करता। चांदी काका और उसके बड़े बेटे की कमाई मिलाकर भी जब घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था, तो सविता काकी ने अपने पति से प्यार से कहा, क्या मैं भी कोई काम करूं? किसी घर में काम कर लेने से कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे, वैसे भी तो मैं दिन भर घर में बैठी ही रहती हूँ। चांदी काका पहले तो एकदम इस बात पर बिफर गए, मेरे रहते तुम काम पर जाओगी? मैं तुम्हें बाई नहीं बनने दूंगा, कहते कहते उनकी आंखों ने आंसू टपका दिए। सविता समझदार थी, उसने समझ से काम लिया, पति को ऊंच नीच की बात बताई। कहने लगी, मैं भी काम करने लगूंगी तो इसमें आपकी कौन सी इज्जत चली जाएगी? आपको तो फक्र होना चाहिए कि अपनी पत्नी पर, कि वह आपकी परिस्थिति में आपका साथ देने के लिए काम पर जाना चाहती है। चांदी काका ने उसे गले लगा लिया, दुलराया भी, प्यार जताया और अपनी गरीबी से इतर दिल की अमीरी में खो गए। पत्नी के काफी समझाने पर भी चांदी काका उसे काम पर जाने की अनुमति दे दी। पैसे की तंगी ने उसे ऐसे फैसले लेने को मजबूर कर दिया, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लक्ष्मी की कम आमद अच्छे अच्छों को बना बनाया सिद्धांत तोड़ देती है। कुल 4 लोगों के परिवार में 3.5 लोग काम पर लगे थे, लेकिन हायरी किस्मत, महीने का बचत शून्य ही था। रोज कमाना, रोज का खाना।
सविता एक घर में काम करके दूसरे घर में पहुंच गई थी, वहां भी उसे देर हो गई थी, परंतु यह मेम साहब थोड़ा नरम दिल थी। उसने बस इतना पूछा, साबो आजकल कोई तकलीफ है क्या, कुछ बात है तो बताओ, तुम समय पर नहीं आती हो इसलिए मैंने यह पूछ लिया। नहीं दीदी, बस घर में वो बिस्तर पर पड़े हैं, उसकी ही चिंता सताए रहती है, उनके कुल्हे का दर्द कम ही नहीं हो रहा है, वे हरदम कराहते रहते हैं, रुआंसे स्वर में सविता बोल पड़ी। मेम साहब ने 100-100 के 2 नोट थमा दिए और कहा, लो ये रुपए, जाकर दवाई ले लेना और खिला देना, धैर्य रखो, वो ठीक हो जाएंगे। मेम साहब की थोड़ी सहानुभूति पाकर सविता अंदर से गदगद हो गई। उसे लगा कि अभी भी इस दुनिया में उम्मीदें नहीं छोड़ी जा सकती हैं। इधर 3 दिनों से चांदी काका की चाय की ढकेली दुकान न लगने से कईयों को खूब मायूसी हो रही थी। सब एक दूसरे से केवल इतना पूछ रहे थे कि चांदी काका आजकल कहाँ है। शहर के रिश्ते भी अजीब होते हैं। जिस ढकेली दुकान की बेंच पर चाय की चुस्कियां लेते हुए रोज 15-20 मिनट लोग समय बिताते थे, वहीं आपसी बातचीत के लिए किसी को कोई 1 मिनट का वक्त भी नहीं था। आज 3 साल से चांदी काका गांव से शहर आकर वहीं 100 फीटा चौराहे पर चाय की ढकेल लगा रहा था, लेकिन किसी ने उसके सुख दुख घर परिवार के बारे में शायद ही कभी पूछा हो। कभी कभार कोई रिश्तेदार वहां आ जाता तो वहीं चांदी काका से बातें करता, लेकिन 3 दिन से चांदी काका ढकेली दुकान नहीं लगा रहा था। इसके लिए लोगों को बस उसकी चाय के स्वाद की कमी खल रही थी, चांदी काका की नहीं। सविता काकी सभी घरों का काम निपटाकर जब अपने घर पहुंची तो चांदी काका कराह रहे थे। अरे साबो, तुम कल काम पर मत जाना, मुझे बहुत दर्द हो रही है, गर्म पानी का सेंक लगा देना तो कुछ राहत हो जाएगी, कराहते हुए चांदी काका ने अपनी पत्नी से कहा। उसकी आवाज भी आज बैठी जा रही थी। सविता अपने आंसू को रोक न सकी, किसी तरह जुबान संभाल कर बोली, मैं क्या करूं, किस किस को दुखूं, आपको देखती हूं तो उधर बड़े घरों में आग लग जाती है, मेरी मजबूरी पर किसी की नजरें नहीं ठहरती है। घर के कमरे में बाहर के खंभों पर लटकी लाइटों से ही उजाला हो रहा था। अचानक वह भी चली गई, बड़ा लड़का काम से वापस आ चुका था, उसी ने लालटेन जला दिया। पहले तो घर में गासलेटी तेल से जलने वाली लालटेन थी जो अब कभी कभार ही जलती थी। सविता काकी भी इस बिजली वाली लालटेन को देखकर खुश हो जाती थी। चांदी काका 3 दिनों से चाय की ढकेल नहीं लगा पा रहे थे, उसे इसका खूब अफसोस होता था। कूल्हे के दर्द को इस बात से और सहारा मिल जाता, उसे बैठकर खाने की आदत नहीं थी, ऊपर से कुल जमा पूंजी भी कमरे की किराए और दवाई में ही खर्च हो गई थी। पैसे का अभाव रोग की टीस को और भी बढ़ा देती है। आज चांदी काका से बेहतर यह कौन जान सकता था। चांदी काका ने अपनी पत्नी से दुखी स्वर में कहा, कल मालकिन से काम के पैसे लेकर आ जाना, थोड़ा बहुत काम निपटा कर मुझे अस्पताल लेती जाना, किसी डॉक्टर से दिखा लूंगा, कुछ तो ससुरी ये दर्द से मुक्ति मिले। रात तो बीत गई, रात भी क्या बीती, चांदी काका के कराह से बेटों और माँ को नींद नहीं आई। आज सुबह भी छोटा बेटा स्कूल नहीं गया था, पिता के पास ही रह गया, बस माँ और बड़ा बेटा काम पर चला गया। इधर चांदी काका के कूल्हे का दर्द आज और बढ़ चला था, उससे तो आज बिछावन भी गीली हो गई थी। रह रहकर दर्द की टीस चांदी काका को पैसों की कमी का, गरीबी के एहसास का और संसार में अपने पराये को जानने का सबूत दे रहा था। सविता काकी अगली सुबह जल्दी ही पहली मालकिन के यहाँ काम पे आ गई थी। आते ही बोल पड़ी, मालकिन कुछ पैसे दे दो, पति को अस्पताल ले जाना है। मालकिन बिफर पड़ी, अभी तो महीने लगने में 3 दिन बाकी है, 3 दिन बाद ही पैसे दूंगी, तभी दिखाना अपने पति को, और वो कोई दर्द के मारे मर थोड़े ही जाएंगे। मालकिन की आवाज में मानवीय संवेदनाओं का न्यून भी गायब थी। शब्दों की तलखी यह बताने के लिए काफी थी कि उनके बीच सिर्फ मालकिन और नौकरानी का संबंध था। वाह रे मानव संबंधों की दुनिया, तू तो बस काम को ही प्यार करती है, तेरा तो बस काम से ही वास्ता है। सविता भी पैसे की जिद पर अड़ी थी, मालकिन हार मानकर उसे महीने के आधे पैसे थमा दिए। आखिर आधे पैसे पाकर वह घर लौट आई। सविता काकी खुद ही ढकेल को ठेलते हुए शहर के सरकारी अस्पताल की ओर तेजी से जाने लगी। उनके पांवों की गति इतनी तेज थी कि एम्बुलेंस भी खुद की गति पर शर्म से ची बोलती। अभी अस्पताल तक वह पहुंच भी नहीं पाई थी कि सविता काकी जोर से चिल्ला उठे, अरे साबो जल्दी से मुझे वहां ले चलो जहां मैं चाय की ढकेल लगाता हूं, मुझे वहां की मिट्टी को छूना है, मुझे उस चौराहे की मिट्टी को छूना है, उन बेंचों को छूना है जिसे मैंने जुगाड़ से अपने हाथों से बनाया था, उन लोगों को चाय पिलानी है जो चाय पीकर खुश हो जाते थे। सविता समझ नहीं पा रही थी कि इस परिस्थिति में वह क्या करे। पति की इच्छा के विरुद्ध वह अस्पताल आ गई। अस्पताल के द्वार पर ही चांदी चाचा की दांतें अचानक उसकी एक चीख के साथ चांदी बिखेरने लगी। ऐसा लगा उसके दर्द की चीख में अचानक एक मनमोहक हंसी छूट गई। सविता फूट फूट कर रोने लगी। काफी झकझोरने पर भी जब पति नहीं उठे
तो उसे खूब अफसोस हुआ कि इससे

0: शायद वहां पूरी तरह से ठीक हो जाएं। क्या पापा अब नहीं रहे? बेटे की बात सुनकर सविता और फूट फूट कर रोने लगी। थोड़ा संभलते हुए वह ढकेल को पीछे ठेलने लगी। उसने ढकेल को वहीं लाकर खड़ी कर दी जहां वे ढकीली दुकान सजाकर चाय की प्यालियां लगाया करते थे। देखते देखते लोगों की भीड़ उमड़ गई। कोई कह रहा था काफी स्वाद वाला चाय पिलाता था जिसका कोई जोर नहीं था। कोई कह रहा था मरकर भी हंसी रहा है। कोई मरे तो इसी हंसी के साथ। कोई कह रहा था चलो अब उसके बेटे के हाथों से चाय पियेंगे। कोई कह रहा था अरे चलो अब कहीं और चाय पियेंगे। दुनिया है साहब, कौन किसके गम पर रोता है। इधर दूसरी और तीसरी कोठियों में भी सविता काकी का इंतजार हो रहा था। वह आएगी, जूठे बर्तन मलेगी, झाड़ू पोछा लगाएगी और गर्मा गर्म बनाकर कुछ खिलाएगी।
1: अभी हम डॉक्टर जितेश कुमार से एक पूर्व प्रसारित कहानी चौराहे की मिट्टी सुन रहे थे। श्रोताओं, अब आइए चलते हैं शतदल के आखिरी सोपान यानी काव्य पाठ की तरफ। इसमें आज हम विकास पांडे से पूर्व प्रसारित काव्य पाठ सुनेंगे।
2: ये नया जमाना है बहुत तेज, हमें समझना होगा। ये नया जमाना है बहुत तेज, हमें समझना होगा। समय की उंगली पकड़कर अब हमें चलना होगा। कदम हो तेज हमारे, कदम हो तेज हमारे, सिर्फ इतना भर नहीं मुनासिब है, साथ लेके सबको चलने का मन बनाना होगा। कदम हो तेज हमारे, सिर्फ इतना भर नहीं मुनासिब है, साथ लेके सबको चलने का मन बनाना होगा। ताल छंद लय जानने भर से कुछ नहीं होगा, आगे बढ़ के किस्त दर किस्त उन्हें भुनाना होगा। सब जान बूझ कर अनजान बनने को तवज्जो ना दे, सब जान बूझ कर अनजान बनने को तवज्जो ना दें। हम वतन की हिफाजत की खातिर गुत्थियों को सुलझाना होगा। जमाने से तेज चलना तो सबके लिए नहीं मुमकिन, जमाने से तेज चलना तो सबके लिए नहीं मुमकिन, वक्त के साथ चलने से भी सफर सुहाना होगा। मेरी दूसरी रचना है इकाई में शक्ति का अंबार। वो आदमी गांव के नुक्कड़ पर बड़े मनोयोग से जूते चप्पल तैयार करता है। वो किसान हर रोज मेहनत कर खेत में अनाज उपजाता है। एक एक शिक्षक स्कूल कॉलेजों में छात्रों को पढ़ाकर ज्ञान का उजाला फैलाते हैं। एक एक जवान देश की रक्षा के लिए अहरने सीमा पर चौकसी रखते हैं। इन्हीं लोगों के समूह की बदौलत तमाम लोग जूते पहन पाते हैं। इन्हीं किसानों के झुंड संपूर्ण आबादी के पेट भरते हैं। शिक्षकों के सामूहिक प्रयत्नों से ही देश सामर्थ्यवान बनता है। सेना के रूप में एक एक जवान ही मातृभूमि की अखंडता को अक्षुण्ण रखते हैं। जब इन सबों के सामूहिक प्रयत्नों से कोई देश आन बान शान के साथ प्रगति की राह पर आगे बढ़ता है, जब इन सबों के सामूहिक प्रयत्नों से कोई देश आन बान शान के साथ प्रगति की राह पर आगे बढ़ता है, तब हम इन्हें अदना क्यों माने, तब हम इन्हें अदना क्यों माने। वो भी तो अपने समूह का हिस्सा ही होता है, वो भी तो अपने समूह का हिस्सा ही होता है। अकेला किसान, अकेला शिक्षक और जवान भी उतने ही अहम हैं। अकेला किसान, शिक्षक और जवान भी उतने ही अहम हैं। हमें मानना पड़ेगा कि इकाई में ही शक्ति का अंबार है। हमें मानना पड़ेगा कि इकाई में ही शक्ति का अंबार है। हमें इसे पहचानने और तरजीह देने की दरकार है। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? उसे हम नाचीज समझकर नष्ट करते जाते हैं और जरा भी नहीं पछताते हैं। एक आदमी, एक पेड़, एक कुआं, एक सरोवर, एक नदी, एक जंगल को अदना सा समझकर उन्हें अस्तित्व संघर्ष की दौड़ से अलग करते जा रहे हैं। ऐसा कर हम परिवार, समाज, पर्यावरण सभी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ऐसा कर हम परिवार, समाज, पर्यावरण सभी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। उन्हें संकट में डाल रहे हैं। उन्हें तरजीह देने का सलीका, उन्हें तरजीह देने का सलीका हमें कब आएगा? मेरी अगली रचना है स्वदेश प्रेम का संदेश।

0: में बर्फबारी से अपने देश में जब असहज हो जाता है, उनके जीवन का सफर तो समूह में उड़कर मौसम की मार सहकर सात समंदर पार कर वे दमखम वाले सैलानी पक्षी उतरते हैं हमारे आपके आसपास के पोखर, नदी और मरगंग के किनारे। रोग व्याधियां फैलाने वाले कीट फतिंगों को हजम कर बढ़ाते हैं खेतों की हरियाली। रोग व्याधियां फैलाने वाले कीट फतिंगों को हजम कर बढ़ाते हैं खेतों की हरियाली। सरोवर में तैरते हैं तो मछलियां करने लगती हैं उनके साथ प्रतिस्पर्धा। खेतों में करते हैं मटर गश्ती तो झेप जाती हैं मोर जैसी हस्ती। उन्हें देश लौटने की नहीं होती है कोई बंदिश। उन्हें देश लौटने की नहीं होती है कोई बंदिश, न जल्दबाजी, न होता है उनका कोई बाट जोने वाला। उन्हें देश लौटने की नहीं होती है कोई बंदिश, न जल्दबाजी, न होता है उनका कोई बाट जोने वाला। मगर तब भी मौसम का कांटा अनुकूल दिखते ही वे तड़प उठते हैं सात समंदर की लंबी दूरी लांघने, बे इंतहा परेशानियां झेलकर अपनी धरती को चूमने। मगर तब भी वे तड़प उठते हैं सात समंदर की लंबी दूरी लांघने, बे इंतहा परेशानियां झेलकर अपनी धरती को चूमने। हमें आपको स्वदेश प्रेम का अनूठा संदेश देने।
1: अभी हम विकास पांडे से पूर्व प्रसारित काव्य पाठ सुन रहे थे। श्रोताओं, जिस तरह से एक भवन की नींव नीचे से खड़ी की जाती है और नीचे की नींव को मजबूत किया जाता है जिससे उसी नींव पर पूरा भवन खड़ा रहता है, उसी तरह से मनुष्य का जीवन साहित्य से मजबूत होता है। साहित्य के द्वारा मनुष्य के अनेक विकारों को दूर किया जा सकता है। साहित्य को पढ़कर और सुनकर हम साहित्य की भावनाओं को जान सकते हैं। श्रोताओं, आज के शतदल में बस इतना ही। आज के शतदल के प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन, स्वर सहयोग था सुप्रभात राय का। प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए हमारा पता है कार्यक्रम आपके पत्र द्वारा के निदेशक आकाशवाणी भागलपुर। हमारा पिन कोड है 812001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है phairbhagalpur@gmail.com। तो इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे रेडियो साहित्यिक पत्रिका शतदल। प्रस्तुतकर्ता थे अतुल कुमार प्रियदर्शन, स्वर सहयोग था सुप्रभात राय का। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में सुनिए श्री एल के पंडित से ख्याल गायन राग छायानट में।

शास्त्र संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आपने सुना श्री एल के पंडित का ख्याल गायन। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

पसंद आपकी का ये पहला गीत फिल्म धुरंधर से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है जैस्मिन सैंडलर्स ने, साथ में मधुबंती बागची। गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है शाश्वत सचदेव ने। इस गीत की फरमाइश की है आप सबने मोहल्ला ततारपुर भागलपुर से, नबा कौसर, अरशान अहमद, जरीश अहमद, हाजिक अहमद, सुमरान, शफक, शाजली, सुमी और शगुफ्ता ने। अलीबख्श लेन मोहल्ला नाथनगर से हिबा फुजैल, दानियाल उमर, मायरा उमर, उमर फारूक, मोहम्मद फौजैल, जुबैर अंसारी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से मिक्का विरक, बलविंदर, जयतक विरक और हरदेव मिक्का ने। भानपुर भोपाल मध्य प्रदेश से रामगोपाल विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा, हिमायू विश्वकर्मा और योगिता विश्वकर्मा। लाल माता सुदामा नगर रतलाई से आदित्य भार्गव और उनके परिवार के सभी लोगों ने।

कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए फिल्म धड़क 2 से। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल ने। गीत के बोल लिखे हैं रश्मि विराग ने, वहीं संगीत दिया है जावेद मोहसिन ने। इस गीत की फरमाइश की है आप सब ने सारिमपुर बक्सर से राज एसडी, एसडी अंसारी, आसमा खातून, आफ्ताब अंसारी और डॉक्टर सोनम अदीबा ने। उत्तम नगर नई दिल्ली से मानसी, अनिल, गौरव, कविता मदान ने। बड़ी गोविंदपुर, जमालपुर, मुंगेर से मुकेश कुमार, प्रवीण, बबलू, राजेश, जितेंद्र, जीवन, मनोज, दीपक, विवेक, मनोहर, अनिल, हिमांशु, कौशल, विजय, प्रफुल्ल और मोहन ने। मुजाहिदपुर, पूरब टोला से मोहम्मद राजू खान, जहांगीर खान, शबनम जानम, खैरुबाई, रूबी बेगम, अरबाज़ खान, अयाज़ खान और महमूदा खातून ने।

कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म अनवर से लिया गया है। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है शिल्पा राव और क्षितिज तारे ने। गीत के बोल लिखे हैं हसन कमाल ने, वहीं संगीत दिया है मिथुन शर्मा ने। इस गीत की फरमाइश की है आप सब ने, रवि रेसिडेंसी राजकोट से हेमा जाटव, सुधा कुमारी, संध्या कुमारी ने। बिहारीपुरम वीरमगाम से रागेश जाटव, अजीता और प्रेम जाटव ने। बिहार भवन दिल्ली से अहमद हसन, सलमा हसन और गुलाब हसन ने। और करजत मुंबई से अहमद मोगा और अजीत मोगा ने।

कार्यक्रम में अगला गीत सुने, फिल्म बस एक पल से। इस गीत की फरमाइश है, इस गीत को अपनी आवाज़ दी है आतिफ असलम ने और संगीत से सजाया है इसे मिथुन शर्मा ने। गीत के बोल लिखे हैं सईद कादरी ने और इस गीत की फरमाइश की है आप सब ने इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा डब्लू अंसारी, चंद्रनगर सहारनपुर से कौशल्या जोशी, सोनाली जोशी, सुरेश जोशी, कबीरनगर डोंडी से देवशंकर बिलदार प्रभा, आज़ाद काजल और सैनिक रेडियो श्रोता संघ बबूरा वार्ड नंबर 10 धनकुंड से मोहम्मद परवेज़ आलम, मोहम्मद रियाज, अनाया परवेज़, आतिफ और सेजल ने।

और अब कार्यक्रम के आखिर में जिस गीत की फरमाइश की है उस फिल्म का नाम है मिशन मजनू। इस गीत को अपनी आवाज़ दी है जुबीन नौटियाल ने, संगीत दिया है तनिष्क बागची ने और गीत के बोल लिखे हैं शब्बीर अहमद ने। इस गीत की फरमाइश की है आप सब ने राजस्थान के ज़िला झालावाड़ से हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई एवं प्रभुलाल बागची ने। साहिबगंज भागलपुर से छोटू, सृष्टि, मोहित राज, सोनम, डॉक्टर सुभद्र कुमार मंडल। नाथनगर भागलपुर से उमर फारूक, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से बलविंदर, चैतक, हरदेव। वहीं भानपुर भोपाल से रामगोपाल, उमेश, हिमायूं और योगिता ने।

फरमाइश फिल्म गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी यहीं पर संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: भारत और साइप्रस के बीच आतंक रोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
1: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by